नेबरहुड सर्विस दी पंजाबी सेवा च तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत। पेश कर रहे हैं सुफियाना कलाम। ऐ खुदा शीशा साफ कीता तां मैं नजर आया, ते जद मैं नूं साफ कीता तां तू नजर आया। चल बंदिया मैं नूं साफ करके उस अल्लाह सोहणे दे लड़ लगीए। आओ प्रोग्राम दा आगाज करदे हां सायदा बेगम दे गाए इस सुफियाना कलाम दे नाल, कदी आमिल बिरहू सताई नूं।

हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलो हर्ट्स। तंहिंखां सवाइ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डी डी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। प्रोग्राम जो आगाज़ थी चुको आहे। तफ़सील कुझु हिन रीति आहिनि। थोरी देरि में तव्हां भगत कंवरराम साहिब जे सदाबहार आवाज़ में कलाम ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ तबसरो ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ नाटक पेश कंदा थींदो। प्रोग्राम जे आख़िरि में ख़ासि ख़ासि ख़बरूं नशरु कयूं वेंदियूं। इहा त हुई असांजे प्रोग्राम जी तफ़सील। हींअर अचो त भगत कंवरराम साहिब जे सदाबहार आवाज़ में कलाम ॿुधूं।

तमा भगत कवराम साहेब जे सदाबहार आवाज़ में कलाम ॿुधी रहिया हुआ। हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे। हींअर पेश आहे तबसरो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 15 मई 2026 ते UAE जो सरकारी दौरो कयो। हुन UAE जे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान सां मुलाक़ात कई। ॿिन्ही अॻवाननि बेतरफ़ी मामलनि, ख़ासि तौर ते एनर्जी कोऑपरेशन ऐं पंहिंजे लाभकारी मामलनि ते वीचारनि जी ॾे वठि कई ऐं क्षेत्रीय ऐं अंतर्राष्ट्रीय मामलनि ते बहस कयो। उन्हनि बेतरफ़ी मज़बूत राजनैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक ऐं माण्हुनि जो माण्हुनि सां लॻापे जो बुनियाद ते कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक भाईवारी खे अॻिते वधाइण जे तरीक़नि ते बहस कयो। उन्हनि ॿी तरफ़ी ऊर्जा ते गौर कयो, जंहिंखे वधीक वधायो वञे त जीअं ॿई मुल्क पंहिंजी ऊर्जा जी सुरक्षा खे मज़बूत करे सघनि। चर्चा में वापार ऐं सीड़पकारी ते बि ध्यानु ॾिनो वियो। UAE में रहंदड़ विशाल भारतीय समाज जे भलाई ऐं फ़ाइदो हासिल कंदड़ लॻभॻ 4.5-5 मिलियन माण्हू बाबति पिणु चर्चा कई वई। UAE जे राष्ट्रपति UAE में रहंदड़ भारतीयुनि जे योगदान लाइ प्रधानमंत्री श्री मोदी जे अॻियां तमामु घणी ज़ाहिर कई। भारतीय पेशेवर UAE जे माली, टेक्नोलॉजी, चिकित्सा ऐं ॿियनि अहम खेत्रनि में अहम किरदार अदा कनि था। UAE हिन वक़्तु भारत लाइ कचे तेल जो 4th सभ खां वॾो ज़रियो आहे, जेको मुल्क जे कुल ज़रूरतूं जो तक़रीबन 11% पूरो करे थो। लिक्विफाइड नेचुरल गैस मामले ते भारतीय कंपनियुनि आबूधाबी जी एडनॉक गैस सां गॾु कुल 4.5-5 मिलियन टन हर साल जी आपूर्ति जे लाइ वॾी मुदत जा करारनामो कया आहिनि। भारत जे UPI भुगतान प्लेटफॉर्म खे UAE जे आनी सिस्टम सां गंढण, अॻु में ई कारोबार ऐं उते रहंदड़ भारतीयुनि लाइ सरहद पार ट्रांज़ेक्शन में बदलाव करे छॾियो आहे। UAE गुज़िरियल 25 सालनि में भारत जो 3rd नंबर वॾो वापारी पार्टनर आहे। ऐं परॾेही सड़ककारी जो 7th नंबर वॾो ज़रियो आहे, जंहिं में 25.5-19 बिलियन अमरीकी डॉलर जो कुल FDI इम्पोर्ट आहे। ॿी तरफ़ी वापार पहिरियों दफ़ो 100 बिलियन अमरीकी डॉलर खां वधीक थियो आहे, जेको माली साल 2025-26 में 125.5 बिलियन अमरीकी डॉलर ताईं पहुची वियो आहे। जनवरी 2026 में UAE जे राष्ट्रपति जी भारत यात्रा दौरान ॿिन्ही पासनि 2032 ताईं ॿी तरफ़ी वापार खे बीणो करे 200 मिलियन अमरीकी डॉलर करण जो वादो कयो। भारत ऐं UAE जे विच में हिकु लोकल करंसी सेटलमेंट LCS सिस्टम मौजूदु आहे, जेको ॿी तरफ़ी वापार ऐं तरसील खे INR ऐं AED में आबाद करण जे क़ाबिल बणाए थो। डॉलर जे आधार ऐं ट्रांज़ेक्शन जे क़ीमतुनि खे घटाए थो। UAE जे स्टेट फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन जे मंत्री मिसिस रिम अल हाशमी चयो त UAE प्रधानमंत्री मोदी जे दौरे जो वॾी जोश सां इंतज़ार कयो। हुन श्री मोदी खे दोस्ती जी हिकु अहम शख़्सियत, हिकु गहरी भाईवारी जो प्रतीक ऐं UAE जे अॻवानी लाइ हिकु सचो खज़ानो करार ॾिनो। प्रधानमंत्री मोदी 2014 में पद संभालण खां वठी 7 दफ़ा UAE जो दौरो कयो आहे ऐं शेख मोहम्मद 5 दफ़ा भारत जो दौरो कयो आहे। मौजूदा उथल पुथल जे दौर में UAE भारत

जो सब खां वधीक काबिल भरोसे वारो ऊर्जा भाईवारनि मां हिकु रहियो आहे ऐं अञा ताईं आहे। वॾी मुदत जे सप्लाई एग्रीमेंट सां भारत जे ऊर्जा जे सिक्योरिटी खे मज़बूत कयो वियो आहे। हिकु ख़ासि इशारे में UAE हवाई फोर्स जे F-16 जेट प्रधानमंत्री मोदी जे जहाज़ खे दाख़िल कयो, जीअं उहो मुल्क जे हवाई हदुनि में दाख़िल थी सघे। आबूधाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ते पहुचण ते प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री जो UAE जे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान तरफ़ां स्वागत कयो वियो। खेस रवायती स्वागत ॾिनो वियो ऐं गार्ड ऑफ ऑनर ॾिनो वियो। UAE में भारतीय रहवासी जा मेंबर वॾे तइदाद में मौजूद हुआ ऐं रवायती संगीत ऐं नारनि सां संदसि स्वागत कयो। प्रधानमंत्री आबूधाबी में पंहिंजे संबोधन दौरान जारी भाषण में हाणे जे हालतुनि में UAE खे निशानो बणाइण जी सख़्त निंदा कई। UAE जे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान सां वफ़द जी सतह ते ॻाल्हियुनि में प्रधानमंत्री मोईद चयो त मां तव्हां सां फोन ते ॻाल्हाईंदो होसि, मां तव्हां सां ज़ाती तौर ते मिलण लाइ तमामु घणो बेताब होसि। श्री मोदी चयो त भारत हर हाल में UAE सां कुलो कुले सां मिलाए बीठो आहे ऐं भविष्य में बि इहे कंदो रहंदो। प्रधानमंत्री श्री मोदी ओलह एशिया जी जंग दौरान मुल्क में भारतीयुनि जे सुरक्षा ऐं भलाई खे मज़बूत बणाइण ते अमीरात जो शुक्रिया अदा कयो। भारत हमेशह मुश्किलात जे हल लाइ हमेशह ॻाल्हियुनि ऐं कूटनीति खे प्राथमिकता ॾिनी आहे। असांजे सभ खां वॾे प्राथमिकता खेत्र में आज़ाद खुलियल ऐं सुरक्षित रखणु आहे। हुन कोशिश में अंतर्राष्ट्रीय कानून जे पासदारी ज़रूरी आहे। श्री मोदी चयो UAE जे राष्ट्रपति भारत जे इंसानी मदद लाइ प्रधानमंत्री जो शुक्रिया अदा कयो। दौरे दौरान LPG ऐं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व जे खेत्रनि में बि अहम MOU साइन कयो। 28 फरवरी 2026 ते तकरार जे शुरूआती खां पोइ ही प्रधानमंत्री जो पहिरियों दौरो हो। इन ॿिन्ही अॻवाननि खे मौजूदा हाल ते ॿिन्ही मुल्क गॾिजी कम करण जो तरीक़नि ते वीचारनि जी ॾे वठि जो मौका मुहैया कयो। ॿई अॻवाननि हिकु अहिड़ी भाईवारी ठाहींदड़ जेका गुज़िरियल ॾहाके दौरान हिकु कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक भाईवारी में बदिलजी चुकी आहे। प्रधानमंत्री जो दौरो ॿिन्ही मुल्कनि जे विच में अहम वापार ऐं सीड़पकारी लाॻापनि खे मज़बूत करण में मदद कंदो। तव्हां तबसरो ॿुधी रहिया हुआ।

हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डी डी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।

0: बाबा ओम गंगा भाव जा कपड़ा तो कटी से दे होने के सुबह जो सारे कॉलेज में निवाए गंगा अरे पास्टर आने आने क्या है ओहे तो मले से दे गंगा अरे क्या था वही है इन छोकरी माताओं अच्छी फाती है फाती भगवान को अलग कर दें उन्हें लाइव और घर दी दो गंगा ओ
1: गंगा गंगा गंगा मरी वे गंगा फाजा कपड़ा कट बासण मन बबू के खीरे ही कर हो कर गंगा सब निगाजन जी चिंता छो करे गंगा जी केर थो चिंता करे इन घर में अमां जो वसल ते के वाटू रखे पकड़े उन सब पल वजी फेरा डारे घर मां कठे बाबा बाबा के तेन घर में अगर केर बने थो तो वो आए भाव बीए छा पास कयो अथसि दिमाग़ी सटिया।

0: गंगा, ओ गंगा, छापे सूची?
1: कुछ न, कुछ न।
0: कुड़ी मुखा पेंजे मन जी गाल लिकाई थी, अज असाजी शादी थी आए, अजो को डी चुपचाप गुमसुम थी वे हला कोने।
1: शादी रमेश, मां बिन शादी जी बारे में ही सोची रही आया।
0: छा
1: ई हुई तो अज असाजी शादी थी, पर न में जो कुंवर वांगु सिंगार थियो, न तो के खोट राजा वांगु सजाए वियो, न के लाडा गाता, न का दिख चढ़ी, न तू मुटुक बधी जन वठी आए, न के दुई लवगा। ये भी कैड़ी शादी थी?
0: चढ़ी शादी तो बिन दिलिन जे मेलाप के चयो वेंदो आए, दुहिल बाजा मुकुट तो सिर्फ दुनिया जो देखाव आए, पर छा तू खुश कोन आई?
1: मां बेहद खुश आया रमेश, मुखे तू मिली वे तो सजी दुनिया जी दौलत मिली वे।
0: तो पोए तू एन गालियों छो थी सोची, मुंह तो तुखे मजबूर कोन कयो हो।
1: रमेश मुझे चवण जो गलत मतलब न कठ, मु कड़ी चयो तो तू मुखे मजबूर कयो, मां त यही गाल करे रही हस। चंग बुध, हल थोड़ो बाहर घुमी अचू।
0: घुमी अचू?
1: हाँ।
0: तोखे खबर कान्हे तो बाबे पुलिस में रिपोर्ट कई आए, चैनी तरफ था ही तलाश थी रही आए, अखबार में फोटो छपे आए।
1: तो छा महीने कोठरी में बंद पे हूं? दस
0: सिर्फ कुछ दिन ला, मुखे का नौकरी मिली वने तो पो पान वडी जाय वठंदासी। ए तोखे खबर आए धीरे धीरे वक्त सबनी जख्मन के भरे छदींदो आए, असा जा माइट भी मने वेंदा, मुंह बत अग्या उनके झुकनो पौंदो।
1: पर रमेश तोखे नौकरी मिलण में तो कुछ दिन लगी वेंदा, तेस तई घर जो गाडो की हलंदो?
0: हाँ तेस तई छा थींदो?
1: तू फिक्र न कर। हाँ ही वट
0: ही छाए
1: ईंदे वक्त घर अमा जा कुछ गहना खणी आई हस, तेस तई ये विकणी करे कम हलाइंदास?
0: न न मां ये गहना कोन विकणी।
1: छो अन्या तू मां अलग अलग आई।

0: पर गंगा
1: चुप, कुछ न जाओ, बन जल्दी सामान वठी।
0: खैर तू मजबूर थी करी तई है सही, चंगो महला तो
1: बुद्ध बनियो, पर थोड़ो जल्दी अच जाए समझियो ना, मुझे अकेलो डप थो लगे। रमेश उन्हें नौकरी जो छाचियो
0: मुखे कौन मिली,
1: पर तू तो चयो थी तो तू टेस्ट में अवल आयो आई तो के जरूर मिलंदी।
0: हाँ पर उन ला बिन हजारन जी जमानत ही जरूरत हुई जा मुंहट कोन आए
1: तपोए हाणी छा थिंदो
0: मुझे अग्या बे तो हर घरी है इहो ही सवाल थो अजे तो हाणी छा कजे सोचा पियो तो हन कदम खण खा कुछ सोचन घुर्जे हिनन छहन महीनन में मु केतरी बेइज्जती सठी आए कहन खसीस नौकरन पुठियां रलियो आया केतरी न खुशामत कई अथम पर सवार निराशा जे कुछ भी न मिलियो आए मां ते न दुनिया का तंग अची चुको आया मां ते जिंदगी का बेजार थी चुको आया।

0: किराए?
1: माँ, दरवाजा खोल।
0: रमेश है तो आज बड़ी शराब पी तो आए।
1: हाँ पी तो असल तुम कह रहा ही पूछने वाली।
0: पर तो वचन दिनो हो तो तू शराब को न पियंदी।
1: वचन दिनो हो दिनो हूं तुम, मां तो बेवकूफ आया, खबर ना है कह रहा हो बता सुबता वचन थो दींदो बता। एक दिन तोसा प्यार जो वचन कयम त उनखे निभाण ला तोखे साण करे भटकंडो तो रहा। पर केस आखिर प्यार के सहारे कोई केतरा दी जी दो। गंगा भगवान इंसान के पेट दिनो है, उनके भरण ला खपे रोटी, इन शरीर के ढकण ला कपड़े की जरूरत है, रहन ला मकान की। ही प्यार मोहब्बत असा के रोटी कपड़ा मकान कौन तो दे सके। दुनिया के सभी दुखन के भुलाने ला मु शराब जो सहारो, जैके पी मुखे कुछ वक्त ला राहत थी मिले। तू मुखा मुझे यो सारो भी फिरोन थी चाहिए के त्री न खुद मतलबी और पाई।
0: रमेश तू इच्छा जे रहे हो
1: तो मुखा मुझे घर छड़ायो माइट छड़ायो, अहियर ई शराब जेको मुझे दुखन दर्दन जो साथी आए, तू मुखा शराब भी छड़ाए थी चाहिए। ना मां शराब पियर कौन छड़ी, मां तोखे छड़े सका तो पर शराब तू मुझे दुखन जी जरा, मां तोखे छड़े दींदस पर ही शराब जो मुझे दुखन के मुखा परे भजाए तो मां न छड़ींदस।
0: रमेश ये तोखे छा थी वियो आए, इतने साल जे अंदर तू केतरो न बदल जी वियो आए, कदे आज में दिठो थे केतरो कमजोर थी वियो आए।
1: न मालूम वहा कहरी मनमुस्करी जद मां तोखे कजस ए तोखे प्यार करन लगस, छा न हो मुझे घर में लखापति पी जो अकेलो पुट हर तरह जो आराम हो, पर मां अंधो थी तुझे इश्क में घर का भजी निकस, ए तो मुखे न नर्ग में आने वितो।
0: तू समझी तो मु तो सब दोखो कयो है, मां जबरदस्ती तुझे गले पई आया, मु तो पेजो घर छड़ियो आए, मुझे घर में वरी कहरी कमी हुई, तो सही घर छड़े हली अचड़ करे मुझे माइटन जी तो बदनामी थी आए।
1: तुझा माइट हिन सौदे में हुनन के केड़ो घाटो पियो, उटलो तो हु तुझे ला वर घर जी तलाश ही तकलीफ हो चुका, तुझे ला शादी में जेको डेज जन हा उन खां भी छुटा, हिनन त चाहियो थे त को बेवकूफ तुझे चक्कर में फासे त हिनन के तो खां छुटकारो मिले, मां सब समझा तो हियर मां वापस हलियो
0: ए मां
1: तोखे भी जेडा खपे हली वन, मुझे तो सा को वास्तो को
0: रमेश तू इच्छा तू जे तू मुगे ही अकेलो चले करे हली वे दे, पर तू तो मुसा शादी गई है, मां तो भी मने कोन लिंद,
1: मां जाना तो तू ये आसानी सा मुझे पीछे कोन छदी, पर कन खोले बुद्ध मां तोखे पान सा गड कोन रखंदस, निकरी वन न घर मां निकरी वन,
0: मां कोन बिन कैखे ताकत आज मुके न घर मां बाहर कढे,
1: तोखे वणनो पोंदो तोखे वणनो पोंदो, मां तोखे भिका दई कटंदस, निकरी वन निकरी वन।
0: अम्मा

0: 말하고 집이야. 도저 있어.
1: 뭔가? 부탁한데 까메라 많이 나한테지야. 저 차호? 아니, 또 문화인 고래 초빈이 하리. 차고 내 자리나 수분 어디 들자? 걔 들이는 데지 왜 얄미지 새끼는디?
0: 하마. 잡녀. 야, 잡녀 하마. 바라 걔 돈을 봐야 안 약 잡녀. 모두 더 언지아리 두판이 자아따이 마아끼리 삼대적인 아래 비티하냐 삼대미 바야낙 조류 낫거리랭 와인 에이트레미 헷갈레르무 에바디 해목에 비쳐 삼대미 기대베 뻔히 보자야지 꾸리 꼬시지까 여마마 삼대가 아래비 이라고 동아래름그 삼대미 꼬리 쳐지게 엄마, 오스도 성도제비 참아, 애가 미초리 우태, 애우는 회가 앞에 다니기 나래 비들죠. 엄마, 대신 내 빠지 왜야, 엄마. 엄마, 애 두 번이야, 엄마. 두 번, 뜬지 제 밖에서 기나리 때야 지배야. 얘를 꼭 하도록 오네. 두 번이야, 마. 두 번. 르미시 지배야. 르미시 아치배야. 빨리. 난. 막고는 민다스. 막고는 민다스.
2: तमाम नाटक वापसी बुधी रहा हुआ हेर पेश आहे खास खास खबरों. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पंजन मुल्कन जे दौरे जे बे चरण ते नीदरलैंड पहुंतो. अज हैग में डच प्रधानमंत्री राब जेटन सा बेतरफी गालबोल करण लाए. नई दिल्ली में अबूधाबी भारत जे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में यूएई जे भागीदारी खे 30 मिलियन बैरल ताई वधाण ए भारत में स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व कायम करण लाए एक एमओयू कंदो. इजराइल ए लेबनान वॉशिंगटन में गालियुन खां पोए 45 डीएन ताई जंग बंदी वधाण ते सहमत थिया. ब्रिक्स परडेही मंत्री डेमोक्रेटिक ग्लोबल गवर्नेंस ए अमन ए क्लाइमेटिक चेंज के मजबूती तरफी कार्रवाई जो मुताबलो कन था. भारत ताशकंद में तारीखी ब सोन ए सत चांदी जे मेडल सा एशिया अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप समाप्त कयो.

तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया आहियो। हींअर असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थी रहियो आहे। वरी तव्हां सां गॾिजाणी थींदी सुभाणे सुबुह जो भारतीय वक़्तु मुताबिक़ 6:30 वॻे तेसिताईं ॾींदा मोकल। सदाईं गॾु।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल रात नीदरलैंड्स पहुंचे। नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसन ने एमस्टरडम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस यात्रा का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। हेग में प्रवासी भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। डच सैनिकों ने भी उनका औपचारिक रूप से अभिनंदन किया। यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन के साथ यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे। ये यूरोप का करीब 60 सबसे बड़ी औद्योगिक और तकनीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का मंच है। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया के साथ मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोलियम के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपए से घटाकर 16 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है।

सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक में मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: that no ineligible individual remains on the list. In IPL cricket, host Lucknow Super Giants and defeated Chennai Super Kings by 7 wickets in the Ekana Stadium last night. Chasing a target of 188 runs, Lucknow Super Giants overhauled the winning mark in 16.4 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संगीतिका। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विनोद कुमार तिवारी के गाए भजन। आइए सबसे पहले सुनते हैं गाइए गणपति जगवंदन।

आइए सुनते हैं गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज का लिखा ये भजन। गायक हैं विनोद कुमार तिवारी।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं मीराबाई का लिखा ये भजन। आवाज है विनोद कुमार तिवारी की।

श्रोताओं, संगीतिका कार्यक्रम के अंत में सुनिए विनोद कुमार तिवारी का गाया, गोस्वामी श्री बिंदुजी महाराज का लिखा ये भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका, जिसमें आपने सुना विनोद कुमार तिवारी के गाए भजन। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 7:30 होने को हैं और ये समय है गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। हर सुबह आती है एक नई उम्मीद के कारण। सुबह का सूरज हमें संदेश देता है कि हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। तो आइए गीतों भरी गुड मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं इस गीत से।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, कहते हैं वर्तमान और भविष्य को सही करने के लिए आपको अपने इतिहास पर नजर डालना बहुत जरूरी होता है। अगर आज के दिन के इतिहास पर नजर डालें तो आज यानी 16 मई का दिन कई मायनों में खास है। जैसे 1975 में आज ही के दिन सिक्किम आधिकारिक रूप से भारत का 22वां राज्य बना था। और जो दूसरी खास घटना आज के दिन से जुड़ी हुई है वो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट से संबंधित है। क्या आपको पता है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है? अंग्रेजों ने अपने एक तत्कालीन सर्वे अधिकारी के नाम पर इसका नाम एवरेस्ट रखा था। तो आज ही के दिन 1975 में जापान की पर्वतारोही जुनको ताबेई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी थी। और वहीं 2006 में न्यूजीलैंड के मार्क इंग्लिस कृत्रिम पैरों के साथ एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने। क्या करें, पहाड़ों की खूबसूरती ही कुछ ऐसी होती है जो हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहते हैं।

0: श्रोताओं, 16 मई को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के रूप में मनाया जाता है। ये दिन जो विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा और सतत विकास में प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका को याद करते हुए मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा आयोजित ये दिन 1960 में भौतिक विज्ञानी थियोडोर मेमन द्वारा पहले सफल लेजर ऑपरेशन की याद दिलाता है, जिसने पूरे विश्व में एक बड़ी क्रांति लाई थी। और इस बार इस दिवस की थीम है लाइट फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। जी हां, हमारी इस पृथ्वी पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हमें इस चीज की महत्ता की याद दिलाता है।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।

0: अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, जीवन में कुछ पल ऐसे होते हैं जब हमें कुछ बोलना नहीं होता, बल्कि हमारी निगाहें बात करती हैं और हम इस पल को हमेशा के लिए समेट लेना चाहते हैं। और ये गीत भी कुछ यही कह रहा है।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। हम अपने सुनने वालों को बता दें, आज सुबह 10:10 पर आप सुन सकेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद। इस कार्यक्रम में हम आपके पसंदीदा गीत सुनवाएंगे। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है ipradiodelhi@gmail.com। ध्यान रखिएगा, सुबह 10:10 पर। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 8 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में, फिर अंग्रेजी में और उसके बाद उर्दू में।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के

0: साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में UAE गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और LPG भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में UAE की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने LPG पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के CEO से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और AI के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी

0: इसे 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
3: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
4: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले। इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
0: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। इस सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बैनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं।

0: अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में दो दिन की वार्ता के बाद ये समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह श्रीफेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोकसत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है। साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे, सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने बहुत से मुआहदों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें भारत में पेट्रोलियम और गैस के अहम ज़खायर कायम करना भी शामिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बैरून मुल्क सफ़र पर टैक्स आयद करने की मीडिया की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। CBSE ने 12वीं क्लास के तलबा की आंसर शीट्स को दोबारा जांचने का अमल शुरू करने का ऐलान किया है। इसराइल और लबनान ने जंगबंदी में 45 दिन की तौसीह कर दी है। और बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल्स में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया की जोड़ी से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात UAE ने बहुत से अहम समझौतों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें अहम पेट्रोलियम ज़खायर, तवील मुद्दती LPG सप्लाई और दिफा के मैदान में तआवुन शामिल है। इन मुआहदों पर दस्तखत मगरबी एशिया में जारी महाज़ाराई के दौरान अबू धाबी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान के दरमियान आला सतह की बातचीत के बाद किए गए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर की मालियत की सरमायाकारी का अज़्म किया है। वज़ीर आज़म मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में कल UAE पहुंचे थे। मुआहदों में अहम शराकत दारी का मुआहदा भी शामिल है, जिस पर इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी की तेल कंपनियों के दरमियान दस्तखत किए गए, जिसका मकसद भारत की तबानाई की फराहमी को मुस्तहकम बनाना है। इस अमल में पेट्रोलियम के जखायर और रकीक कुदरती गैस नीज रकीक बनाई गई पेट्रोलियम गैस LPG को जखीरा करने की सहूलतें शामिल हैं। वज़ारत खारजा ने एक बयान में कहा कि इस मुआहदे से भारत के अहम पेट्रोलियम ज़खायर में UAE की शराकत दारी में इजाफे से 3 करोड़ बैरल्स का इजाफा होगा और इससे भारत में गैस के अहम ज़खायर कायम होंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत कल देर रात नीदरलैंड्स पहुँच गए हैं। वो अपने दौरे में नीदरलैंड्स के वज़ीर आज़म रॉब जैतन से दोतरफा बातचीत करेंगे और उस मुल्क के बादशाह और मलिका से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म के नीदरलैंड्स के दौरे की खबरें देने वाले हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट।
1: ये दौरा दोतरफा ताल्लुकात से भी ज्यादा अहमियत का हामिल है और उम्मीद है कि हाल ही में किए गए भारत यूरोप आज़ाद तजारती मुआहदे के बाद भारत यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात वसी तर हो जाएंगे। हफ्ते के रोज वज़ीर आज़म मोदी भारतीय बिरादरी से खिताब करेंगे और नीदरलैंड्स की सरकर्दा कंपनियों के CEO से मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि खासतौर पर सेमीकंडक्टर्स, चिप्स और AI के मैदानों में बहुत से अहम मुआहदे किए जाएंगे। तजारत के नुक्ते नज़र से नीदरलैंड्स भारत का एक अहम इकतसादी शराकत दार है। ये भारतीय बरामदात और भारत में सरमायाकारी का सबसे बड़ा मुल्क है। दोनों मुल्कों के दरमियान बड़े पैमाने पर शराकत दारी कायम है और ये दोनों ही मुल्क पानी के बंदोबस्त, काबिल तजदीद तवानाई, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन मीशत, ज़रिए टेक्नोलॉजीज और सेहत के मैदानों में भी एक दूसरे को ताउन देते हैं। नीदरलैंड्स के शहर हेग से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: नीदरलैंड्स के दौरे के बाद वज़ीर आज़म मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में कल स्वीडन के शहर गोटेनबर्ग जाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के अवाम के लिए कारोबार को मजीद आसान बनाने और जिंदगी को मजीद आसान बनाने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने बैरून मुल्क सफर पर महसूल टैक्स या सरचार्ज आयद करने की मीडिया की एक खबर को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह झूठी है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बैरून मुल्क सफर पर इस तरह की पाबंदी लागू करने का कोई सवाल ही नहीं है। बाद में खबरों की इन तंजीमों ने इस रिपोर्ट को वापस ले लिया है और सोशल मीडिया हैंडल्स से इससे मुतालिक पोस्ट को डिलीट कर दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में खबरों की इन सरकर्दा तंजीमों ने इतराफ किया है कि यह रिपोर्ट गलत थी और उन्होंने इस गलती पर मुआज़रत का इजहार भी किया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम की बरामद पर 3 रुपए फी लीटर की खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी आयद की है। वजारत खारजा की तरफ से कल सरकारी गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल बरामदात पर खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी में कमी की गई है। अब यह ड्यूटी 23 रुपए के बजाय 16.50 रुपए फी लीटर होगी। हवाई जहाज के ईंधन ATF पर खसूसी

0: पिगोट ने कहा है कि 16 अप्रैल को होने वाली जंगबंदी को मजीद 45 दिन के लिए बढ़ा दिया जाएगा ताकि मजीद पेशरफ्त मुमकिन हो। यह फैसला अमरीका की मेजबानी में अमरीका और लबनान के दरमियान 2 रोज तक जारी रहने वाली इंतहाई मुफीद और नतीजा खेज मुज़ाकरात के इख्तिताम के बाद किया गया जो कल मुकम्मल हुए। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब पिगोट ने कहा कि अमरीकी महकमा खारजा 2 और 3 जून को सियासी मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू करेगा। इसके अलावा इस महीने की 29 तारीख को पेंटागन में सिक्योरिटी से मुतालिक बातचीत का मरहला भी शुरू किया जाएगा जिसमें दोनों ममालिक के फौजी वफूद शिरकत करेंगे। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के इलाकों में आज शदीद गर्मी की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने कोंकण और गोवा के इलाकों में भी आज गर्म और हफ्स वाले मौसम की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक अंडमान व निकोबार जजायर में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश हो सकती है। बैडमिंटन में बैंकॉक में जारी थाईलैंड ओपन में मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल्स मुकाबले में आज सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के नूर इज्जुद्दीन और गो जी फी की जोड़ी से होगा। इस दौरान पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन समेत दीगर भारतीय खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। सिंधु खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की आलमी नंबर 3 खिलाड़ी अकाने यामागुची से 21-19, 18-21, 15 से हार गई है, जबकि मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में लक्ष्य सेन को थाईलैंड के कुनलावुत वितित्सर्न से 19-21, 16-21 से हार का सामना करना पड़ा। IPL क्रिकेट में कल रात लखनऊ के एकाना स्टेडियम में मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 188 रन के निशाने का पीछा करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर 4 गेंदों में यह मैच जीत लिया। आज शाम ईडन गार्डन में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी शहर से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुत्तहदा अरब इमारात दौरे को शह सुर्खी बनाया है। मुत्तहदा अरब इमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के साथ हुई 2 तरफ़ा मीटिंग के दौरान कई अहम वादे तय पाए जिनमें LPG की सप्लाई और $15 अरब की सरमायाकारी काबिल ज़िक्र हैं। अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत मगरबी एशिया में अमन के लिए हर मुमकिन तआवुन देने को तैयार है। ब्रिक्स ममालिक ने ग्लोबल साउथ और कसीर कुतबी आलमी निज़ाम की अहमियत पर जोर दिया। ब्रिक्स ममालिक के वज़राए खारजा के इजलास में जारी एक सदारती बयान में ये बात कही गई। इस खबर को रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप ने खसूसी तौर पर शाया किया है। अखबारों ने NEET UG 2026 का इम्तहान दोबारा 21 जून को कराए जाने की खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के सदर शी जिनपिंग की पीछिंग में हुई मीटिंग में चीन ने मशरिक़ वस्ती में अमन इस्तेहकाम के लिए फौरी और जामे जंगबंदी पर जोर दिया। इस खबर को रोजनामा इनकलाब ने नुमाया तौर पर शाया किया है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और मुत्तहदा अरब अमारात ने बहुत से माहदों पर दस्तखत किए हैं जिनमें भारत में पेट्रोलियम और गैस के अहम ज़खायर कायम करना भी शामिल है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में नीदरलैंड्स पहुँच गए हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बैरून मुल्क सफ़र पर टैक्स आयद करने की मीडिया की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। CBSE ने 12वीं क्लास के तलबा की आंसर शीट्स को दोबारा जाँचने का अमल शुरू करने का ऐलान किया है। इसराइल और लबनान ने जंगबंदी में 45 दिन की तौसीह कर दी है। और बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल्स में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया की जोड़ी से होगा। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।

0: अब आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारी सेहत।
1: आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के आज के अंक में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का नमस्कार।
2: श्रोताओं नमस्कार। जैसा कि इन दिनों गर्मियों का मौसम है और इस मौसम में कुछ बीमारियां मेनली बुखार, टाइफॉइड, मलेरिया, चिकनगुनिया, वायरल फीवर, पीलिया व डेंगी ज्यादा मात्रा में देखने में आते हैं। हर वर्ष 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है और इस दिन कोई विशेष संदेश या कोई थीम दिया जाता है और इस वर्ष का थीम या संदेश है फाइट डेंगू सेव लाइव्स, डेंगू से लड़ें और जिंदगी बचाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्टडी के अनुसार 2024 से 26 के बीच में विश्व में 14.6 मिलियन यानी 146 लाख डेंगू के केसेस देखने में आए। आज डेंगू 100 से ज्यादा देशों में देखने में एंडेमिक है। एक परिचर्चा के लिए आज के विशेषज्ञों से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर तनु जैन। डॉक्टर तनु जैन डायरेक्टर हैं नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। डॉक्टर तनु जैन आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और हमारे दूसरे प्रोफेसर डॉक्टर घनश्याम पांगती जो कि डायरेक्टर प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और सुचेता कृपलानी अस्पताल में।
3: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर तनु जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगा कि हम हर वर्ष ये 16 मई को नेशनल डेंगू दिवस मनाते हैं और एक थीम देते हैं, जैसे इस वर्ष का थीम है फाइट डेंगू सेव लाइव्स, तो इस पर्टिकुलर डे पर एक थीम देने से क्या कुछ पर्पस हल होता है?
4: तो ये आपने बहुत ही एक अच्छा सवाल पूछा। और आप देखते हैं कि किसी भी मेजर डिजीज़ को लेके कोई ना कोई विश्व में या देश में एक दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, जिसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो उसका कोई ना कोई लक्ष्य होता है। जैसे डेंगू का अगर हम 16 मई का कहें तो इसका एक उद्देश्य ये होता है कि डेंगू का सीज़न अधिकतर प्री मानसून से लेके और पोस्ट मानसून तक रहता है, तो इसके बाद केसेस बढ़ने शुरू होते हैं। तो जब हमारे केसेस लगभग जुलाई के बाद से जब बारिश आती है और बारिश का पानी ठहरना शुरू होता है, केसेस में बढ़ोतरी आती है। लेकिन स्टेट्स को या हॉस्पिटल्स को या जनरल पब्लिक को उसकी प्रिपरेशन बहुत पहले से करनी पड़ती है। तो जो हमारे सेंटर जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में हम रन करते हैं, नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कंट्रोल, तो हमारे प्रयास तो पूरा 12 महीने ही चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कोई लीन पीरियड होता है, लेकिन लोगों को जागरूक करने के लिए कि 16 मई एक इंपॉर्टेंट डे है और यहां से आपकी तैयारियां शुरू हो रही हैं, तो ये तो शुरुआत है। तो ये तैयारियां यहां से ऑब्जर्व करते हैं और की कंप्लायंस होती है, क्योंकि ये हम सारे जो राज्य हैं हमारे उनके साथ मिलके करते हैं। तो 16 मई को आप देखेंगे तो हर राज्य में अपना एक कार्यक्रम होता है, डिस्ट्रिक्ट्स में होता है, बहुत सारे हमारे संस्थान हैं जैसे मेडिकल कॉलेजेस हैं या बाकी संस्थान हैं, वो भी इस दिन को जरूर ऑब्जर्व करते हैं और एक अपने लिए तय करते हैं नियम अनुसार कि हम इस दिन से लेके आगे तक कैसे काम करेंगे और कैसे डेंगू की रोकथाम करेंगे।
2: प्रोफेसर घनश्याम, जब हम बात कर रहे हैं डेंगू की, तो सबसे पहले तो यही जान लेना बहुत जरूरी है कि आफ्टर ऑल डेंगू है क्या, किस किस लोगों को रिस्क ज्यादा है और कितनी समस्या है, कितने विकराल समस्या है।
3: ये एक तरह का वायरस है तो इसमें एंटीबायोटिक बिल्कुल भी असर नहीं करेगी। तो जैसे कई लोग एंटीबायोटिक हमारे यहाँ ले लेते हैं कि बुखार आ गया, तो इसमें एंटीबायोटिक का कोई भी रोल नहीं है। एक तरह का ये वायरस है और ये वायरस वैसे चार तरह के होते हैं, डेंगू 1 से, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4। हम उतने डीपली नहीं जाते कि डेंगू 1 से हुआ, 4 से हुआ, बट हमें पता होना चाहिए कि चार तरह के वायरस होते हैं। और ये जो वायरस होते हैं ये एक तरह से मच्छर के थ्रू हमें इन्फेक्ट करते हैं। तो ये जो मच्छर होता है एडीज मॉस्किटो कहते हैं, जो कि हम टाइगर मॉस्किटो के नाम से भी जानते हैं। ये एक तरह का मच्छर होता है जो दिन में ज़्यादा काटता है और ये साफ पानी में ज़्यादा रहता है, जैसे गमले वमले इस तरह के पानी में। और इसके पैरों में कुछ स्ट्राइप्स होते हैं, सफ़ेद सफ़ेद धारियां सी होती है, इसलिए टाइगर जैसा दिखता है एक तरह से। तो ये टाइगर मॉस्किटो जो दिन में काटते हैं और ये शहर में ज्यादा निवास करता है। तो ये टाइगर मॉस्किटो और या एडीज मॉस्किटो के काटने से डेंगी वायरस इन्फेक्शन होता है। और जैसे कि हमारे देश में तो इतना कॉमन है डेंगी कि हम एक तरह से एंडेमिक हो गए हैं इसके लिए। तो हमारे यहाँ तो अगर मानसून के टाइम में किसी को बुखार होता है और बुखार में बॉडी पेन स्पेशल सिम्टम्स होते हैं, एक तरह का लाल चकत्ते पड़ जाना शरीर में बहुत कॉमन होता है, बहुत सिवियर कभी आंखों के पीछे दर्द होता है और इसमें बहुत मलेज और बहुत थकान और इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, तो ये क्लासिकल सिम्टम्स हैं डेंगी के। और लाल रैश होना और कहीं से ब्लीडिंग हो जाना जो कि सिवियर डेंगू के एक सिम्टम्स है। तो जब भी मॉनसून में हमें जहां पर मॉस्किटो हमारे यहाँ ऑलमोस्ट सभी जगह है तो हमें ये ध्यान देना चाहिए, अगर किसी को हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, उसको स्किन में रैश या चकत्ते पड़ रहे हैं, वो खाने पीने नहीं खा पा रहा है बिकॉज ऑफ फीवर या वॉमिटिंग या बहुत उल्टी जैसा मन कर रहा है और बॉडी में पेन और हेडेक है, तो वो डेंगू के सिम्टम्स हैं। और आपने बताया कि एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है और मच्छर के काटने से होता है, तो हमें मच्छर से बचाव करना है। बुखार में हमें जब भी बुखार हो और इस तरह के वार्निंग सिम्टम आए

0: ब्लीडिंग आए, बेहोशी आए, उसमें हमें डॉक्टर की सलाह लेनी है, और बिना सलाह के ना तो एंटीबायोटिक तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, अगर बुखार भी आए तो पैरासिटामोल को छोड़ के कोई भी पेन किलर नहीं लेना है, बिकॉज उन लोगों को ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, कई बार किडनी खराब हो जाती है।
1: तो ये जो डेंगू है इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे कोई पता लगा एडिस एजिप्टी है या एडिस एल्बोट वो भी आ रहा है, तो क्या आप हमें कुछ डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है कि नहीं? और दूसरा ये कि फीवर तो मलेरिया में भी ठंड लग के होता है, डेंगू वाला भी कहता है मुझे बहुत ठंड लग रही है, तो क्या ये मलेरिया या चिकनगुनिया बुखार करीब करीब सिमिलर सी पिक्चर प्रेजेंट करते हैं, तो इन तीनों में बेसिकली मोटे तौर पर क्या डिफरेंस होता है?
2: तो एक्चुअली जैसा कि डॉक्टर घनश्याम ने अभी बताया हमें कि जो मॉनसून का सीजन आता है उसमें हर तरह की बीमारियां चल रही होती हैं, खांसी जुकाम से लेकर जो भी एक वायरल डिजीज है, डेंगू है, चिकनगुनिया है और मलेरिया है, ठीक है, इसके साथ साथ बहुत सी और भी बीमारियां हैं जो बुखार से शुरू होती हैं। तो हम लोग जो है वो फीवर को एक सिंड्रोम मानते हैं, मतलब एक फीवर आपको ये बता रहा है कि इतनी सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो हमारे सेंटर पे जो नेशनल सेंटर फॉर वेक्टरबॉर्न डिजीजेस कंट्रोल है, तो हम 6 डिजीजेस देखते हैं जिनका सबका इनिशियल जो प्रेजेंटेशन है वो बुखारी होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है। तो जैसे इसमें जैपनीज इनकेफेलाइटिस भी ऐड हो जाएगी, लेकिन इसमें बुखार में डिफरेंशिएट कर सकते हैं और वेक्टर में भी डिफरेंशिएशन है। जैसे मलेरिया के लिए एनोफिलीज वेक्टर है, और डेंगू के लिए और चिकनगुनिया के लिए एडीज वेक्टर है, जेई के लिए क्यूलेक्स वेक्टर है। तो वेक्टर डिफरेंट है, उन मच्छरों की ब्रीडिंग हैबिट्स भी डिफरेंट है कि वो कहाँ ब्रीड करते हैं। जैसे मलेरिया का मच्छर गंदे रुके हुए पानी में ब्रीड करता है, तो उसके लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी एक इशू है। जबकि डेंगू का जो वेक्टर है, जो एडीज एजिप्टाई या एडीज एल्बोपिक्टस है, वो पेरिडोमेस्टिक ब्रीडिंग होती है, तो वो एक छोटा सा 10 ml 15 ml पानी भी कहीं इकट्ठा हो जाएगा और एक हफ्ते तक इकट्ठा रहेगा तो उसके अंदर ब्रीडिंग हो जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ही एफिशिएंट वेक्टर है ये। तो डेंगू का वेक्टर जो है इस तरह ब्रीड करता है, और क्यूलेक्स का वेक्टर यूजुअली बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज में जैसे पैडी फील्ड्स वगैरह हैं वो उन जगहों पर ब्रीड करता है। तो एक तो इनकी वेक्टर की ब्रीडिंग डिफरेंट होती है, फिर इनके प्रेजेंटिंग सिम्टम्स भी डिफरेंट होते हैं। अगर आप मलेरिया का लें तो मलेरिया का क्लासिक सिम्टम तो फीवर विद चिल्स कहा जाता था, फीवर विद चिल्स एंड राइगर, हालांकि वो क्लासिक सिम्टम अब बहुत जरूरी नहीं है कि हर बार देखने को मिले। और मलेरिया में भी दो तरीके का मलेरिया होता है, वाइवैक्स भी होता है और फैल्सीपेरम भी होता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास क्लिनिकल सिम्टम्स तो हैं जो डॉक्टर अपने हिसाब से सोच के लिखता है, लेकिन इस सीजन में अधिकतर हम टेस्ट लिख देते हैं। तो एक माइक्रोस्कोपी होती है और एक रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जो पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट एक तरह से होता है, तो उससे पता आसान से लग जाता है कि ये मलेरिया है या ये नहीं है। कई बारी हमने देखा है कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ऐसी बीमारियां तीनों भी एक साथ हो सकती हैं, और कभी कभी दो बीमारी भी एक साथ हो सकती हैं, क्योंकि वेक्टर तो है और ह्यूमन बींग है। डेंगू में यूजुअली बुखार सिर दर्द के साथ आता है, स्पेशली जो आपके रेट्रो ऑर्बिटल पेन कहते हैं, आईज के पीछे जो पेन होता है, हेड एक, बॉडी एक, उसके साथ यूजुअली फीवर आता है, और ये फीवर के साथ कभी कभी हमें रैशेज भी देखने को मिलते हैं। डेंगू के लिए भी सरकार ने लगभग 870 सेंटिनल सर्वेलेंस हॉस्पिटल्स अक्रॉस द कंट्री बनाए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक है और कई डिस्ट्रिक्ट्स में एक से ज्यादा भी हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस और एम्स लाइक इंस्टीट्यूट जो हैं उनके पास टेस्ट है। तो ये NS1 टेस्ट है एलाइजा और IgM एलाइजा टेस्ट है, इससे डेंगू पता लग जाता है। तो पहले 5 दिन में और 5 दिन के बाद ये टेस्ट आप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा रीसेंट इन्फेक्शन है या थोड़ा पुराना इन्फेक्शन है। तो डायग्नोसिस के लिए बहुत जल्दी और इजी डायग्नोस्टिक्स हमारे पास हैं जो हमको इमीडिएटली बता सकते हैं कि ये कौन सी बीमारी है।
1: जी प्रोफेसर घनश्याम, जैसा डॉक्टर तनु जी कह रही हैं डायग्नोसिस जरूरी है, निश्चित रूप से मलेरिया के लिए आप पेरिफेरल स्मीयर कर लेते हैं, टाइफाइड हो तो टाइफाइड कर लिया, या तो लेकिन क्या है कि डेंगू के लिए क्या हमें पहले बेसिक टेस्ट नहीं करने चाहिए, हमें हम NS1 पे जाएं, CBC, ASR वगैरह करें, क्या उससे कोई पिक्चर में प्रेजेंट होगी कि शायद प्लेटलेट गिर रहे हों? और अगर नॉर्मल प्लेटलेट क्या वैल्यू रहती है, कितना इसमें कितना गिर जाए, किसे हम माने कि भैया हाँ ये डेंगू हो सकता है?
0: जी हाँ जवाहर जी, जैसे कि आपने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैनिक हो जाता है डेंगू जब आता है पूरे शहर में, पूरे देश में एक तरह का परेशान हो जाते हैं लोग कि अरे डेंगू आ गया, और प्लेटलेट के पीछे दौड़ने लग जाते हैं। तो मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट अगर डेंगू में है तो प्लेटलेट नहीं है, हिमेटोक्रिट है, या PCV या पैक सेल वॉल्यूम कहते हैं। जैसे कि आपने बोला हमें CBC कराना चाहिए कोई और, बिल्कुल हमें CBC कराना चाहिए, उसमें हमें देखना चाहिए हिमेटोक्रिट कितना है या पैक सेल वॉल्यूम कहते हैं PCV। ये एक तरह का बताता है कि जैसे हीमोग्लोबिन अगर 15 है तो पैक सेल इसका 3 गुना होता है, 45 के अराउंड नॉर्मल होता है, 40 से 45। तो इस बीमारी में क्या होता है कि कैपिलरी लीक लीक होती है, तो जब कैपिलरी लीक होती है तो आपका जो आरबीसी पार्ट है या जो थोड़ा सा जो हार्ट पार्ट है ब्लड में वो वहीं रहता है और

0: लीक से वो कंसंट्रेटेड हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है खून, तो आपका हिमेटोक्रिट 40 से 50 या 60 हो सकता है। इसका मतलब आपके कैपिलरी से ब्लड लीक हो रहा है, जिसकी वजह से आपको शॉक हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है। तो प्लेटलेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जबकि प्लेटलेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हिमेटोक्रिट है। नॉर्मल प्लेटलेट हमारे यूजली 1.5 लाख से ज्यादा होता है, तो नॉर्मल अराउंड 1.5 to 3 लाख तक हम नॉर्मल कहते हैं। और अगर 1.5 लाख से कम है पर एम एल प्लेटलेट, तो वो कहते हैं प्लेटलेट कम है। बट अगर ये प्लेटलेट बहुत कम हो जाए, जैसे कि हम कहेंगे 10,000 से कम हो जाए, तो हमें चिंता का विषय बनता है डॉक्टर्स के लिए। अदरवाइज 40-50 प्लेटलेट में ऐसा नहीं है कि उनको ब्लीडिंग हो जाएगी, मॉनिटर करने की जरूरत है, बट उसमें प्लेटलेट देने की कोई जरूरत नहीं है अनलेस अंडर पेशेंट को कोई ब्लीडिंग हो रही है। बट मैं ये बताना चाहूंगा कि डेंगू के यूजली जो फीवर आ रहा है, मैडम डॉक्टर तनु ने बताया अभी कि डेंगू जब आता है तो बहुत सारे AFI एक्यूट फीबल इलनेस के एपिसोड में आप मलेरिया, डेंगू के अलावा चिकनगुनिया हो सकता है, स्क्रब टाइफस, टाइफाइड हो सकता है। तो हम सिम्टम्स तो देखते हैं कि बॉडी एक है, उनको रैश हो रहा है, इरिटेबल पेन हो रहा है, ये सारी चीजें देखते हैं। इसके अलावा डेंगू का एक क्लासिकल सिम्टम्स है कि 3 से 5 दिन तक ही फीवर रहता है शुरू में। ये सारे सिम्टम्स आएंगे, 3 से 5 दिन बुखार आता है, उसके बाद 6ठे 7वें दिन बुखार उतर जाता है और वही क्रिटिकल पीरियड होता है, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल पीरियड। उसमें कैपिलरी लीक जो हम करें, हिमेटोक्रिट बढ़ने लग जाता है, प्लेटलेट नीचे गिरने लग जाता है, और उसके साथ पेशेंट को थोड़ा सा बेटर फील होता है। और वहीं चूक हो जाती है कि पेशेंट पानी अगर ठीक से ना ले, हाइड्रेशन ठीक से ना रहे, तो उसको मल्टी ऑर्गन फेलियर और शॉक हो सकता है। और 2 दिन के बाद अगर वो हाइड्रेशन ठीक रहता है तो पेशेंट अपने आप ठीक हो जाता है विदाउट एनी एंटीबायोटिक। मैं ये स्ट्रेस देना चाहूंगा कि एंटीबायोटिक नहीं देना है, तो विदाउट एन एंटीबायोटिक। तो हम अगर किसी को 5 दिन से ज्यादा फीवर हो रहा है, तब हम सोचते हैं इसको शायद डेंगी नहीं, क्या आपका इसको मलेरिया है, क्या आपका टाइफॉइड है, स्क्रब टाइफस है, तो उसको भी इवेल्युएट करना चाहिए। और उन्हीं पेशेंट को हमें इमरजेंसी या अस्पताल में भेजना चाहिए जब उनका फीवर बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। फीवर डेंगी में कई बार ब्रेन में, जैसे आपको एनकेफलोपैथी हो सकती है, उन लोगों को आना चाहिए, अल्टर्ड सेंसोरियम कहते हैं, पहचान नहीं रहा है पेशेंट, या उसको ब्लीडिंग शुरू हो गई, उसको लैटिंग में या फिर यूरिन में ब्लीडिंग हो रही है, इसका मतलब कहीं एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है। तो अगर वो ठीक से नहीं खा पा रहा है, अगर उसको बहुत ज़्यादा उल्टी होगी तो कुछ भी खाएगा हाइड्रेशन नहीं रख पाएगा। तो हम लोग कुछ वार्निंग साइंस देखेंगे, अगर किसी को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, फ्लूड नहीं ले पा रहा है, उसको अस्पताल आना चाहिए इमीडिएटली। अगर किसी को बहुत तेज बुखार है, इतना बुखार है कि वो परेशान है, वो ठीक से अपनी दिनचर्या या एक्टिविटी और डेली लिविंग नहीं कर पा रहा, उसको आना चाहिए। किसी को एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, उसको अस्पताल आना चाहिए और टेस्ट कराने चाहिए। और चौथा, अगर वो अल्टर्ड सेंसोरियम है, लोगों को पहचान नहीं रहा है, इसका मतलब उसके कुछ ऑर्गन्स ठीक नहीं चल रहे, तो इनको अस्पताल आना।
1: प्रोफेसर घनश्याम, क्या ये जो परसिस्टेंट वोमिटिंग है ये, क्योंकि इसमें और रैश, क्या ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फैक्टर हैं डेंगू के डायग्नोस उसमें कि भाई हाँ इनको ये हो सकता है? और NSAIDs का क्या रोल है? लेकिन लोग जो है नॉर्मली एस्पिरिन और ये जो IBUPROFEN इस तरह की दवाइयाँ अपने आप ही खा लेते हैं वो, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और परसिस्टेंट वोमिटिंग और रैश अगर है तो रैश कैसा होता है, कहाँ दिखेगा रैश, कितना रैश होगा?
0: बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि रैश से आप पता कर सकते हैं कि जैसे बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन है
1: जी,
0: मीजल्स होता है, मम्स होता है, इन सब में भी रैश होता है, बट रैश से आप पता कर सकते हैं कोई किसी तरह का एक वायरल इन्फेक्शन है। ऑल्दो ड्रग रैश भी एक रीजन है, बट ड्रग रैश होगा आपने दवाई खाने के बाद हुआ है, तो हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। बट रैश ऐसा होता है कि इसमें यूजली कैपिलरी लीक हो रही है, तो कई बार छोटे छोटे पेटिके कहते हैं हम, दाने दाने से बन जाते हैं, जो इसमें कि ब्लड कैपिलरी से थोड़ा सा ब्लड लीक हुआ है, इस तरह का महसूस होता है, जो कि महसूस टच करने में महसूस नहीं होता है, या पूरे स्किन में ब्लीडिंग जैसा भी महसूस हो सकता है। दूसरा एक एरिथमेटस रैश कहते हैं, आप अगर हाथ पे आप थोड़ा सा प्रेशर दोगे 3 उंगली से आप फोर आर्म में या कहीं पर, तो आपको देखेंगे 3 उंगलियों के निशान छप जाते हैं, तो इस तरह का भी रैश देखा जाता है एक्यूट वायरल इन्फेक्शन में, स्पेशली डेंगू में। तो ये सारे डायग्नोसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट कंफर्म नहीं कर सकते इससे। लेकिन जैसे कि आपने बताया, वॉमिटिंग, परसिस्टेंट वॉमिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्योंकि हम कह रहे हैं डेंगू का इलाज एंटीबायोटिक नहीं है और कोई और पेन किलर भी नहीं है, पैरास्टामोल बुखार के लिए लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रेशन, ठीक से आपको फ्लूड लेना है, पानी लेना है, ORS का पानी ले सकते हो। अगर आप ORS या कोई पानी नहीं ले पा रहे हैं तो आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के चांसेस है, आपके डेंगू सीवियर डेंगू में बदल जाएगा। तो परसिस्टेंट वॉमिटिंग है, पानी नहीं पी पा रहा है और बुखार आ रहा है, इट्स अ इंडिकेशन कि आपको इमरजेंसी जाना चाहिए अस्पताल में, टेस्ट डेंगू के, जैसे कि डॉक्टर तनु ने बताया कि NS1 एंटीजन बहुत अच्छा टेस्ट इजीली अवेलेबल है, आप उसे टेस्ट करा के कंफर्म कर सकते हैं। और क्योंकि वो उल्टी कर रहा है और उल्टी जैसा है तो उसको IV फ्लूड लेना पड़ेगा, तो उसको एडमिट करके एक इंट्राकैथ लगाते हैं हम लोग, उससे IV फ्लूड देंगे, उससे बिल्कुल

0: ठीक हो जाएगा सिर्फ पानी देने से, आइदर मुंह से या आईवी फ्लूड इंजेक्शन से अगर फ्लूड दे तो डेंगू ठीक हो जाता है। 2 दिन क्रिटिकल पीरियड रहते हैं। और लास्टली, जैसे कि आपने बताया कि और कोई पेन किलर नहीं लेना चाहिए,
1: जी
0: पैरासिटामोल की ही गोली लेनी है।
1: और नहीं
0: और
1: लेना।
0: 500 mg की गोली एडल्ट डोजेज होती है, बच्चों की 25 mg/kg के अकॉर्डिंग डोजिंग इस तरह से रहती है। तो पैरासिटामोल के अलावा कोई गोली नहीं लेनी है। आप हर 6 घंटे में पैरासिटामोल की गोली रिपीट कर सकते हैं एडल्ट में, तो एक दिन में 4 गोली तक आराम से आप ले सकते हैं बुखार जब तेज हो उसमें। बट जैसे कि आपने बोला एस्पिरिन अवॉइड करनी है, आपको कोई डाइक्लोफिनेक जो कि बहुत कॉमनली यूज होती है पेन,
1: वो
0: वो
1: भी नहीं
0: सब
1: लेना।
0: अवॉइड करनी है क्योंकि इससे ब्लीडिंग के रिस्क बढ़ जाते हैं, प्लेटलेट डिसफंक्शन हो जाता है और किडनी डैमेज भी हो सकता
1: जी
0: है।
1: डॉक्टर जी, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि डायग्नोसिस में NS1 एंटीजन कर लेते हैं, प्लेटलेट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता, लेकिन क्या कोई नई टेक्निक्स आ गई जैसे हम डिटेक्ट कर सके, कोई जीनोम सीक्वेंसिंग का कोई रोल है या कोई हम वायरल आइसोलेशन का कैरेक्टराइजेशन का कोई रोल है उनका या नहीं है, या हम बहुत एडवांस में बात कर रहे हैं?
2: नहीं, मुझे लगता है कि क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं और क्लिनिकल स्किल्स भी हैं, और जैसा डॉक्टर घनश्याम ने बहुत ही क्लियरली बताया कि 5 डेज के बाद तो वो आपको कुछ भी टेस्ट करेंगे आपको डेंगू का वायरस मिलेगा भी नहीं, मैक्सिमम 5 to 7 डेज तक आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते
1: जी
2: हैं फॉर रिसर्च सेक, फॉर यू नो इन केसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस या कहीं पे कोई नीड है उसमें तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, बट इट इज रियली नॉट रिक्वायर्ड। एंड डेंजर साइंस बहुत अच्छे से बताएं तो जैसे हम भी प्रोग्राम के अंडर में यही डेंजर साइंस बताते हैं, और आपने एक चीज देखी होगी, देयर हैज बीन अ शिफ्ट, अभी प्लेटलेट्स के पीछे इतना पैनिक नहीं है जो एक टाइम पे शायद 8 से 10 साल पहले होता था, और उसकी वजह यह भी है कि प्रोग्राम में एक क्लिनिकल मैनेजमेंट की गाइडलाइंस बनी है और उन गाइडलाइंस को लेके बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग चल रही है। तो जो डॉक्टर घनश्याम भी बोले, फ्लूइड मैनेजमेंट दैट इज वेरी क्रिटिकल, इवन इन सीरियस केसेस द फ्लूइड मैनेजमेंट रिमेन्स अ की। तो जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स छूट जाता है वायरस के इन्फेक्शन की वजह से उसको मैनेज करना मेजर की होता है, और प्लेटलेट का इतना बड़ा इशू आजकल नहीं आता है। डेंजर साइंस में वॉमिटिंग, स्टमक, हम तो इवन पेट में दर्द अगर किसी को हो रहा है, बुखार हो गया, बुखार ठीक हो गया, उसके बाद भी इंसान ठीक नहीं फील कर रहा है, उसको पेट में दर्द है, अनईजी फील कर रहा है, दीज आर द थिंग्स जिसके ऊपर हमारी IC भी बनी हुई है, जैसे पोस्टर्स, चार्ट्स, वीडियोज, ऑडियोज, जो हम जब ये डेंगू का सीजन आता है तो लगातार प्ले करते हैं। तो हमारे लिए सबसे जरूरी यह है कि डेंगू हो, माइल्ड डेंगू हो वो ठीक है, लेकिन डेथ नहीं होनी चाहिए किसी की, और कोई सीरियस केस नहीं होना चाहिए। तो हमारा बहुत बड़ा फोकस है और उसकी वजह से प्रोग्राम के अंडर में बहुत चेंज आया है, हमारा केस फेटैलिटी रेट 0.01 से नीचे चले गया है, सो विच इज अ बिग अचीवमेंट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि इतना हाई केस फेटैलिटी रेट होता था, बहुत डेथ्स होती थी, बट अभी हमारा केस फेटैलिटी रेट बहुत लो हो गया है और बहुत कम हमारी डेथ्स जो है रिपोर्ट होती है। तो ये सारे एफर्ट्स ही हैं जो कि मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और डॉक्टर घनश्याम तो हमारे एक्सपर्ट हैं उसमें, जिसमें उन्होंने गाइडलाइंस में
1: बताया। क्या नारियल पानी का कोई रोल है और क्या सरकार क्या कर रही है? सरकार की तरफ से, आप नेशनल ये जो सेंटर है वेक्टर डिजीज कंट्रोल का, आप उसकी डायरेक्टर हैं, तो क्या सरकार की तरफ से क्या प्रयास है और नया क्या हो रहा है?
2: तो नारियल पानी तो सरकार नहीं ऐसे रिकमेंड करती है, बट रिकमेंड सरकार कर रही है कि हाइड्रेट करें, तो हाइड्रेशन के लिए बहुत सारी चीजें हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, नारियल पानी इज ऑल्सो वेरी सेफ ऑप्शन, अगर आप डायबिटिक नहीं है, हैविली डायबिटिक नहीं है, यू कैन यूज इट, एंड ऐसी कोई बात नहीं है, बट हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम पूरा गवर्नमेंट नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल का रन कर रही है, उसमें प्रिवेंशन से लेके वेक्टर मैनेजमेंट से लेके केस मैनेजमेंट से लेके वो सारी एक्टिविटीज, एक ऑक्टालॉग करके स्ट्रेटजी है हमारी जिसमें 8 स्ट्रेटजीज आती हैं, उसके थ्रू सरकार जो है उसको इंप्लीमेंट करती है।
1: तो वेक्टर डिजीज कंट्रोल के लिए क्या क्या और नए नए मेथड्स क्या ले रहे हैं सरकार, क्या क्या दिखा रही है? क्या कोई वैक्सीन नई डेवलप हो रही है? ऐसा ऐसा सुना जा रहा है कि साहब वैक्सीन नई डेवलप हो रही है।
2: मुझे पता था ये सवाल जरूर आता है,
1: क्योंकि आदमी कहता है कि साहब मुझे टीका लगा दो, मुझे कुछ नहीं करना, फ्लू अब मौसम आ रहा है तो एक फ्लू की वैक्सीन लगा लो, एडल्ट्स वाले है ना, जैसे MMR लगा देते हैं, ऐसे वैक्सीन लगा दो कहता मुझे पीछा छूट जाएगा, तो क्या वैक्सीन इज द आंसर?
2: कुछ वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो अवेलेबल हैं कंट्री में, लेकिन देश में भी और अपनी कंट्री में भी, लेकिन वो अभी हमारी कंट्री के लिए अप्रूव नहीं है। तो जैसे कि डेनवैक्सिया है जो सबसे पहले लाइसेंस्ड हुआ था 2015 में, बट उसको यूज इसलिए नहीं कर सकते कि अगर आपने वैक्सीन नॉर्मल इंसान को दिया तो जब उसको सेकंड किसी और, जब उसको डेंगू होगा, नेचुरल डेंगू होगा, तो वो बहुत ज्यादा सीरियस होगा, तो इसलिए वो वाली वैक्सीन भी हमारे यहाँ रिकमेंडेड नहीं है। बट अभी ICMR एक वैक्सीन लेके आ रहा है, तो विद इन अ ईयर और टू वो वैक्सीन आएगी, उसके ट्रायल्स चल रहे हैं, तो वी आर वेटिंग कि वो वैक्सीन कितनी इफेक्टिव होती है। तो जो अभी करंटली अवेलेबल वैक्सीन है, टकेडा की वैक्सीन भी है, क्यू डेंगा भी है, तो ये वैक्सीन अभी हमारी कंट्री में अप्रूव नहीं है फॉर वेरियस वेरियस रीजन.
1: तो डॉक्टर साहब, ये जो क्या ये डेंगी ऑल है जैसे ये भी जो वैक्सीन है, तो ये सिंगल डोज वैक्सीन है, टेट्रावेलेंट वैक्सीन है, या ये मल्टीपल डोज लगाने पड़ेंगे?
2: डेंगी ऑल जो है ये टेट्रावेलेंट वैक्सीन ही है. और अभी आई थिंक इसकी
0: क्यूडेंगा

0: क्यू
1: मैम
0: डेंगा आई
1: मतलब
0: है,
1: क्यू
0: दैट इज
1: डेंगा,
0: मोर दिस थिंग.
2: तो इसको कितनी बार लगानी पड़ेगी
1: हाँ
2: वैक्सीन को,
1: क्यू
2: कितनी बार लगानी
1: डेंगा,
2: पड़ेगी डॉक्टर
1: हाँ
2: घनश्याम?
1: जी हाँ डॉक्टर जवाहर जी, ऐसा आपने पूछा कि जब वैक्सीन आते हैं तो सबको बड़ी एक्साइटमेंट होती है, आपने
2: जी
1: बताया कि शायद हम डेंगू से पीछा छोड़ जाएंगे.
2: जी
1: 100+ कंट्रीज में हो चुकी
2: जी
1: है, 5-10 करोड़ लोगों को एवरी ईयर हो रही है. तो जो क्यू डेंगा वैक्सीन आई है, आई थिंक रिसेंटली DGCA ने इसको अप्रूव कर दिया, हमारी गवर्नमेंट ने भी, बट इसे अभी फ्रीली अवेलेबल नहीं है. इसमें देखा गया कि ये डेंगू सीवियर डेंगू से बचाता है, ये
2: बस
1: तो सीवियर डेंगू से बचाता है. और चारों जो हमने बताए थे, चार तरह के वायरस होते हैं डेंगू के, डेंगू 1, 2, 3, 4.
2: जी
1: तो डेंगू 2 कहते हैं सबसे ज्यादा फेटल होता है, अब सबसे ज्यादा खतरनाक होता है. तो इसमें डेंगू 2 को लिया गया है, बाकी 3, 4 और 1 को भी कुछ पार्ट है, बट मेन डेंगू 2 बैकबोन में है. 2 बार लगानी है इस वैक्सीन को, एक 0 और 1 3rd मंथ में लगानी है, 2 बार. और काफी सालों तक प्रोटेक्शन कहते हैं कि जहां पर भी ट्रायल हुए हैं, इंडिया में बहुत ज्यादा ट्रायल नहीं हुए बट इट्स अप्रूव्ड, तो काफी सालों तक सीवियर डेंगू से बचाता है. इसको देखा गया, जो स्टडीज की थी वो तो वैसे 4 साल से ऊपर 60 साल तक सब में की गई है, बट मैं बताना चाहूंगा डेंगू सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ना पीडियाट्रिक एज ग्रुप में है,
2: बच्चों में,
1: बच्चों में. हमारे एडल्ट में आते हैं तो वो हम उन्हें समझा सकते हैं कि आपको ज्यादा पानी लेना है, वो सिम्टम्स भी बता देते हैं तो हम उनको हाइड्रेट कर देते हैं, उन्होंने सिम्टम. बच्चा जब बीमार होता है वो बताता नहीं है,
2: जी
1: छोटा बच्चा, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाता, आपको देख के बताना है कि वो बीमार है, वो डिहाइड्रेटेड है, आप उसको फ्लूड देना है, उसको एडमिट करना है. उन लोगों में ये डेंगू वैक्सीन में भी इफेक्टिव अच्छी रहेगी. तो कुछ कंट्रीज में जहां बहुत एंडेमिक है, दे आर सेइंग कि 6 से 16 साल वालों को लगाएंगे ये वैक्सीन, और मे भी नेशनल प्रोग्राम में भी डालें इंडिया में या कहीं पर भी. तो उससे ये रहेगा कि जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में जहां मोर्टेलिटी ज्यादा है उसको हम सेव कर पाएंगे. और अभी तक की सेफ्टी डाटा ठीक है, पिछले जो वैक्सीन थे जो मैडम ने बताया उनसे ये थोड़ा बेटर है, डेंगियोल जो था उससे बेटर है. और क्योंकि अब अप्रूवल हो चुका है, हमारे साइंटिस्ट ने देख लिया है कि इट कैन बी यूज, और अच्छी बात यह है कि ये जिन लोगों को पहले डेंगू हुआ है उसमें ज्यादा इफेक्टिव है. पहले प्रॉब्लम हो रही थी हमें कि इसको डेंगू हुआ दोबारा होगा तो सुपर डेंगू ना हो जाए या साइटोकाइन स्टॉर्म ना हो जाए, तो इसमें डाटा थोड़ा डिफरेंट है. और हमारे कंट्रीज में मुझे लगता है जैसे दिल्ली में इतना एंडेमिक है, हम सबको डेंगू, मुझे भी डेंगू हुआ था एक बार सीवियर डेंगू.
0: और तो जो हमारे केसेस जो है सब क्लिनिकल बहुत सारे हैं,
1: हाँ,
0: तो ऐसा नहीं है कि जो केसेस हो रहे हैं वही डेंगू है, बहुत सारा डेंगू अदरवाइज भी है.
2: डॉक्टर दानू ये बताए कि क्या एक बार जिसको डेंगू हो गया, डेंगू हो गया तो पेशेंट ने कहता भाई डॉक्टर साहब एक बार तो हो गया अब दोबारा तो नहीं होगा, क्या इसकी गारंटी दे सकते?
0: ऐसी कोई गारंटी नहीं,
2: नहीं
0: दूसरे स्ट्रेन से हो सकता है और वो ज्यादा सीवियर होता है.
2: अच्छा, अगर दूसरे चीज ये कि डाइट, क्योंकि सबसे पहले डाइट के अगर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि साहब मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना,
0: बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मैं डॉक्टर घनश्याम से कहूंगी डेफिनेटली अपनी क्लिनिकल स्किल से बताएंगे, बट मुझे लगता है कि वाई डेंगू इन एनी इलनेस फूड शुड बी वेरी सिंपल, इजी टू डाइजेस्ट एंड न्यूट्रिशियस. तो ये बेसिक अगर हम 3 चीजें याद रखेंगे तो हमारे फूड का अनहाइड्रेटेड रहना चाहिए, तो जो भी आपकी पसंद हो बट सिंपल टू डाइजेस्ट होना चाहिए, इजी फूड होना चाहिए और मतलब न्यूट्रिएंट रिच फूड होना चाहिए. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डॉक्टर घनश्याम विल टेल अस.
1: जी हां, मैं क्योंकि हम लोग डेंगू काफी देखते हैं, खासकर अब आने वाला है मॉनसून सेशन, तो कुछ क्लिनिकल एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा. तो उसमें यह है कि हमने बोला हाइड्रेशन इज द ट्रीटमेंट, तो जितना फ्लूड वाली चीजें लेंगे वो बेटर रहेगा. दूसरा रहता है डेंगू एक तरह का वायरस इन्फेक्शन है, इसमें बहुत सीवियर गैस्ट्राइटिस हो जाता है, उसमें आपकी एपेटाइट चली जाती है, तो कई लोग खाना कम कर देते हैं. तो हम कहते हैं जो आपको अच्छा लग रहा है आप खा सकते हो, बट हाइड्रेशन रखो, 2-2.5 लीटर पानी लेना है, पानी लो, ORS लो या नारियल पानी भी लो, नारियल पानी महंगा है नॉर्मल पानी से, अगर ले सके तो अच्छी बात है, उसमें पोटेशियम ज्यादा होता है एंड टेस्टी भी होता है. बट देखा गया खाने के उसमें कि हमने लोग पपीते के पत्ते खाने लग जाते हैं,
2: पपीते के पानी का जूस, नीम और लेमन ग्रास.
1: हाँ, तो पपीते का अगर आप देखो तो पका हुआ पपीता भी या थोड़ा कच्चा पपीता बहुत कड़वा होता है
2: जी,
1: उसका पत्ता तो बहुत ही कड़वा होता है. अगर आप कड़वी चीज खाएंगे तो आपको और उल्टियां होगी, आपको और नौजिया होगा, तो आपका जो हाइड्रेशन रखना है वो और बुरा हो जाएगा. और कहते हैं उससे प्लेटलेट बढ़ जाते हैं,
0: एलोवेरा भी लोग,
1: हाँ एलोवेरा तो ये सारी चीजें जो होती है इससे अगर आपको उल्टियां आ रही है तो आपको हार्म ज्यादा करेगा, आपको डिहाइड्रेशन करेगा, आपका नॉर्मल खाना भी बंद करेगा. तो हमने स्टडीज भी देखी है प्लेटलेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट, कोई भी कड़वी चीज ना खाएं, नहीं तो लोग ऐसे आते हैं कि हम हमें बोला गया कि बकरी का दूध पीना है कच्चा, उससे ठीक हो जाता है प्लेटलेट
2: जी, जी.
1: और क्या क्या चीजें खा रहे हैं, बट कुछ नहीं, आपको सिर्फ नॉर्मल पानी पीना है, साफ पानी पीना है, अगर हो सके तो बॉयल करके पानी को ठंडा करके पिए, और हो सके तो थोड़ा एक चुटकी भर नमक और एक मुट्ठी भर चीनी डाल के ओआरएस बना

0: घर में, दैट इज द बेस्ट थिंग. और जो एपिटाइट है आप खाएं.
1: डॉक्टर साहब, जो डेंगू का जो वायरस है, ये मेनली कौन से ऑर्गन को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है?
0: सबसे इंपॉर्टेंट तो कार्डियोवेस्कुलर कहेंगे, तो कार्डियोवेस्कुलर में वेस्कुलर ब्लड वेसल में ही इफेक्ट कर रहा है. इसमें क्या हो रहा है कि आपके जो वायरस आता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही है और वो बॉडी रिएक्ट करके आपकी कैपिलरी जो ब्लड वेसल धमनियां है उसमें लीकेज
1: शुरू हो जाती है.
0: तो लीकेज करेगा तो आपके जो एक तरह से ब्लड वेसल ब्लड प्रेशर ना उस ब्लड वेसल के टोन से या उसके प्रेशर से बनता है. जब कैपिलरी लीक हो तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा. ब्लड प्रेशर एक बार कम हो गया नॉर्मल, जैसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं 120 से, हम लोग 90 से ऊपर लेते हैं, 120 तक कहते हैं. अगर 90 से कम सिस्टोलिक बीपी, ऊपर वाला बीपी कम होता है तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है आपको सारे ऑर्गन फेल हो जाएंगे. आपका लीवर में LFT डेरेंज हो जाएगा, KFT डेरेंज हो जाएगा, तो सारे फंक्शन डेरेंज. तो सबसे इंपॉर्टेंट ये ब्लड वेसल में एक्ट करता है. बट देखा गया कि कुछ में सिवियर डेंगी में आपके लीवर में डायरेक्ट एक्शन कर देता है, तो आपका लीवर डैमेज होकर आपको जॉन्डिस हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा उल्टियां या बेहोशी हो सकती है. और दूसरा ब्रेन में भी एनकेफलोपैथी भी कर सकता है, या कई बार डेंगी एनकेफलाइटिस हो सकता है. तो वो रेयर टू रेयर इंस्टेंसेस है, कॉमन नहीं है, और उसको प्रूव करना भी बड़ा मुश्किल है ब्रेन का टेस्ट करके, इमेजिंग करके या CSF टेस्ट करके. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैपिलरी लीक हो रहा है, आपकी धमनियां लीक कर रही है, तो आपको लीक में जितना फ्लूड जा रहा है आपके लीकेज में, आपको IV फ्लूड से उसको चढ़ाना है या मुंह से लेना है.
1: डॉक्टर साहब, सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी बीमारी के, किसी भी रोग के, कि इसका रोकथाम क्या है, प्रिवेंशन क्या है, प्रोटेक्शन क्या है.
2: भारत सरकार की पूरी यही कोशिश रहती है कि डेंगू को प्रिवेंट किया जाए, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसी को लेके चलते हैं. तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ये समझना है कि आपको मच्छर के काटने से बचना है. तो कैसे बचना है कि पहले तो अपने घर के आसपास और घर के अंदर किसी भी कंटेनर में, चाहे छोटा सा भी कंटेनर हो, स्पेशली फ्लावर पॉट्स, उसके नीचे रखी हुई ट्रे, उनके ऊपर पानी कहीं जमा नहीं होने देना है. ये डेंगू का मच्छर इवन एक साल बाद सर्वाइव कर जाता है. जो आपने पानी, जैसे कूलर खाली किया, उसको ड्राई कर दिया, बट एक साल तक अगर आपने उसको स्क्रब नहीं किया, एक साल बाद आप दोबारा फिल करेंगे तो उसका एग फिर से लाइव हो जाता है. तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कहीं पर भी पानी जो है वो रुका हुआ, ठहरा हुआ 7 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए. इसलिए हम एक डे मनाते हैं, ड्राई डे जिसे कहते हैं, कि हफ्ते में एक दिन एक ड्राई डे मनाए, जिसमें कि एक तो पानी खाली कर दें. दूसरा, बहुत समझने की जरूरत है कि डेंगू का मच्छर बहुत एफिशिएंट है, एक सिंगल बाइट से भी वो ट्रांसमिट कर सकता है डिजीज को. तो यानी कि आप पूरे वहां के और नीचे, क्योंकि वो प्रेफर करता है लेग्स पे, फेस पे, आर्म्स पे, यहाँ पे उसको बाइटिंग प्रेफरेंसेस हैं, तो इन पार्ट्स को अपना कवर रखें. और स्पेशली हॉस्पिटल्स के लिए हम जैसे रिकमेंड करते हैं कि अगर वेक्टरबॉर्न का सीजन है, तो अगर कोई भी डेंगू मलेरिया का पेशेंट या चिकनगुनिया का भर्ती होता है, तो उन हॉस्पिटल्स में बेडनेट्स हमेशा रहने चाहिए, ताकि विद इन हॉस्पिटल भी ट्रांसमिशन ना हो, ये भी देखने में आया है. घर में आप जो है दिन के टाइम भी सो रहे हैं तो मच्छरदानी में सो सकते हैं, रात को तो, क्योंकि ये डे बाइटिंग मस्किटो है, तो सबसे ज्यादा इसमें ना जैसे स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो बहुत इफेक्ट होते हैं, क्योंकि वो उनकी यूनिफॉर्म इस तरह की रहती है कि उनके पैर में दिन भर वो बैठे हुए हैं क्लास में, और क्योंकि वो मच्छर की हाइडिंग प्लेसेस ही वो हैं कि वो थोड़े से डार्क एरिया में छुप जाता है, तो टेबल के नीचे और इधर उधर छुप गया तो वो बाइट कर सकता है.
1: बस छोटा सा एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि फॉगिंग का कोई रोल है?
2: फॉगिंग का बहुत बड़ा रोल नहीं है, और फॉगिंग बड़े मैसिव अगर कहीं पे आउटब्रेक्स हो जाए या आपको बहुत हैवी वेक्टर की ब्रीडिंग मिले, क्योंकि फॉगिंग आउटडोर होती है, आउटडोर में ये मच्छर इतना पनपता ही नहीं है, ये मोस्टली अंदर घर के पनपता है. और कई बार लोगों को देखा गया है कि जब फॉगिंग हो रही होती है तो खिड़कियां बंद कर देते हैं, तो घर के अंदर तो आपका केमिकल गया नहीं है, तो घर के बाहर है, तो जब आप खिड़कियां खोलोगे तो मच्छर बाहर से और अंदर आ जाते हैं. तो फॉगिंग का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन हमको पर्सनल प्रोटेक्शन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, और यही गवर्नमेंट के प्रयास है.
1: डॉक्टर तनु जैन डायरेक्टर हैं नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. प्रोफेसर डॉक्टर घनश्याम पांगती, जो कि डायरेक्टर प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और सुचिता कृपलानी अस्पताल में. डॉक्टर तनु जैन और प्रोफेसर डॉक्टर घनश्याम, आपका इस बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.
0: नमस्कार. धन्यवाद.
3: फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार.
4: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत. कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल.
5: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत. यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम धरती आकाश।
6: नमस्कार, धरती आकाश कार्यक्रम के इस अंक में आप सभी का स्वागत है।
7: सभी श्रोताओं को कमल किशोर का नमस्कार। साथियों, विज्ञान और साहित्य का बहुत गहरा संबंध है। जीवन दर्शन और जीवन शैली के समूचे कर्मकांड और उसके परिणाम मनुष्य के साहित्य में परिलक्षित होती हैं। इसीलिए साहित्य को जीवन दर्पण भी कह सकते हैं। इसमें विज्ञान भी शामिल है। वैज्ञानिक समाज के विकास में विज्ञान, साहित्य और पुस्तकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ज्ञान के प्रसार की सोच और जिज्ञासा को बढ़ावा देते हैं। आधुनिक युग में तकनीक के साथ साथ गलत सूचनाओं को रोकने और समाज आज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने में, यानी कि साइंटिफिक टेंपर पैदा करने में ये पुस्तकें, जो कि विज्ञान की पुस्तकें होती हैं, विज्ञान साहित्य की जो पुस्तकें होती हैं, वो मुख्य भूमिका निभाती हैं। इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करेंगे, पुस्तकों पर चर्चा करेंगे कि वैज्ञानिक समाज के विकास में इनके महत्व क्या है, किस प्रकार हो सकते हैं, किस प्रकार से ये लोगों के काम आ सकती हैं। इनके महत्व को बताने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सेवानिवृत्त दानिक्स अधिकारी महेश कुमार गुप्ता जी को। और महेश कुमार गुप्ता जी जो अपनी किताबें लिखते हैं, रचनाएं करते हैं, वो महेश भारती के नाम से रचनाएं करते हैं। महेश कुमार गुप्ता जी, हम आपका स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार।
8: नमस्कार, धन्यवाद।
7: महेश जी, हमने कई अधिकारियों के नाम तो सुने हैं, कई पोस्ट सुने हैं, लेकिन ये जो दानिक्स अधिकारी हैं, ये किस प्रकार के अधिकारी होते हैं, यानी कि इनका काम क्या होता है?
8: ये दानिक सेवा जो है ग्रुप बी सर्विसेज है, और इसमें से ज्यादातर संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जाती है उसमें से उनका चयन होता है, और कुछ अधिकारी जो है स्थानीय प्रशासन से पदोन्नति पाकर इसमें आते हैं। दानिक्स का मतलब हुआ कि दिल्ली, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन देव एंड लक्षद्वीप सिविल सर्विसेज,
7: यानी कि ये इन सभी यूनियन टेरिटरीज हैं लगभग, उनके वहाँ पर जो काम करने वाले हैं उनके अधिकारी हैं। आप तो इस प्रकार प्रशासनिक अधिकारी रहे एक प्रकार से, और आपने कई स्थानों का भ्रमण भी किया हुआ है, क्या आपकी विज्ञान में रुचि रही है क्या?
8: हाँ, विज्ञान में मेरी शुरू से ही रुचि रही है, कॉलेज टाइम से रही है। फर्स्ट ईयर में था तो मैंने एक आर्टिकल लिखा मंगल ग्रह पर जीवन, तो वो समय हिसार एक शहर है, वहाँ से एक नवनाद पत्रिका निकलती थी, मेरा पहला लेख उसमें छपा था। पहली किताब चांद से मंगल तक तब आई जब मंगल पर एक अमेरिका की एक बग्घी वहाँ गई, और तब वो प्रकरण ताजा था, और फिर उसी के कुछ दिन बाद ही ये पुस्तक आई चांद से मंगल तक। उसका फोकस चांद से ज्यादा मंगल पर था।
7: जी महेश जी, आपने अभी एक शब्द कहा बग्घी, ये बग्घी शब्द साइंस में?
8: रोवर का हिंदी अनुवाद है। रोवर जो है, जैसे चंद्रमा पर रोवर जाता है, मंगल ग्रह पर जाता है, वो घूमता रहता है। अच्छा, मुझे इस समय कोई उससे उचित कोई शब्द उसका रूपांतरण लगा नहीं। रोवर को हो सकता है कि आप मानक शब्द कुछ और हो, परंतु मेरे दिमाग में बग्घी है। रोवर हिंदी के पाठक के लिए इतना प्रचलित नहीं है। जो अंग्रेजी जानने वाला हिंदी का पाठक है उसके लिए सामान्य हो सकता है, परंतु बहुसंख्या ऐसी भी संख्या के लोग हैं हिंदी के पाठक जो अंग्रेजी इतनी नहीं जानते, तो उनके लिए बग्घी शब्द जो है वो उनके मानस में जल्दी स्ट्राइक करता है। जिन विषयों पर मैं लिख रहा हूँ ये रॉकेट साइंस है, और इसका मतलब ये जटिल विषय है। जटिल विषय को आप जो है कितने सरल तरीके से उसका संप्रेषण आम जन तक कर पाते हैं, परंतु ओवरऑल हमारा प्रयास ही रहता है कि उसमें मेरे अंदर जो कवि और साहित्यकार है वो उसकी भी झलक मिले, और सरल भाषा का प्रयोग किया जाए। तत्सम शब्दों का ज्यादा प्रयोग ना करके देशज और उर्दू निष्ठ शब्दों का ज्यादा प्रयोग किया जाए, ताकि भाषा में फ्लो भी रहे और बोलचाल की भाषा के निकट, जन भाषा के निकट वो आ सके।
7: महेश जी, पिछले दिनों चांद हमारे लिए बहुत महत्व हो गया, पिछले दिनों चंद्रयान भी गया था, चंद्रयान हमने भेजा था, और आपकी जो 3 किताबें प्रकाशित हुई है, और आपके मन में आगे भी लिखने की, आगे भी रचनाएं करने की कुछ आप सोच रहे होंगे, चल भी रहा होगा काम, तो तीनों किताबों में चांद शब्द कॉमन है, या फिर मून शब्द कॉमन कहना चाहिए, तो ये चांद के प्रति आपका लगाव?
8: चांद के प्रति मेरा ही लगाव नहीं है, पूरी मानव प्रजाति का है। उसका कारण एक ये है कि एक तो ये सबसे निकट पृथ्वी के खगोलीय पिंड है, हमारी पृथ्वी का उपग्रह, और दूसरे जो है कुछ संभावनाएं ऐसी बनती है कि वहां पर कुछ विशेष प्रकार के खनिज पदार्थों की बहुतायत है, और भविष्य में संभावना बनती है कि वहां हम खनिज पदार्थों का दोहन कर पाएंगे। दूसरे क्या है कि आपने देखा होगा कि 6.5 करोड़ साल पहले उल्क शायद यही मानता है कि उल्का गिरने से डायनासोर नष्ट हो गए, और अगर भविष्य में ऐसा उल्कापात हुआ पृथ्वी पर और यहाँ पर जो रहने वाली मानव प्रजाति है वो नष्ट हो गई, और अगर हमने उससे पहले वहाँ बस्तियां बसा ली, तो हमारा कुछ पार्ट जो है वो हो सकता है उससे सुरक्षित रह पाए। चांद का नाता हमेशा से रोमांस से रहा है, और चांद जो है प्रेमी प्रेमिकाओं और आदि मानव के जीवन में, आज हम इस चीज को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे कि आज जबकि कृत्रिम रोशनी का युग है, आदि मानव के जीवन में चांद एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, एक प्राकृतिक रोशनी का काम करता। दिन में तो सूरज की रोशनी रहती है, अब रात को जो है ना, जब चंद्रमा की कलाएं ज्यादा होती है तो उसके काफी खतरों से उसको

0: आता था
1: जी जी
0: चांद
1: जब कभी किसी
0: चांद
1: की तारीफ करनी हो तो चांद की बात होती
0: चांद की बात
1: है
0: होती
1: ना। जब किसी को मतलब कुछ कम दिखाना हो तो
0: है।
1: चांद पे दाग लगा हुआ है,
0: हाँ
1: इस प्रकार की बातें होती हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चांद जो है ना मतलब आदिकाल से लेकर मेरी पुस्तक में मैंने कालिदास जी को भी कोट किया है,
1: अच्छा कालिदास को भी कोट किया हुआ है।
0: कालिदास को भी
1: तो
0: कोट
1: आप किस
0: किया।
1: प्रकार से रिलेट कर पाते हैं कि साइंस और कहां कालिदास जी और कहां साइंस?
0: गीता को भी उद्धृत किया गया है, गीता के भी संस्कृत के श्लोक है। पहली मेरी पुस्तक आई थी
1: जी
0: तो उसका जब समीक्षा की गई तो नवभारत टाइम्स ने लिखा था कि विज्ञान में हिंदी की तरह लिखी गई पहली पुस्तक है। मतलब आमतौर पर क्या होता है कि अनुदित पुस्तकें होती है या नहीं भी होती है तो उस पर अनुवाद की छाया होती है, आपको पढ़ने से लगेगा भाई ये अनुवाद किया गया है। अब हिंदी के मुहावरे में अगर लिखा जाए तो फिर आपको अटपटा नहीं लगेगा।
1: चलिए, ये तो किताबों की बातें हुई और आपने इस प्रकार से सबको एक रोचक ढंग से आपने प्रस्तुत किया है, किताबों में लिखने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि आपकी जो किताबें हैं पसंद जरूर आएंगी। वैसे देखा जाए तो जो वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण होता है किताबों में साहित्य को लेकर के और या फिर जो तार्किक होता है उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, उनके दृष्टिकोण का इस प्रकार का विकास के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए ऐसा है, जहां तक मेरी जानकारी है भारत के संविधान में भी नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत ये लिखा गया है कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, और भारत की ज्यादातर आबादी गांव में रहती है और दूर दराज इलाकों में रहती है। यहाँ की आपका रेडियो प्रबल है और उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, और रेडियो के साथ साथ फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर उन लोगों में विकसित करना है तो हमें जो है उनकी भाषा में यानी हिंदी भाषा में आम बोलचाल की भाषा में विज्ञान पर लिखना होगा। बहुत लोगों ने लिखा है, भीष्म पितामह जी विज्ञान लेखन के, गुणाकर मोले जी रहे हैं, बहुत लिखा है, आजकल भी लिख रहे हैं लोग, देवेंद्र मेवाड़ी जी लिख रहे हैं, परंतु इतना ज्यादा प्रोत्साहन शायद साहित्य के मुकाबले में विज्ञान को नहीं है अभी।
1: यानी कि आप कहना चाहते हैं कि जो हम बातचीत करते हैं विज्ञान को, अगर हम बिल्कुल ही वैज्ञानिक तरीके से आम बोलचाल की भाषा में अगर हम बातचीत करें या लोगों को बताएं तो थोड़ी सी रोचकता कम हो सकती है, लेकिन अगर उसमें कुछ साहित्य की कुछ और विधाओं को यानी कि कुछ हास्य टाइप की, कुछ जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं उनकी बातों को लेकर के उनको अगर कोट कर दें, उनको अगर रिलेट कर दें तो वो ज्यादा रोचक बन जाते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप?
0: सही बात है ये, क्योंकि नवीनतम पुस्तक में मैंने हरिवंश राय बच्चन जी को कोट किया है, इस पार प्रिय तुम हो इस पार न जाने क्या होगा
1: जी,
0: इस पार प्रिय तुम हो मधु है
1: जी,
0: उस पार न जाने क्या होगा
1: जी,
0: और चांद आता है उदास है, ये कविता है
1: जी जी।
0: और द्वितीय पुस्तक में मुक्तिबोध जी की कविता है और उसके बारे में कहते हैं हमारे कंधों पर चंद्रमा मंगल पर जाने वाले ये लोग, तो उन्होंने कटाक्ष किया है
1: जी जी जी।
0: तो मेरे को जहाँ से जो मौका मिलता है मैं ऐसा करता हूँ, हास्य का पुट भी देने का प्रयास करता हूँ। देखिये बोझिल विषय को अगर आप रुचिकर बना पाएंगे तो वो आपकी उपलब्धि है, अदरवाइज विज्ञान में शाब्दिक अनुवाद कर देना वो कोई विशेष उपलब्धि नहीं।
1: वैसे देखा जाता है कि विज्ञान के जो जटिल सिद्धांत है उनको अगर सरल भाषा में समझा करके सामान्य जनता तक पहुंचाई जाए तो उसमें और ज्यादा रोचकता बनी रहती है और उसकी जो एक उद्देश्य है उसमें हम सफल होते हैं। क्या कहना चाहेंगे?
0: ठीक बात है, इसके लिए जरूरी नहीं कि जो लेखक जो है वैज्ञानिक हो, वैज्ञानिक अगर अपनी बात कहेगा तो वो साइंस टर्मिनोलॉजी में कहेगा, और उसका अच्छा संप्रेषणीयता होनी उसके पास जरूरी है, वो संवाद स्थापित कर सके और कम्युनिकेटर अच्छा होना जरूरी है उसके लिए
1: जी। तो जो नई सोच और रचनात्मकता जो होती है इसमें किस प्रकार सामने आती है, जैसे विज्ञान कथा है, विज्ञान की जो कोई कहानी है, साइंस फिक्शन की कहानी है, उनको आप किस प्रकार से इसमें शामिल करने के लिए देखते हैं?
0: विज्ञान कथा जो है ना तो उसका सम्मिश्रण है कल्पना और स्वप्न और फैंटेसी, और मेरी पर्टिकुलरली विशेषता ये जो नवीनतम पुस्तक है ये इस तीनों चीजों को मिलाकर इसको मैजिकल रियलिज्म यानी जादुई यथार्थ की परिधि तक लाकर खड़ी करती है। हमने इसमें बात की 2055 के आसपास चंद्र पर्यटन सामान्य बात हो जाएगी और आम नागरिक भी सामान्य रूप से चंद्रमा का भ्रमण कर पाएंगे और उनमें से कुछ लोग नवविवाहित जोड़े वहाँ हनीमून मनाने की भी सोच पाएंगे।
1: अच्छा, हिंदी साहित्य में जो विज्ञान कथा की जो परंपरा है उसको आम जन तक पहुंचाने के लिए क्या विज्ञान कथा को साइंस फिक्शन के रूप में भी प्रस्तुत करना ये लोगों तक पहुंचाने के लिए बेहतर उपाय मानते हैं?
0: मानता हूँ, क्योंकि साइंस फिक्शन हो या विज्ञान कथा हो उसका वो आधार जो है ना विज्ञान ही हो, और विज्ञान को आधार लेकर उसमें कल्पना की जाती है, प्रोजेक्शन किया जाता है भविष्य। विज्ञान कथा में जो है ना ये हमें छूट रहती है कि हम उसको कल्पना भी उसमें शामिल करें, और कल्पना ऐसी शामिल करें जिसका तार्किक आधार हो, और प्रोजेक्शन जो है वो रियलिस्टिक हो, उसका भविष्य का जो आकलन है वो पाठकों को जचे। दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर जो विज्ञान कथा से हटकर जो बातें हैं उसके अंदर आपको तथ्य ही देने पड़ेंगे। विज्ञान कथा में आप ये छूट ले सकते हैं, आर्थर सी क्लार्क साहब ने बहुत विज्ञान कथाएं लिखी, सबसे प्रसिद्ध वही हुए हैं। विज्ञान कथा तो फिर आपका फिक्शन है, साइंस फिक्शन है,
1: साइंस फिक्शन है,
0: और जो तथ्य जैसा है वह तथ्य आपको वैसा ही देना पड़ेगा।
1: महेश जी, आप कई जगहों पर कई स्थानों पर भ्रमण कर चुके हैं, काम कर चुके हैं, वहां की परिस्थितियों को देख चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात साथ कि आपने अंडमान निकोबार में भी अपनी सेवाएं दी हैं, तो वहाँ की जो जैव विविधता है उसको आप किस प्रकार देखते हैं? वहाँ की जो जैव विविधता कह सकते हैं कि एक बेहतरीन उदाहरण है पूरे देश के लिए।
0: देखिए, ऐसा है कि बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता उन स्थानों पर ज्यादा पाई जाती है जो अलग थलग हो, जिनके बीच में सीधा संपर्क ना हो, भूमि मार्ग से संपर्क ना हो, और जैसे मेडागास्कर आइलैंड है या और स्थान है, मॉरिशस है। तो अंडमान का जहां तक सवाल है, 39 स्पीसीज ऐसा है बर्ड्स का, प्रजातियां ऐसी है जो एंडेमिक है, यानी केवल अंडमान में पाई जाती है। और उसके अलावा फ्लोरा में क्या है कि बहुत से पेड़ों की प्रजाति, पौधों की प्रजाति, वहां पे एक लकड़ी, एक किस्म की लकड़ी का पेड़ होता है पैडोक। लकड़ी जो है आपके शीशम और सागवान से मजबूत है और उसका लाइफ जो है 100 साल से ऊपर है। तो पैडोक लकड़ी और जो आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है इंडिया का, 21% अंडमान में पाया जाता है, 70% सुंदरबन में है, बाकी 9% और जगह पे।
1: तो पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में मैंग्रोव का जिक्र किया था। तो मैंग्रोव के पौधे लगाए जाए, मैंग्रोव के जंगल हो यहाँ पर, तो जिससे कि जैव विविधता बनी रहेगी, जल संरक्षण होगा।
0: इसके अलावा आपदा के समय में वो एक नेचुरल बैरियर का काम करते हैं मैंग्रोव,
1: ये बहुत बड़ा।
0: हाँ जी, हाँ जी
1: जी,
0: जब सुनामी आएगी या तूफान आता है तो उनकी जड़े बाहर होती है और वो एक तरह के बैरियर का काम करते हैं, हमें बचाते हैं। और कोरल जो है, कोरल रिच है अंडमान, लक्षद्वीप भी कोरल रिच है, परंतु ज्यादा दोहन से, ज्यादा टूरिस्ट आने से, तो उसका धीरे धीरे थोड़ा उस पर प्रभाव आता है, परंतु वो नेचुरली ग्रो करते हैं। एक और मैं आपको विशेष बात बताना चाहता हूँ कि अंडमान में कई जगह ऐसी है जहाँ ऑस्ट्रेलिया से, इंडोनेशिया से कछुए आकर अंडे देते हैं।
1: अच्छा।
0: और वो एक विशेष प्रकार की प्रजाति ओलिवर रिडले, तो वो एक सीजन में जनवरी के आसपास आकर वहाँ पे अंडे देते और चले जाते हैं।
1: अच्छा,
0: और वहाँ का वन विभाग उन अंडों को संरक्षित करता है, फिर हैचिंग होता है, उसके बाद जब बच्चे निकलते हैं उनको सुरक्षित जो है ना, वो नेचुरली अपने आप पानी में चले जाते हैं।
1: अच्छा, तो नेचुरली फिर वो फिर वापस चले जाते हैं।
0: वापस चले जाते हैं क्योंकि उनका नेचुरल हैबिटेट तो पानी है।
1: जी जी,
0: उनको किसी को बताना नहीं पड़ता, वो अपने आप चले जाते।
1: तो जैसे कि अंडमान निकोबार या फिर लक्षद्वीप जो कि टापू है, वहाँ पर लोगों की पहुँच कम है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि वो संरक्षित है।
0: कह सकते हैं, परंतु संरक्षित होने का यही एक कारण नहीं है कि लोगों की पहुंच कम है। लोगों की पहुंच होने से भी हम ऐसे दिशा निर्धारित कर सकते हैं जिससे उनकी जो नेचुरल स्टेट है उसको खतरा ना हो। जैसे हमारा सीआरजेड रेगुलेशन है, सीआरजेड कोस्टल रेगुलेशन जोन, उसके अंदर यह है कि जो हाई टाइड का पॉइंट है उससे 500 मीटर के अंदर आप कोई पक्का कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो इससे भी बचा होता है। सवाल कानूनों का नहीं है, उनके लागू करने का, इम्प्लीमेंटेशन का। तो अंडमान में एटलीस्ट इनको सख्ती से लागू किया जाता है।
1: तो वहां पर जो ऊंगी और ये जो जरवा जनजाति है, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि इनके प्रकृति की ये तो खास बिल्कुल करीब रहते हैं और इनको प्रकृति के बारे में बहुत बखूबी मालूम भी रहता है, तो क्या उन्हें भी हम एक प्रकार से संरक्षित करने या फिर उनके द्वारा जो जैव विविधता है वो संरक्षित होती है कह सकते हैं?
0: बिल्कुल होती है, और उसके लिए अंडमान प्रशासन और वहाँ का जनजाति विभाग जो है पूरे प्रयास करता है। जो आपका जारवा जनजाति है या ओंगी है, उनको मतलब हैंड्स ऑफ, उनको डिस्टर्ब ना किया जाए परंतु उनको सपोर्ट भी किया जाए। हाल ही में आपने सुना होगा कि एक नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, तो वहाँ के लोग तो आदिवासी जो है
1: हटबे
0: तो,
1: में चले गए थे जो,
0: नहीं वो पोर्ट ब्लेयर से 40 किलोमीटर के करीब है।
1: अच्छा।
0: और वहाँ वो किसी को नहीं आने देते, वो कोई आता है तो फिर वो जब तक पानी में रहता है तो कोई बात नहीं, जैसे वो जमीन पे कदम रखेगा तो वो उसको हत्या कर देते, उनको खतरा लगता है। और एक अमेरिकी नागरिक जो था वहाँ पर गए थे बाइबल लेकर, तो बाद में कुछ दिनों बाद उनकी लाश मिली थी।
1: तो अगर वहाँ से प्रेरणा लेकर के अगर हम वहाँ की तरह तो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि आजकल पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है शहरों में खासकर, और गाँव में आजकल पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, वहाँ पर भी अब जो मौसम है वो बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उन सब के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, प्रकृति ने हमें कई वरदान दिए और मनुष्य प्रजाति अगर उनका सम्यक रूप से प्रयोग करेगी, दोहन करेगी तो ठीक रहेगा। अगर ज्यादा एमिशन रहेगा, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होगी, तो उसमें अल्टीमेटली पृथ्वी का तापमान जो बढ़ता रहेगा और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है, जिससे अजीब किस्म की मौसमीय परिस्थितियां नजर आती है। आजकल आप देख ही रहे हैं, जो स्थापित जो मौसम होता है उसमें जो प्रकृति की क्रिया है, उनके बारिश में बारिश होनी चाहिए, कई बार बारिश के सीजन के अलावा इतने बारिश और तूफान आते हैं, तो वो इसी का परिणाम है। अंडमान इतने लोग नहीं जाते हैं, अंडमान इसलिए नहीं जाते कि वहाँ का जो वायुयान का किराया है वो बहुत अधिक है, और इससे कम खर्च में तो

0: सुबगाही प्रोग्राम में सामिनी भी आप समात फरमा रहे थे महुआ चटर्जी से भजन। इसके साथ ही आज का सुबगाही प्रोग्राम अब खत्म होता है। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है प्रोग्राम आज सवेरे।
1: आज 16 मई 2026 है और आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी मनाया जाता है। विज्ञान, संस्कृति और कला में प्रकाश की जो भूमिका है ना, उसकी महत्ता को जानने के लिए हर साल 16 मई को यूनेस्को द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। और जो पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस है ना, वो 2018 को मनाया गया था।
2: नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इयर्स। In the year 1929, the first ever Academy Awards were handed out in Hollywood, California, with about 270 people in attendance. In 1966, the political and social campaign known as the Cultural Revolution officially began in China with the publication of the May 16 notification issued by Mao Zedong.
1: और इसके कुछ दिन बाद आज ही के दिन 1975 में सिक्किम को औपचारिक रूप से भारत का 22वां राज्य बनाया गया था और राजशाही इस दिन समाप्त हुई थी और ये 22वें राज्य के रूप में।
2: यस, 22nd स्टेट। इन द सेम ईयर जया, जापानीज माउंटेनियर जुंको ताबाई मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट वुमन टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट एंड दिस माइलस्टोन स्टैंड्स एज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड इंस्पायरिंग इवेंट्स ऑन दिस डे।
1: और आज ही के दिन 1996 में भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी, जो पता नहीं कितने लोगों के प्रेरणा रहे हैं
2: जी,
1: पहली बार देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। और अब समय है उन प्रमुख व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। तो सबसे पहले हम याद कर रहे हैं,
2: वी आर बिगिनिंग विद, वेल First event, let me start with that, the birth centenary celebrations and a one-day national seminar on contributions of Acharya Sri Dinesh Chandra Joshi in the field of Sanskrit and Indian culture in New Delhi yesterday. The Ministry of Culture actually organized the birth centenary celebrations. The ministry said that several commemorative programs, academic seminars, cultural events, exhibitions and spiritual gatherings across the country have been held since the 11th of this month and it will last till 11th of April next year in honor of eminent Sanskrit scholar.
1: तो सबसे पहले हम याद कर रहे हैं असम के एक महान स्वतंत्रता सेनानी, अधिवक्ता और आदिवासी नेता भीमबर देवरी को। आज उनकी जयंती है और जिन्हें मुख्य रूप से असम को पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश बन गया है, उसमें विलय होने से बचाया था उन्होंने।

0: ने और वहां के स्वदेशी जनजातीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उन्हें विशेष रूप से याद किया जाता है। इसके साथ ही हम याद कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के शुरुआती सुनहरे दौर के एक अत्यंत सम्मानित और दिग्गज फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता रहे फणी मजुमदार को।
1: जी।
0: आज उनकी पुण्यतिथि है और उन्होंने केवल हिंदी ही नहीं बल्कि बंगाली, मैथिली, अंग्रेजी और चीनी यानी कि सिंगापुर की जो बहुत सारी विभिन्न भाषाएं हैं उनमें भी फिल्मों का निर्माण किया है और वैश्विक स्तर पर अपनी एक पहचान बनाई। फणी मजुमदार को समाज का एक यथार्थ और संगीतमय ड्रामा को पर्दे पर बहुत खूबसूरती से उतारने के लिए याद किया जाता है। 1938 में न्यू थिएटर्स के बैनर तले बनी फिल्म स्ट्रीट सिंगर उनके करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। महान गायक अभिनेता केएल सहगल और खानन देवी अभिनीत इस फिल्म का गाना बाबुल मोरा नहर छूटो ही जाए आज भी अमर है।

0: कैसे सुने गीत रखी भगवान पाप चले पापी बने पुण्यवान अजब तेरी
1: तो जो फणी मजुमदार है ना उनके फिल्मी केवल कहानियों के लिए नहीं बल्कि सदाबहार और सुरीली गीतों के लिए भी जाने जाते हैं और आरती फिल्म का ये गीत भी बहुत ही आनंदमय है।

0: और आज ही जयंती है भारत की एक बेहद सम्मानित वृत्तचित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता, फिल्म इतिहासकार, शिक्षाविद और शोधकर्ता विजया मुले की। फिल्म जगत में उन्हें प्यार से अक्का यानी कि बड़ी बहन कहा जाता है और दूरदर्शन पर जो बचपन बिताने वाली पीढ़ी है ना, उन्हें हमेशा एक चिड़िया अनेक चिड़िया जैसे कालजयी और शिक्षाप्रद एनिमेटेड गीत की रचना के लिए याद रखती है। और आज जयंती है पद्मश्री माणिक वर्मा की। वो भारत की एक अत्यंत प्रतिष्ठित और दिग्गज शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायिका थी।
1: आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सुबह के 9:50 हुए हैं, खबरें नशर होंगी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप मुदम्मार से खबरें सुनिए। भारत और मुत्तहिद अरब अमारात ने बहुत से माहदों पर दस्तखत किए हैं जिनमें भारत में पेट्रोलियम और गैस के अहम जखायर कायम करना भी शामिल है। वजीर आजम मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। वजीर आजम मोदी ने बैरून मुल्क सफर पर टैक्स आयद करने की मीडिया की रिपोर्ट को मुस्रद कर दिया है। CBSE ने 12वीं क्लास के तलबा की आंसर शीट्स को दोबारा जांचने का अमल शुरू करने का ऐलान किया है। इसराइल और लबनान ने जंगबंदी में 45 दिन की तौसी कर दी है। और बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया की जोड़ी से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत और मुत्तहिद अरब अमारात UAE ने बहुत से अहम समझौतों पर दस्तखत किए हैं जिनमें अहम पेट्रोलियम जखायर, तवील मुद्दती LPG सप्लाई और दिफा के मैदान में ताउन शामिल है। इन मुआहिदों पर दस्तखत मगरबी एशिया में जारी महाजाराई के दौरान अबूजहबी में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सदर शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान के दरमियान आला सतह की बातचीत के बाद किए गए। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भारत में 5

आप समाप्त फरमा रहे थे चतुरसेन से डॉक्टर बशीर बद्र का कलाम। आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश लता मंगेशकर और जगजीत सिंह के बाद में समाप्त फरमाइए वसीम बरेलवी की ये गजल।

मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, जिससे भी जहां पर भी सीखा है वो ही सिखाया है, और जो किया है वो मेहनत और ईमानदारी से। शायद यही मेरी कामयाबी का राज है। नमस्कार।

0: गुड मॉर्निंग सर।
1: तो आ गए आप जनाब अविनाश घोषाल। आपको मेरे आने की इत्तला थी?
0: जी हाँ।
1: उसके बावजूद आप अपने सेक्शन में नहीं थे। यही नहीं, किसी सुबार्डिनेट को यह खबर नहीं थी कि आप हैं कहाँ। वैसे भाई दिवे, आप कहाँ थे?
0: मैं कोड नंबर 5 में एक अर्जेंट मैटर में हाजिरी देने गया था।
1: जानते हुए कि आज इंस्पेक्शन है, आप उसे मुलतवी कर सकते थे।
0: कोशिश की थी लेकिन।
1: लेकिन क्या? लेकिन क्या? खैर छोड़िए, मुकदमात का रोज नामचा दिखाइए पहले।
0: ये लीजिए।
1: लेकिन ये तो अधूरा है
0: सर, अभी तो आधे से ज्यादा दिन बाकी है, शाम तक पूरा हो जाएगा।
1: या अपने और स्टाफ के फायदे के लिए ओवरटाइम कराते हैं?
0: नहीं नहीं सर, मैं ऐसा नहीं हूं, नहीं मेरे स्टाफ में कोई ऐसा है।
1: आप मुझसे बहस कर रहे हैं, आप क्या क्या गलत करते हैं उसकी पूरी फहरिस्त है मेरे पास।
0: आप जो जानते हैं गलत जानते हैं, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया है।
1: आप सामने से जवाब दे रहे हैं, अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है इसकी तमीज नहीं है तुम्हें? खैर, रिकॉर्ड्स की फाइल दिखाइए।
0: वो रिकॉर्ड रूम में है।
1: रिकॉर्ड रूम में? मैं रिकॉर्ड रूम में जाऊंगा? यहां मंगवाइए उसे।
0: रिकॉर्ड कीपर की तबीयत ठीक नहीं है, वो जरा देर से आ रहा है।
1: व्हाट नॉनसेंस, ये खबर थी ना आपके पास? फिर भी हर सवाल के लिए जवाब है आपके पास। जिंदगी में कोई मैनर्स एटिकेट्स नहीं सीखे है ना? आप कब से आए?
0: 3 साल से।
1: 3 साल से? आपने तो मेरा मूड खराब कर दिया। फिलहाल मैं जा रहा हूं, बाद में बात करता हूं।

0: अविनाश सर, आपने देखा ये इंस्पेक्टर सर आपके हर काम में नुक्ताचीनी कर रहे हैं, बार बार हर वक्त, कहीं चहनी नहीं?
1: कोई बात नहीं, कहां तक करेंगे, हमने जब ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो फिर डर कैसा?
0: वो तो ठीक है सर, मगर ये रोज रोज की ज्यादतियां कैसे बर्दाश्त करते हैं आप?
1: भगवान पर भरोसा है, जब अच्छा वक्त नहीं रहता है तो बुरा भी नहीं रहता है। बस इंस्पेक्शन हो जाए, कुछ दिनों में तबादला हो जाएगा, तब सब ठीक हो जाएगा
0: सर।

0: आओ सुबोध, तबादला हो गया है मेरा, अब जा रहा हूं यहां से।
1: अब सर, वो जज साहब से मिलके जाएंगे ना?
0: कौन से जज?
1: वो ही जो इंस्पेक्शन करने आए थे, और अब हाई कोर्ट में वो ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के प्रमोशंस और ट्रांसफर्स के इंचार्ज हैं।
0: नहीं, उनसे नहीं मिलूंगा।
1: सर, कहीं गलत ही तो नहीं कर रहे?
0: नहीं, जो कर रहा हूं सोच समझ के कर रहा हूं, और वही किया है हमेशा।
1: बट सर, वो
0: कुछ नहीं कहो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, नमस्कार।
1: ओके सर, नमस्कार।

0: को सबसे बेहतरीन महकमे का इनाम लगातार 2 साल मिला है सर। अभी यहाँ से ट्रांसफर होकर गए हैं। बहुत भले आदमी हैं, अच्छे काम के लिए जाने जाते हैं। सब जज बनने वाले हैं सर।
1: ठीक है, जो कहा है वो लिस्ट तैयार करवाइए।
0: जी सर, जी सर।
1: अविनाश घोषाल सब जज बनेंगे। भूला नहीं हूं मैं, और शायद वो भी नहीं भूला होगा।
2: अविनाश सर, अविनाश सर।
3: यस।
2: आपने सुना, आपकी जगह किसी आपसे जूनियर को सब जज बना दिया गया है।
3: जानता हूं, ऑर्डर्स भी देखे हैं।
2: सर, अब कुछ करिए ना।
3: अरे नॉट टू वरी, नॉट टू वरी। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है।

0: आमना सर।
1: सर
2: जी, मिस्टर तपन हमारे महकमे की डिटेल रिपोर्ट्स तैयार कर रही है
1: जी,
2: पिछले 5 सालों की केसेस की, कितनी अर्जियां आई, कितनी निपटाई गईं और कितनों में क्या फैसला हुआ। पहले साल भर का बनाओ, फिर महीने के महीने।
1: सर साल भर का काफी है, महीने का तो किसी ने बनवाया ही नहीं।
2: अगर आपको साल भर की औसत निकालनी है तो उसकी औसत महीने भर की भी निकालनी होगी, तभी आपको साल भर का आउटकम पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि कमी कहां पर है। जाइए तैयार करवाइए।
1: जी बेहतर है सर, अभी जाता हूं।
0: अविनाश सर,
3: सर कहीं ऐसा भी होता है कि तीन तीन लोग हर साल एक एक करके जूनियर्स आपको पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाए?
2: हाँ जानता हूँ, सर्कुलर भी देखा है मैंने।
3: ये तो सरकारी नौकरी है सर, और इस पर भी इतनी बड़ी पोस्ट, ये क्या काजियों का जमाना आ गया है?
2: लेकिन योगेश, तजर्बेकार कहेंगे कि इससे भी ज्यादा नानसाफियां होती हैं, ये तो कुछ भी नहीं।
3: खैर सर, आप कुछ तो कीजिए, बस यही कहने आया हूं मैं। अच्छा चलता हूं।
2: कभी ऐसा नहीं सोचा था कि अच्छे काम और बर्ताव के ऊपर किसी इंसान का अपना मिजाज भी होता है, उसको ज्यादा तरजीह देता है। जमाने का ये दस्तूर भी देख लिया, अब इससे निजात नहीं मिलेगी। अपनी इज्जत आबरू और ये शानदार नौकरी, दोनों में से एक को चुनना होगा। अब दो कश्तियों पर कदम रखा नहीं जा सकता, और ये फैसला मैं कर भी चुका हूं। इंसानियत और खुददारी से जीना अगर गुनाह है, तो मैं ये गुनाह एक बार नहीं, हजार बार करूंगा।

0: छोटी बहू, दफ्तर से आ गया हूं। कपड़े बदलकर हाथ मुंह धोकर नाश्ते के लिए आता हूं मैं।
1: जी अच्छा।
0: ऐसे हालात में इतना अरसा रहा हूं, हैरत है कैसे रहा। खैर जाने दो, इतने दिनों के बाद रिहाई हुई है। छोटी बहू, सरकारी खबर आने में भी वक्त है। वो आज मुझे हाई कोर्ट के एक दोस्त का तार मिला है कि मेरे जेल की मियाद खत्म होने वाली है। ज्यादा देर नहीं होगी, अब देर नहीं होगी, ऐसा मैं खुद भी जानता था।
1: अरे बाबा, आज आप जल्दी आ गए। रुको, पंखा लेके आती हूँ, बहुत गर्मी है आज।
2: सुनिए, ये जो अभी अभी आप कह रहे थे, मैं कुछ समझी नहीं, क्या मतलब है इसका?
0: तुमने शायद सुना होगा कि कोई घोष बाबू जो मुझसे पीछे है, 6 महीने के लिए सब जज हो गए।
2: जी

0: हाक साहब के कोर्ट में आने के बाद पिछले 3 सालों में यही होता आया है। मैंने इसके बारे में कभी भी एक लफ्ज नहीं कहा। सोचा था कि इस नाइंसाफी को किसी दिन वो खुद ही समझ जाएंगे। 1 साल देखा, दूसरा देखा, तीसरा भी देखा, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होगा। कम से कम उस आदमी के रहते तो कभी नहीं होगा। ऐसे हालात को इतने दिन तक बर्दाश्त करता रहा, सहता रहा, लेकिन अब नहीं। अगर और सहूंगा तो इंसानियत कहां रह जाएगी।
1: बाबा ये लो पानी।
2: आप क्या कह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रही हूं। कल जब शाम को सदराला के यहां घूमने गई थी तो कुछ इसी तरह की बातें सुनकर आई थी। वो कह रही थी कि कोई कब तक सहेगा, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। मैं तब भी नहीं समझी थी कि ऐसा क्यों कह रही है। सुनिए, तदबीर तकाजे के बगैर आज के जमाने में कौन सी बात होती है, और इंसानियत कायम रखने के लिए क्या किया है आपने, जरा सुनूं तो सही।
0: तदबीर तकाजे नहीं किए जाते, वो मैं कर भी नहीं सकता, लेकिन जो कर सकता हूं वो जरूर किया है मैंने।
2: सुनूं भी कि क्या किया है आपने, बतलाएंगे भी।
0: वो है नौकरी से इस्तीफा देना, और इस्तीफा दे भी दिया है।
2: क्या ये क्या कह रहे हैं, इतने लोगों को भूखा मारने का अहद ले लिया है क्या? काम छोड़ो तो भला, तुम्हारी कसम खाकर कहती हूं कि उसी दिन मैं खुदकुशी कर लूंगी। दरख्वास्त अगर दे ही दी है तो वादा करो कि कल के कल वापस ले लोगे।
0: नहीं।
2: क्या, क्यों नहीं? तंग आकर रौ में बहकर लोग न जाने क्या क्या कर बैठते हैं, लेकिन इसका कोई बदल नहीं है क्या?
0: रौ में बहकर तो मैंने ऐसा नहीं किया है छोटी बहू, जो कुछ किया है सोच विचार कर ही किया है।
2: इसका मतलब इस्तीफा वापस नहीं लोगे?
0: नहीं।
2: तो तुम चाहते क्या हो, कि मैं मर जाऊं?
0: तुम तो जानती हो छोटी बहू कि मैं इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम बीवी होकर अगर मर्द की मर्यादा को इस तरह से खत्म करती हो कि लोगों के सामने सर उठाकर खड़ा भी ना हो सकूं
2: तो क्या?
0: देखो ऐसा है
3: बाबा। नहीं बाबा, इस वक्त माँ में सोचने और गौर करने की ताकत नहीं है, तुम उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकते बाबा।
2: शाश्वती तू जा यहां से, चली जा, कहती हूँ चली जाए यहाँ से।
3: देखो माँ, अगर जाना ही है ना तो बाबा को साथ लेकर जाऊंगी, तुम्हारे पास छोड़कर नहीं जाऊंगी।
2: क्या कहा?
3: मैंने कहा कि तुम्हारे पास उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। चलो बाबा चलो ना, हम जरा नहर के किनारे घूम आए, शाम के बाद मैं खुद तुम्हारा खाना बना दूंगी। इस वक्त खाना रहने दो, चलो उठो, खड़े हो ना। हाँ अब चलो माँ, हम जाकर आते हैं।
2: रुक जाओ, हकीकत में क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि नौकरी छोड़ देने पर तुम्हारे घर के इतने सारे लोग क्या करेंगे, क्या खाएंगे?
0: छोटी बहू मैं।
3: ओहो माँ, अब ये खाने की तुम्हें क्या परेशानी हो गई है? लेकिन ऐसी बात पर, देखो माँ रोना तो नहीं चाहिए ना। अरे नौकरी छोड़ने पर भी बाबा को पेंशन तो मिलेगी, और वो 300 से कम क्या होगी बताओ जरा। बगल वाले मकान के संजीव बाबू 60 रुपए तनख्वाह पाते हैं, और उनके यहाँ तो

0: आने वाले भी 9-10 हैं माँ। लेकिन कितनी बार गई हूँ उनके यहाँ, देख कर आई हूँ कि खाना हमारे यहाँ से कोई बुरा नहीं होता। अब जब उनका चल रहा है तो हम 3-4 जनों का खाना पहनना क्या नहीं चलेगा? बताओ जरा।
1: शाश्वती, तू दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। जब अपना घर बसाना तब गृहस्थी बना दिखाना, मेरे घर में दखल दिया तो तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी।
0: अच्छी बात है माँ, तो ही करो। मैं बाबा का हाथ पकड़कर चली जाऊंगी। तुम और भाई बाबा की पेंशन का सारा रुपया लेकर जो चाहे करना, हम कुछ नहीं कहेंगे ना कुछ बोलेंगे। और हमारी फिक्र ना करना, मैं लड़कियों के किसी स्कूल में नौकरी करके अपने बाबा का खर्च चला लूंगी। चलो बाबा चलें, शाम हो जाएगी ना।
1: मैं कहती हूं रुक जाओ। तुम्हारी ये कैसी भीष्म प्रतिज्ञा है, इसमें क्या कोई हेर फेर नहीं हो सकता?
2: नहीं, कुछ नहीं होने का।
1: देखो मैं तुम्हारी बीवी हूं, तुम्हारे सुख दुख की हिस्सेदार हूं, मैं तुम्हारी हमनफस हूं।
2: अगर ये सच है तो इतने दिनों तक मेरे सुखों का हिस्सा लिया है, हम मेरे दुखों का हिस्सा भी लो।
1: मैं हर तरह से तैयार हूं, मगर सारी इज्जत आबरू कायम रखने के लिए तनख्वाह के रुपए काफी नहीं है, तो फिर पेंशन के थोड़े से रुपयों से गुजारा कैसे होगा? समझिए,
2: इज्जत आबरू का मतलब अगर अमीरी ठाट समझ रखा है तो वो नहीं होने का, मैं मानता हूं। नहीं तो यूं संजीव बाबू का भी तो चल जाता है।
1: लेकिन तुम्हारी ये लड़की 18 बरस की हो गई है, उसकी शादी कैसे करोगे तुम?
0: मेरी शादी? माँ, मेरी शादी के लिए तुम फिक्र ना करो। देखो, अगर कुछ सोचना ही चाहती हो ना, तो ये सोचो कि संजीव बाबू ने अपनी 2 बेटियों का ब्याह कैसे किया होगा।
1: शाश्वती, मुंह चली, मेरी नजरों के सामने से अब भी क्यों नहीं हटती तू?
0: माँ,
1: हट जा, मैं कहती हूँ हट जा मेरे सामने से।
0: जाती हूँ माँ, जाती हूँ। बाबा चलो ना, आओ।
2: थोड़ी थोड़ी देर में चलते हैं बेटा।

0: भगवान, ए मेरे भगवान, हर बार आपसे प्रार्थना करता हूं और हर बार लगता है कि मेरा काम हो जाएगा। इस बार मेरी आईसीएस के इम्तिहान की तीसरी कोशिश है भगवान, इस बार मदद जरूर करना ताकि कामयाबी मेरे कदम चूमे। ये तो अच्छा है कि कुछ अपनी इज्जत आबरू बनी हुई है कि मेरी नज़में बातायन रिसाले में छपती रहती हैं। वैसे और कोई रिसाला लेता भी कहाँ है। हौसला अफजाई के लिए बातायन के एडिटर अक्सर लिखते हैं, हिमांशु बाबू आपकी नज़में अच्छी हैं, अगली बार एक नज्म और साथ में भेजना, मगर थोड़ी छोटी हो, और साथ में हिशारवती देवी की एक नज्म जरूर भेजिएगा। वैसे आज तक ये समझ नहीं पाया कि बातायन के एडिटर सच लिखते हैं या मजाक करते हैं या उनके जहन में कोई और बात है।
1: भाई भाई एक बात कहूं, ये खत दोस्तों को ना दिखाते फिर।
0: क्यों क्यों, बता तो सही।
1: नहीं, बस यूं ही कह रही थी।

0: वो क्या है ना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना क्या अच्छा लगता है।
1: ये तो अच्छा है कि नज़में भेजने के पहले बेहतरी के लिए तुम्हें पढ़वा देता हूँ और मेरी गलतियां दूर हो जाती हैं।
0: कितनी बार ठीक किया है ना मैंने, और हर बार और बेहतर बन गई थी।
1: हाँ मानता हूँ मानता हूँ। मैंने तेरी तरह बाबा से संस्कृत व्याकरण काव्य साहित्य नहीं पढ़ा है। इसमें मेरा क्या कसूर है बता। लेकिन शाश्वती तू ये जान ले, ये कुछ भी नहीं है। 10 रुपए महीने पर एक पंडित रखने से सब कुछ बन जाता है।
0: अच्छा।
1: और जो मैं नज्में लिखता हूं ना, नज्म की सच्चाई जिंदगी में है, तसव्वुर में है, जज्बे में है, उसके इजहार में है। वहां तेरे जादुई एहसास की क्या मजाल के टांग अड़ाए।
0: हाँ समझ गई भाई, मैं समझ गई।
1: इसी बात पर एक अच्छी नज्म सूझ गई है, अभी लिखता हूं।
2: हिमांशु।
1: माँ क्या हुआ माँ?
2: तू जानता है कितना सत्यानाश हो गया है।
1: हाँ, सत्यानाश क्या हुआ माँ?
2: अब कैसे गुजारा होगा, कैसे रहेंगे हम सब?
1: अरे माँ माँ, लेकिन बताओ तो सही, हुआ क्या है?
2: कौन समझाएगा अभी ने? मैं तो समझा समझा के हार गई, मेरी किसी बात का उन पर असर नहीं पड़ता, बस सिद्ध पकड़ कर बैठ गए हैं। अब तू ही बता, ऐसा भी कोई करता है क्या?
1: अरे माँ, क्या किया है बाबा ने, मुझे बताओ तो सही।
2: तेरे बाबा ने नौकरी छोड़ दी है।
1: क्या? नौकरी छोड़ दी है? मगर क्यों माँ?
2: क्यों छोड़ दी, ये मैं क्या कहूँ, उनकी इंसानियत को ठेस पहुंच रही थी इसलिए।
1: इंसानियत को ठेस? कैसे?
2: इसलिए कि उनकी जगह कोई और आदमी सब जज बन गया है और वो नहीं बन सके इसलिए।
1: लेकिन माँ, इस पोस्ट के लिए बाबा तो सबसे सीनियर मोस्ट हैं, वो अपने काम और अच्छे मिजाज दोनों से जाने जाते हैं, मगर ये हुआ क्यों, कैसे?
2: मैं नहीं जानती, पर मैं साफ साफ कह देती हूँ हिमांशु, ये बदगुमानी के सिवा और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है।
1: अरे वो तो ठीक है माँ, मगर बाबा के ऐसा करने की कोई वजह तो रही होगी।
2: कुछ नहीं, सिर्फ हमें भूखा मारने के लिए अहद करके आए हैं तेरे बाबा। अब तू ही बता, ऐसा भी कोई करता है क्या?
1: मामा तुम नहीं कहती, तुम ठीक हो, मगर बाबा ने ऐसा क्यों किया, क्यों किया बाबा?
3: ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैंने क्या बहुत भारी गलती की है? मैं समझता था कि मेरे इस कदम को कोई समझे ना समझे, छोटी बहू जरूर समझ जाएगी, बल्कि फक्र महसूस करेगी और बच्चों को भी समझाएगी कि उनके बाबा ने ऐसा क्यों किया। मगर यहां तो सब उल्टा हो रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि छोटी बहू को इस तरह की ठेस पहुंचेगी। इंसानियत के नाते कुछ ऐसा करना गुनाह है जिसकी कोई माफी नहीं।
0: बाबा, बाबा, आप रो रहे हैं बाबा, ऐसा क्या हुआ है? मैंने आपको कभी भी ऐसी हालत में नहीं देखा। बाबा देखो, तुम कुछ भी मत सोचो, जो हुआ है ना बिल्कुल ठीक हुआ है। देखो ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम मुझे संभालना, मैं तुम्हें संभालूंगी।
3: शक्षवती, बाबा, बेटी।
0: बाबा अब जी भारी ना करो, चलो आओ नहर के किनारे चलते हैं, मन हल्का हो जाएगा आपका, आओ
3: चलो।

भला बुरा। अभी आपने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की बंगला कहानी का उर्दू रेडियाई रूप सुना। तरतीबकार थे डॉक्टर अश्वनी कुमार। हिस्सा लेने वाले फनकार थे दिनेश वर्मा, अजय मनचंदा, मनोज बिसारिया, एस एम शरीफ, शोभना भारद्वाज, सविता शर्मा और डॉक्टर अश्वनी कुमार। हिदायत और पेशकश सरफराज अहमद, मुआविन

और समझ लीजिए, अब सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश आवाज़ लता मंगेशकर की है, मौसिकार है रवि, फिल्म है आँखें।

0: कभी कभी।
1: और प्रोग्राम की अगली पेशकश महेंद्र कपूर की आवाज में कल्याण जी आनंद जी की मौसीकी से जय नगमा फिल्म है परिवार।
2: देखते ही तुझे

उससे किसी की भी परेशानी नहीं देखी जाती। यही वजह है कि गांव के सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। उनकी बीवी बानो भी मुसीबत ज़दा लोगों की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं। यही तालीम उन्होंने अपनी बेटी हिना को भी दी है, हर किसी की परेशानी दूर करना और उनकी मदद करना वो अपना फर्ज समझती हैं। इस तरह हिना न सिर्फ लोगों की सच्ची हमदर्द हैं, बल्कि उनके दुख सुख में बराबर की शरीक रहती हैं। इन सब बातों के साथ साथ वो खूबसूरत और बड़ी दिलकश भी हैं। सभी लोग उसकी सूरत और सीरत दोनों की तारीफ करते थकते नहीं। उसके मासूम और भोलेपन पर उसकी सारी सहेलियां फिदा हैं। रिहान के वालिद के बागात कई जगह हैं। वो कभी कभी उनकी देखभाल के लिए रिहान को भेज देते हैं। आज भी रिहान बागात का काम देखने के लिए गांव आता है। वहां उसकी नजर हिना पर पड़ती है, जो अपनी सहेलियों के साथ झूला झूल रही होती है। तो रिहान उसकी मासूमियत और उसकी खूबसूरती को देखकर उस पर फिदा हो जाता है। हिना की नजर जब रिहान से मिलती है तो वो भी हैरानी से उसे देखती रह जाती है और शर्मा कर वहां से चली जाती है।

इस तरह किस्मत इन्हें दोबारा से फिर मिला देती है। वो इस तरह के जब हिना की सहेलियां उसे परेशान देखती हैं, तो उसे उसकी सहेली नाजिया के घर शहर भेज देती है। नाजिया हिना की बड़ी अच्छी और हमदर्द दोस्त हैं, क्योंकि नाजिया हिना के कहने पर गांव से शहर तालीम हासिल करने आती है। जब वो हिना को देखती है तो खुशी से उसे अपने गले लगा लेती है और उसे बड़ी मोहब्बत से अपने पास रखती है। जब एक दिन नाजिया हिना को अपने साथ कॉलेज ले जाती है, जहां रिहान अपने दोस्त के साथ आता है, जहां हिना और रिहान का आमना सामना हो जाता है, दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं, दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। हिना की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो किस तरह रिहान से बात करे और अपनी मोहब्बत का कैसे इजहार करे। तब रिहान ही बात की शुरुआत करता है। वो कहता है कि जब से उसने हिना को देखा है, उसकी रातों की नींद और दिन का चैन चला गया है। वो पहली ही नजर में दिलो जान से उस पर फिदा हो जाता है। वो उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। वो हिना से पूछता है कि क्या वो भी उससे उतनी ही मोहब्बत करती है, तो हिना शर्मा कर गर्दन झुका लेती है। रिहान को अपने सवाल का जवाब मिल जाता है।

लेकिन मिलन और खुशी की घड़ियां इन दोनों को ज्यादा दिन रास नहीं आई, क्योंकि जब रिहान के वालिद को पता चलता है कि उनका लड़का गांव में रहने वाले एक गरीब कुम्हार फैजान मिर्जा की लड़की से इश्क कर बैठा है और रोजाना दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, तो वो आपे से बाहर हो जाते हैं। वो रिहान को बुलाकर उसे डांटते हैं कि उसने इश्क भी किया तो गांव के गरीब लड़की से, जो इनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। कहां उनका ऊंचा और इज्जतदार घराना और कहां वो कुम्हार और उनकी बेटी। वो कहते हैं कि उनका और हमारा मेल कभी नहीं हो सकता, उसे इन दोनों में से एक को चुनना होगा, या तो वो अपनी मोहब्बत को अपना ले या अपने वालिद को छोड़ दे। रिहान अजीब कश्मकश में पड़ जाता है। एक तरफ तो उसके वालिद हैं, जिन्होंने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला है, उसे हर तरह का ऐशो आराम दिया, कभी किसी चीज की कमी महसूस होने नहीं दी। उन्होंने उसे ऊंची से ऊंची तालीम दिलाई, उसके हर दुख सुख में उसका साथ दिया, उसे कभी वालिदा की कमी का एहसास नहीं होने दिया। एक तरफ ये सब बातें हैं और दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत, जिसे वो दिलो जान से चाहता है, उसके बगैर जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन जब रिहान सोचता है कि उसके वालिद ने उसके लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, उसकी हर बात मानी है, तो रिहान अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है और हिना की जुदाई बर्दाश्त कर लेता है। हिना से बिछड़कर उसे एक पल भी चैन नहीं मिलता, उसकी रातों की नींद उड़ जाती है, हर वक्त वो उसी की यादों में खोया रहता है। वो उसे भूलना भी चाहता है लेकिन भूल नहीं पाता, बार बार उसकी सूरत उसकी आंखों के सामने आ जाती है।

हिना को गांव वापस आए हुए कई महीने गुजर जाते हैं। उसे ना तो रिहान की कोई खबर मिलती है, ना कोई खत आता है। वो दिन रात उसी की यादों में खोई रहती है। यहां तक कि वो अपनी सहेलियों से भी मिलती जुलती नहीं है, बस अकेली तन्हा बैठी घंटों खुद से बातें करती रहती हैं। इधर रिहान को जब हिना की कोई खैर खबर नहीं मिलती, वो बेबस हो जाता है। वो उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो अपने दोस्तों से मिलना जुलना, कहीं आना जाना सब छोड़ देता है। उसे सब कुछ सुना सुना लगता है। आहिस्ता आहिस्ता वो बीमार पड़ जाता है। वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है, खाना पीना भी छोड़ देता है। जब ताहिर हुसैन को इस बात का पता चलता है तो उनको बड़ा सदमा पहुंचता है। वो सोचने लगते हैं कि जब इनके बेटे ने उनकी मोहब्बत की खातिर ये सब किया, तो क्या वो अपने बेटे के लिए उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। वो खुद को कसूरवार समझने लगे। उन्होंने ही जिद में आकर अपने बेटे को इस बात के लिए मजबूर किया, ये वो सोचते हैं। और ये सोचकर वो अपने बेटे के पास आते हैं और उसे मोहब्बत से गले लगाते हैं और कहते हैं कि उन्हें हिना से शादी करने पर कोई एतराज नहीं और अपने घर की बहू बनाने के लिए वो उसे तैयार है। रिहान जल्द ही ये खुशखबरी हिना तक पहुंचा देता है। जब हिना ये सुनती है कि रिहान के वालिद उसका रिश्ता मांगने उसके घर आने वाले हैं, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो अपने वालिदैन को

सब कुछ बता देती हैं। उसके वालिदैन ये सुनकर कि उनकी बेटी का रिश्ता इतने बड़े घराने से आने वाला है, खुशी से फूले नहीं समाते। उन्हें अपनी बेटी की किस्मत पर नाज होता है और वो खुशी से उसे गले लगाते हैं। इस तरह रिहान अपने वालिद को लेकर हिना के घर आता है। खुशी खुशी दोनों के रिश्तों की बात पक्की हो जाती है। इस तरह रिहान और हिना की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है।

और शामिली जब सुनिए आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज़ों में। रानी मलिक का लिखा है गीत जिसे मौसीकी सजाए नदीम शरवण ने, फिल्म है जान तेरे नाम।

0: फिल्मी दुकानों का प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा सामने इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। प्रोग्राम अभी जारी है, आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं प्रोग्राम तारीख साज। आज का मौजू है कश्मीरी दरवाज़ा। तहरीर डॉक्टर तनवीर अहमद अलवी की है।
1: शहरिस्तान दिल्ली अपने कलों, शहर पनाहों और दरवाज़ों के लिए मशहूर है जिनकी अपनी अपनी तारीख है, बल्कि ये कहिए कि ये उस बड़ी तारीख के फटे पुराने औराक और सफात हैं जिसको हम दिल्ली की दास्तान उरूज व जवाल कह सकते हैं। इस शहरिस्तान में आप जिधर भी गुजरेंगे और जो महल्ले, मकान, मस्जिदें, मकबरे, गली कूचे, कारखाने और बाजार आपके सामने आएंगे, उनकी अपनी अपनी तारीख है जो निगाह उठाते ही आपकी नजरों में फिरने लगेगी। कश्मीरी दरवाजा, जिसके करीब आज बैनुल रियासती बस अड्डा है, एक समत सेंट जेम्स का अजीमुशान चर्च है। यहीं कभी कदीम हिंदू कॉलेज भी था, यहीं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी है और कश्मीरी गेट की अपनी तारीख की तौसी है। कदीम दिल्ली कॉलेज का एक बड़ा हिस्सा सन 1857 से पहले यहीं

0: and ensuring global food security and nutrition, supply chain resilience, disaster reduction, and of course, people-to-people exchanges, which is also a very key priority for our chairship. As you are all aware, the world today is navigating a period of unprecedented geopolitical and economic uncertainty, ongoing conflicts, economic volatility, climate-related risks, advancement in technology and associated disruption, supply chain challenges and disruptions are reshaping the global landscape. All these matters are also interlinked and have consequences for BRICS members, and I would say also for countries in the Global South. There is a common view that BRICS must work purposefully in seeking common grounds for achieving practical, actionable, inclusive and development-oriented solutions through sustained engagement.
1: ये भी मांग रही है कि यूएन के प्रक्रिया में सुधार आना चाहिए. यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो मेंबरशिप है, परमानेंट मेंबरशिप है, उनके पास वीटो पावर है, तो इसको लेके ऐसी क्या चर्चा हुई है इस बैठक में?
2: देखिए, इस बैठक में ये चर्चा हुई है कि इसको ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए संयुक्त राष्ट्र संघ को और ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस को, और उसके लिए जरूरी है कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन किया जाए. दुर्भाग्य से पिछले शताब्दी से ही ये बात होती रही है, लेकिन देशों के अपने राष्ट्रीय हित एक दूसरे से इस तरह टकराते रहे हैं कि देश इस मामले में कहीं भी कॉन्सेंसस या सर्वसम्मति नहीं स्थापित कर पाए. वीटो सिस्टम जो है वो एक बीमारी है, मैं कहूँगा. आपने आज की दुनिया में जहां लोकतंत्र को बढ़ावा देने की जरूरत है, वहां पर आपने एक तरह से डिक्टेटरशिप को बढ़ावा दिया है. अब होता क्या है कि जिस देश के खिलाफ कोई प्रस्ताव होता है, अब वो देश तो वीटो करेगा ही, इसलिए वहां पर वो प्रस्ताव टूट जाता. तो ऐसे में तो कहीं भी आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं मिलेगा. इसलिए ये वीटो पावर को खत्म करना या इसको और डाइल्यूट करना, प्रतिनिधित्व पूरक करना, प्रतिनिधित्व परक करना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को, ये बहुत आवश्यक हो जाता है. इसीलिए यहाँ पर यही कहा गया कि रिप्रेजेंटेटिव की सुरक्षा परिषद में बहुत प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए, उनको भी पावर दी जाए, या मतलब जो वीटो पावर जो 5 कंट्रीज हैं और जो बाकी हैं उनके बीच में शक्ति का असंतुलन वहां सुरक्षा परिषद में कम किया जाए, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है. और देखिए, लेकिन इसमें कहां तक प्रगति हो पाती है कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत दिनों से ये बात कई वर्षों से चल रही
1: है. जियोपॉलिटिक्स का कोई समाधान है ब्रिक्स के पास?
2: देखिए, मेरे ख्याल से तो जियोपॉलिटिक्स का समाधान न संयुक्त राष्ट्र संघ के पास है और न ब्रिक्स के पास है. इसलिए कि जब तक जियोपॉलिटिक्स में देश अपने राष्ट्रीय हितों के कुछ अंशों को छोड़ना न चाहेंगे या छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, और तब तक यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स में इसी तरह से लड़ाइयाँ होती रहेंगी कि एक दूसरे के साथ नेशनल इंटरेस्ट, एक का नेशनल इंटरेस्ट दूसरे के नेशनल इंटरेस्ट में दरारें डालता है, तो ऐसे में तो ये खाई पटने के बजाय बढ़ती जाएगी. इसलिए समाधान यही है कि अगर देश बैठ के ये सोचें कि हमें ठीक है अपने विकास के लिए दूसरे के विकास को अवरुद्ध नहीं करना होगा, तभी इसमें कुछ काम निकल सकता है.
1: अभी समस्या जो है वो है कि तेल का आना जाना मुश्किल हो गया है. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ब्रिक्स क्या कर सकता है इसमें?
2: देखिए, यहाँ पे मेरे ख्याल से ईरान को ब्रिक्स ये कह सकता है कि हॉर्मूज स्ट्रेट खोली जाए, क्योंकि विश्व में जो भी मैन मेड, जो भी मानव निर्मित स्ट्रेट हैं, जल डमरू मध्य है, वो उस पर तो उन देशों का कब्जा हो सकता है या कंट्रोल हो सकता है जो उसके आसपास हो, जैसे स्वेज इजिप्ट का या जैसे पनामा का था चीन.
1: ये सारे मैनमेड
2: है, मैनमेड है, लेकिन जो नेचुरल है वो बाबल अंदब है या हुरमुज है, मलाका है, पाक स्ट्रेट है, ये जो है ये मैन मेड नहीं है, नेचुरल है, और इन प्राकृतिक जल मार्गों पर किसी भी देश का अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से एक क्षत्र राज्य या प्रभुत्व नहीं हो सकता. तो इस दिशा में ईरान को ये कहा जाएगा, क्योंकि अगर हम ईरान की ये बात मान लेते हैं तो ये एक नई समस्या का जन्म देगा कि जो और बाकी स्टेट्स मैंने कहा है नेचुरल, उसमें वहां के देश उन पे कब्जा करें और उन पे अपना अधिकार जमाने की बात करेंगे, और ये एक तरह से ऐसा हो जाएगा कि हर कुछ किलोमीटर पे आप टोल टैक्स देना पड़ेगा कंसर्न देश को, तो ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा. इसलिए कोशिश यही करनी होगी ब्रिक्स को कि ये कहें कि ईरान वहां से अपना एकाधिकार न बताए, थोड़ा कंट्रोल रखे, ठीक है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और साथ ही यूएस को ये कहना पड़ेगा कि वहां पे नाकाबंदी न की जाए क्योंकि वो मैनमेड नहीं है.
1: जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज आए आकाशवाणी में, और आपने बड़े चर्चा की ब्रिक्स विदेश

0: मंत्रियों की बैठक का दूसरा दिन महत्वपूर्ण चर्चाएं और प्रमुख निष्कर्ष। शुक्रिया,
1: धन्यवाद।
0: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सामने भी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मैं आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। दिन का एक बजा है, बालमी खबरें नशर होंगी।
1: अब आप असगर अली से आलमी खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मुत्तहदा अरब अमारात ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर की मालियत की सरमायाकारी करने का वादा किया है। दोनों मुल्कों ने बहुत से मुआहदों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें भारत में पेट्रोलियम और गैस के अहम ज़खायर कायम करना भी शामिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हेग में नीदरलैंड्स के अपने हम मनसब के साथ दोतरफा बातचीत करेंगे। सेमी कंडक्टर्स और AI समेत अहम शोबों में कई समझौतों पर दस्तखत किए जाने का इम्कान है। इसराइल और लेबनान ने जंगबंदी में 45 दिन की तौसी कर दी है। और बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल्स में सत्विक साईराज रनकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया की जोड़ी से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत और मुत्तहदा अरब अमारात UAE ने बहुत से अहम समझौतों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें अहम पेट्रोलियम ज़खायर, तवील मुद्दती LPG सप्लाई और दिफा के मैदान में तआवुन शामिल है। इन माहदों पर दस्तखत मगरबी एशिया में जारी महाजाराई के दौरान अबू जहबी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दरमियान आला सतह की बातचीत के बाद किए गए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर्स की मालियत की सरमायाकारी का आज़म किया है। वज़ीर आज़म मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में कल UAE पहुँचे थे। माहदों में अहम शराकत दारी का माहदा भी शामिल है, जिस पर इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू जहबी की तेल कंपनियों के दरमियान दस्तखत किए गए, जिसका मकसद भारत की तवानाई की फराहमी को मुस्तहकम बनाना है। इस अमल में पेट्रोलियम के ज़खायर और रकीक कुदरती गैस, नीज रकीक बनाई गई पेट्रोलियम गैस LPG को ज़खीरा करने की सहूलतें शामिल हैं। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि इस माहदे से भारत के अहम पेट्रोलियम ज़खायर में UAE की शराकत में इजाफे से 3 करोड़ बैरल्स का इजाफा होगा और इससे भारत में गैस के अहम ज़खायर कायम होंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत कल देर रात नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। वो अपने दौरे में नीदरलैंड्स के वज़ीर आज़म रॉब जेटन से दोतरफा बातचीत करेंगे और उस मुल्क के बादशाह व मलका से भी मुलाकात करेंगे। ये दौरा दोतरफा ताल्लुकात से भी ज़्यादा अहमियत का हामिल है और उम्मीद है कि हाल ही में किए गए भारत यूरोप आज़ाद तजारती माहदे के बाद भारत EU ताल्लुकात वसीतर हो जाएंगे। हफ्ते के रोज़ वज़ीर आज़म मोदी भारतीय बिरादरी से ख़िताब करेंगे और नीदरलैंड्स की सरकर्दा कंपनियों के CEOs से मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि ख़ास तौर पर सेमीकंडक्टर, चिप्स और AI के मैदानों में बहुत से अहम माहदे किए जाएंगे। तिजारत के नुक्ते नज़र से नीदरलैंड्स भारत का एक अहम इक्तसादी शराकत दार है। ये भारतीय बरामदात और भारत में सरमायाकारी का सबसे बड़ा मुल्क है। दोनों मुल्कों के दरमियान बड़े पैमाने पर शराकत दारी कायम है और ये दोनों ही मुल्क पानी के बंदोबस्त, काबिल तजदीद तवानाई, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन, मईशत, ज़रई टेक्नोलॉजीज़ और सेहत के मैदानों में भी एक दूसरे को तआवुन देते हैं। नीदरलैंड के दौरे के बाद वज़ीर आज़म मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में कल स्वीडन के शहर गोथेनबर्ग जाएंगे। शमाल मशरकी जमहूरी अवामी कांगो में इबोला मर्ज के फैल जाने से 65 अफराद की जानें तल्फ हो गईं और सैकड़ों दूसरे अफराद इस बीमारी से मुतासिर बताए जाते हैं। वहाँ इस बीमारी के फैलने और सरहद पार तक पहुँच जाने के अंदेशे की बिना पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। इमराज के कंट्रोल और रोकथाम से मुतालिक अफ्रीका के मरकज़ ने बताया है कि लगभग 246 अफराद के इबोला बीमारी में मुबतला होने का अंदेशा है और सेहत और इलाकाई सेहत हुकाम ने आज तालमेल اور فوری کارروائی کے لیے ایک میٹنگ

तलब की है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इसराइल और लबनान ने वाशिंगटन में होने वाले एक और दौर के मुज़ाकरात के बाद अपनी जंगबंदी में 45 दिन की तौसी पर इत्तफाक किया है। अमेरिका के महकमा खारजा के तर्जुमान टॉमी पीगॉट ने कहा कि 16 अप्रैल को होने वाली जंगबंदी को मज़ीद 45 दिन के लिए बढ़ा दिया जाएगा ताकि मज़ीद पेशरफ्त मुमकिन हो सके। यह फैसला अमेरिका की मेज़बानी में इसराइल और लबनान के दरमियान दो रोज़ तक जारी रहने वाली इंतहाई मुफीद और नतीजा खेज मुज़ाकरात के अख्तिताम के बाद किया गया जो कल मुकम्मल हुए। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब पीगॉट ने कहा कि अमरीकी महकमा खारजा 2 और 3 जून को सियासी मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू करेगा। इसके अलावा इस महीने की 29 तारीख को पेंटागन में सिक्योरिटी से मुतालिक बातचीत का मरहला भी शुरू किया जाएगा जिसमें दोनों ममालिक के फौजी वफूद शिरकत करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमरीका को उम्मीद है कि ये मुज़ाकरात दोनों ममालिक के दरमियान देरपा अमन, एक दूसरे के इक़्तदार आला और इलाकाई सालमियत के मुकम्मल एहतराम और मुश्तरका सरहद पर हकीकी सलामती के क़याम में मददगार साबित होंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और चीन ने उनके दौरे के मौके पर अहम तजारती समझौते किए हैं। उन्होंने दौरे के नतायज को अहमियत का हामिल करार दिया। वो चीन से वापस आते हुए फ़िज़ाइया के तैयारे में नामनिगारों से गुफ्तगू कर रहे थे। जनाब ट्रंप ने बताया कि सदर शी जिनपिंग के साथ बातचीत के बाद चीन ने 200 बोइंग तैयारे ख़रीदने से इत्तफाक किया है और बाद में मज़ीद तैयारों की ख़रीदारी का ऑर्डर मिलने का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आप नया हुरमुज़ को खोला जाएगा और अमरीका ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देगा। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए जनाब ट्रंप ने मगरबी एशिया के बहरान के दौरान अमरीकी इकदामात का दिफा करते हुए कहा कि वो वही करते हैं जो दुरुस्त होता है। सदर ट्रंप ने अमरीका के साथ जारी मुज़ाकरात के सिलसिले में भी ईरान पर नुक्ताचीनी की और इल्ज़ाम लगाया कि तेहरान के साथ तय पाने वाले समझौतों का बाकायदा एहतराम नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि ईरान जब भी कोई समझौता करता है तो बाद में ऐसा रवैया अख्तियार करता है जैसे पहले कभी कोई बातचीत ही न हुई हो। उन्होंने ये बात फिर कही कि ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। अमेरिका आज मुसल्ला अफवाज का दिन मना रहा है। ये दिन मई के तीसरे हफ्ते को मनाया जाता है और इसका मकसद अमेरिकी मुसल्ला अफवाज की सभी शाखों के बरसरे मुलाजमत फौजी जवानों और आजमदकार फौजियों का एहतराम करना है। वहाँ 1949 से ये सिलसिला चला आ रहा है और उस वक्त के अमेरिका के सदर हैरी एस ट्रूमैन ने ये शुरू किया था। बैडमिंटन में बैंकॉक में जारी थाईलैंड ओपन में मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल मुकाबले में आज सत्विक साईराज रनकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के नूर इज़ुद्दीन और गो ज़ेफी की जोड़ी से होगा। इस दौरान पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन समेत दीगर भारतीय खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। सिंधु ख्वातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की आलमी नंबर 3 खिलाड़ी अकाने यामागुची से 21-19, 18-21, 15 से हार गईं, जबकि मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में लक्ष्य सेन को थाईलैंड के कुनलावुत विदित सारन से 19-21, 16-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम ईडन गार्डन में मेज़बान कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मेज़बान लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर।
متحدہ عرب امارات

0: भारत ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर की मालियत की सरमायाकारी करने का वादा किया है। दोनों मुल्कों ने बहुत से माहदों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें भारत में पेट्रोलियम और गैस के अहम जखायर कायम करना भी शामिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी हेग में नीदरलैंड्स के अपने हमनसब के साथ दोतरफा बातचीत करेंगे। सेमी कंडक्टर्स और AI समेत अहम शोबों में कई समझौतों पर दस्तखत किए जाने का इम्कान है। इसराइल और लिबनान ने जंगबंदी में 45 दिन की तोसी कर दी है। और बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल्स में सत्विक साईराज, रणकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। एक नज़र इस वक्त तक की अहम खबरों की सुर्खियों पर। मुत्तहिदा अरब इमारात ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर की मालियत की सरमायाकारी करने का वादा किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हेग में नीदरलैंड्स के अपने हमनसब के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। सेमी कंडक्टर्स AI समेत अहम शोबों में कई समझौतों पर दस्तखत किए जाने का इम्कान है। इसराइल और लिबनान ने जंगबंदी में 45 दिन की तौसी कर दी है और बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी का मुकाबला

0: मुकाबला मलेशिया की जोड़ी से होगा। ये थी इस वक्त तक की अहम खबरों की सुर्खियां। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन, दिन के 1:15 हुआ चाहते हैं, यहां हमारी आज की पहली मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। अब से कुछ ही देर बाद यानी 3 बजे अपनी दूसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
1: तो आज हम बात कर रहे हैं फिल्म बेटा बेटी की। बेटा बेटी उस दौर की फिल्मों में शामिल थी जिनमें परिवार और रिश्तों की अहमियत को बहुत खूबसूरती से देखा जाता था। फिल्म में सुनील दत्त ने एक ऐसे युवा का किरदार निभाया जो अपने परिवार और भावनाओं के बीच संतुलन बनाने की पूरी कोशिश करता है। उनका अभिनय हमेशा की तरह बेहद सहज और प्रभावशाली रहा। वहीं जमुना, उन्होंने अपनी मासूम अदाओं और भावुक अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म में जयंत और शुभा खोटे जैसे कलाकारों ने भी अपने शानदार अभिनय से कहानी को और रोचक बना दिया। तो ये फिल्म की हम बात करते रहेंगे, क्यों ना हम सुन लें एक और मधुर गीत।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी जी की आवाज में आदमी वो है गीत फिल्म बेटा बेटी से, और इस फिल्म का संगीत दिया था बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी शंकर जयकिशन ने। श्रोताओं, पुराने दौर के गीतों में एक अलग ही मिठास होती थी, धीमी धीमी धुनें, आसान शब्द और दिल को छू लेने वाली गायकी। बेटा बेटी का संगीत भी उसी दौर की खूबसूरत पहचान है। उस समय गीत केवल फिल्म का हिस्सा नहीं होते थे बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने का जरिया भी बनते थे। रेडियो पर जब ये गीत आज भी बजते हैं तो लोग अपने सारे काम छोड़कर इन्हें सुन लिया करते हैं। तो आइए इसी बात पर क्यों ना सुन लिया जाए एक और प्यारा सा गीत।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुनिधि। फिल्म की कहानी एक दुर्भाग्यशाली पिता यानी कि जिनका नाम रघु होता है, इनके इर्द गिर्द घूमती है, जो एक दुर्घटना में अपनी आंखें खो बैठते हैं। गरीबी और लाचारी में वह अपने 3 छोटे छोटे बच्चों को अनाथालय में छोड़ने का फैसला करते हैं। इसके बाद बच्चे बिछड़ जाते हैं और अलग अलग परिस्थितियों में बड़े होते हैं, लेकिन सालों बाद उनको नियति फिर से आपस में मिला देती है। तो है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। तो इसके बारे में बात करते रहेंगे, फिल्म बेटा बेटी के बारे में बात हम करते रहेंगे आपसे। आप हमसे जुड़े रहिए और आनंद लेते रहिए इस फिल्म के मधुर संगीतों का।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से और हम बात कर रहे हैं आज फिल्म 1964 में रिलीज़ हुई बेटा बेटी की। तो अगर हम इस फिल्म की सफलता की बात करें तो ये सिल्वर जुबली रही थी फिल्म। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल रही थी। इसने सिनेमाघरों में 25 हफ्ते पूरे करके सिल्वर जुबली का खिताब पाया ही था और इसकी लोकप्रियता इतनी थी कि इसे 1970 के दशक में पुणे जैसे शहरों में मैटिनी शो के रूप में दोबारा रिलीज़ किया गया, जहां इसने फिर से शानदार प्रदर्शन किया। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म अपने आप में कितनी ज़्यादा सफल रही और इसके कलाकारों का इसमें कितना योगदान रहा। तो इसी बात पर हम सुन लेते हैं इस फिल्म से एक और गीत।

दोस्तों, इस फिल्म का निर्माण उस दौर में हुआ था जब पारिवारिक और सामाजिक फिल्मों का स्वर्णिम समय माना जाता था। फिल्म ने संयुक्त परिवार, भाई बहन के रिश्तों और पारिवारिक मूल्यों को बहुत संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत किया था। फिल्म के निर्देशक एलवी प्रसाद भारतीय सिनेमा के उन चुनिंदा फिल्मकारों में गिने जाते हैं जिन्होंने हिंदी, तमिल और तेलुगु तीनों भाषाओं में यादगार फिल्में बनाई। बेटा बेटी उन्हीं पारिवारिक फिल्मों की शैली का एक बेहतरीन उदाहरण मानी जाती है। फिल्म में महमूद की कॉमेडी की अगर हम बात करें तो दर्शकों को इनकी कॉमेडी इतनी पसंद आई थी कि कई सिनेमाघरों में उनके दृश्यों पर खूब तालियां बजती थीं। उस समय महमूद किसी भी फिल्म की लोकप्रियता का बड़ा कारण माने जाते थे। अगर हम फिल्म की संगीत की बात करें तो शंकर जयकिशन का संगीत फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में से एक था। फिल्म के गीतों में शास्त्रीय संगीत और लोक धुनों की झलक भी सुनाई देती है, जिसका आनंद आप अभी इस कार्यक्रम में उठा रहे हैं। राधिके तूने बंसुरी चुराई गीत में कृष्ण राधा की छवि और पारंपरिक भारतीय संगीत का सुंदर मेल देखने को मिलता है, जिसने इसे लंबे समय तक लोकप्रिय बनाए रखा और ये गीत आज भी कई लोगों की जुबान पर है।

और अक्सर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इस गीत को शामिल भी किया जाता है। तो दोस्तों, हम बात करते रहेंगे इस फिल्म की, तब तक सुन लेते हैं इस फिल्म का एक और गीत जो कि मोहम्मद रफ़ी की ही आवाज़ में है।

तो श्रोताओं, ये था फिल्म बेटा बेटी के गीतों और यादों से सजा हमारा ये कार्यक्रम एक ही फिल्म से यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पुराने दौर की संगीतमय यात्रा ने आपके दिल को जरूर छुआ होगा। मैं हूँ आपकी दोस्त सुनिधि और इसी के साथ हमें अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। IPL ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਚ ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਵਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਨੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਸ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆਖਰ ਚ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਬ ਜੈਟਨ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਸੰਬੋਧਨ। ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਉਪਿੰਦਰ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਂਗੂ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ JP ਨੱਡਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ IPL ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਚ ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਵਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਤੇ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं माजिद अली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के अपने हमनसब रॉब जेटन के साथ बाहमी बातचीत करेंगे और शाह विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स और AI और बाहमी तिजारत के शोबों समेत कई अहम समझौतों पर दस्तखत किए जाने की तवक्को है। मगरबी बंगाल की सरकार ने 2011 के बाद से जारी किए गए जात के सर्टिफिकेट की फिर से जांच के अहकाम जारी किए हैं। CBSE ने 12वीं क्लास के तलबा के लिए सवालों के जवाब के पर्चों की 2 सतह पर मुश्तमिल फिर से जाँच का ऐलान किया है। फौज के सरबराह जनरल द्विवेदी ने पाकिस्तान को खबरदार किया है कि वो भारत के खिलाफ दहशतगर्दों को पनाह देना और सरगर्मियां खत्म कर दे। और बैडमिंटन में सात्विक और चिराग की भारत की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद नीदरलैंड्स के वजीर आजम रोबन जेटेन के साथ बाहमी बातचीत करेंगे और इज्जत मआब शाह विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से मिलने जाएंगे। यह दौरा बाहमी रिश्तों से आगे बहुत अहमियत का हामिल है और तवक्को है कि इसके जरिए हाल ही में मुकम्मल हुए भारत यूरोप आज़ादी तजारती समझौते के तनाजुर में वसी भारत यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात वजूद में आएंगे। इससे कबल वजीर आजम के नीदरलैंड्स पहुंचने पर नीदरलैंड्स के वजीर खारजा ने उनका इस्तकबाल किया। भारतीय बरादरी और नीदरलैंड्स के ग्रुपों ने सकाफती प्रोग्राम और मौसीकी पेश करके उनका खैर मकदम किया। मुख्तलिफ उम्र के ग्रुपों खित्तों और मजाहिब पर मुश्तमिल भारतीय बरादरी के मेम्बरान ने रिवायती रक्स और मौसीकी पेश की। वजीर आजम मोदी के पहुंचने पर मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से फजा गूंज उठी। वजीर आजम ने नीदरलैंड्स में भारतीय बरादरी के जरिए उनके खैर मकदम की कुछ झलकियां साझा की हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि उनका इस्तकबाल शानदार तरीके से किया गया और जिसमें कथक, उड़ीसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम और गरबा रक्स भी शामिल था। वजीर आजम भारतीय बरादरी से खिताब करेंगे और नीदरलैंड्स के तजारती लीडरों से बातचीत करेंगे। ये तकरीब वजीर आजम के नीदरलैंड्स के दौरे का एक अहम हिस्सा होगी। इस तकरीब में भारत और नीदरलैंड्स के रिश्तों, भारतीय बरादरी के रोल और भारत की पूरी दुनिया में पहुंच पर खास तवज्जो दी जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारतीय बरादरी और नीदरलैंड्स की सरकर्दा कंपनियों के CEO से खिताब करेंगे। सेमीकंडक्टर, चिप्स और AI जैसे शोबों में कई अहम समझौतों पर दस्तखत किए जाने का इम्कान है, जिसमें नीदरलैंड्स को आलमी रहनुमा की हैसियत हासिल है। तिजारती नुक्ते नज़र से नीदरलैंड्स भारत का एक अहम शराकत दार और बरामदाती व सरमायाकारी के बड़े मरकजों में से एक है। दोनों मुल्कों के दरमियान पानी के बंदोबस्त, काबिल तजदीद तवानाई, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन मईशत, ज़रई टेक्नोलॉजीज और सेहत के शोबों में मजबूत शराकत दारी रही है। सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जनाब अली फाले काजिम अल जैदी को इराक के वजीर आजम का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद।

0: बात पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ तवील अरसे से चले आ रहे अपने दोस्ताना ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है और उसने तमाम शोबों में बाहमी रिश्तों को मजीद मुस्तहकम और मजबूत करने का तहैया कर रखा है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि वो दोनों मुल्कों की खुशहाली और तरक्की के लिए मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। भारत के इदारों ने पहली बार 182 करोड़ रुपये मालियत की कैप्टागन मनुष्यात को कब्जे में लिया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने ये जानकारी दी और ये भी कहा कि सरकार ने भारत को मनुष्यात से पाक मुल्क बनाने का तहैया कर रखा है। जनाब अमित शाह ने कहा कि मगरबी एशिया जाने वाली मनुष्यात को कब्जे में लेने और इस सिलसिले में गैर मुल्की शख्स की गिरफ्तारी इस बात की दरख्शां मिसाल है कि हम मुल्क में मनुष्यात को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार मुल्क में एक ग्राम भी नशा आवर अशिया ना तो आने देगी और ना अपने इलाके से गुजरने देगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और मुल्क के कई दीगर हिस्सों में पिछले कुछ दिनों के दौरान तेज बारिश और आंधी में हुए जानी नुकसान पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट पर जनाब सिंह ने मुतासरा कुनबों को ताजियत पेश की। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत खराब मौसम से मुतासरा रियासतों को हर मुमकिन मदद दे रही है। मगरबी बंगाल की सरकार ने 2011 से जारी किए गए जात पात से मुतालिक तमाम सर्टिफिकेट की फिर से तस्दीक का हुक्म दिया है। हुकाम का कहना है कि गुज़िश्ता 14 बरस के दौरान जारी किए गए इन दस्तावेजात के जवाब और असलियत के बारे में सवालात उठाए जाते रहे हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इस अरसे के दौरान दर्ज फहरिस्तों कबीलों और दीगर पसमानदा तबकों को जातों के बारे में लगभग 1,69,00,000 सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। इनमें से बहुत से सर्टिफिकेट द्वारे सरकार कैंप की तवसुत से तकसीम किए गए। सब डिविजनल अफसर और जिला सतह के एहलकार हर सर्टिफिकेट की जांच करेंगे। अगर ये साबित हुआ कि कोई भी सर्टिफिकेट गलत जानकारी या बेकायदगी से जारी किया गया है तो कानून के मुताबिक उसे मनसूख कर दिया जाएगा। हाल ही में वोटर फहरिस्तों की खसूसी नज़रसानी के दौरान जिन अफराद के नाम हजफ कर दिए गए हैं उन पर भी इस हिदायत का इतलाक होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने 12वीं जमात के तलबा के इम्तहानात के नतज के ऐलान के बाद एक नोटिस जारी किया है जिसमें इम्तहानात के अमल में मुनसिफाना तौर तरीकों और शफाफियत की तस्दीक होती है। नोटिस में कहा गया है कि जो तलबा अपने नतज से मुतमिन नहीं हैं वो दो मरहलों वाले नजरसानी निज़ाम से फ़ायदा उठा सकते हैं। पहले मरहले में तलबा ऑनलाइन अपने स्कैंड शुदा नकूल के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं जिन्हें जायजे के लिए डाउनलोड किया जा सकता है। दूसरे मरहले में तलबा किसी भी फ़र्क या गलती की तस्दीक करा सकते हैं या मार्किंग स्कीम की बुनियाद पर मखसूस जवाब की दोबारा जाँच के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा ज़िले में आज सुबह एक तेज़ रफ्तार लारी मजदूरों के एक ग्रुप में जा घुसी जिसके सबब 6 खवातीन मजदूरों की मौत हो गई। काकीनाडा रूरल मंडल के कवूरू पुल के करीब यह हादसा उस वक्त पेश आया जब काम की जगह जाने के लिए मजदूर सड़क पार कर रहे थे। 4 खवातीन की जाए हादसे पर ही मौत हो गई जबकि 2 दीगर ने काकीनाडा के अस्पतालों में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। भारतीय फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज कहा है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दों को पनाह देना और भारत के खिलाफ कार्रवाइयां बंद करनी होंगी। नई दिल्ली में सेना संवाद में खिताब करते हुए जनाब द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस तरह की सरगर्मियां जारी रखता है तो उसे ये फैसला करना होगा कि क्या पाकिस्तान दुनिया के नक्शे का हिस्सा बनना चाहता है या नहीं। वजारत दाखिला ने त्रिपुरा में नज़म व ज़ब्त के फ्रेमवर्क को मजबूत करने की गरज से एक अहम कदम उठाते हुए एक इजाफी भारतीय रिजर्व बटालियन को सरकारी तौर पर मंजूरी दी है। मरकज ने इसके क़याम के लिए 50 करोड़ और बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए 30 करोड़ रुपये तक की माली इमदाद को मंजूरी दी है। भारत की सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुँच गई है। उन्होंने आज बैंकॉक में सेमीफाइनल में मलेशिया के गो से फेई और नूरजीन को हराया। भारत की जोड़ी ने 82 मिनट में मलेशिया की जोड़ी को 19-21, 22-20 और 21-16 से हराया। 2019 और 2024 में कामयाबी के बाद भारत की इस जोड़ी का यह इस सीज़न का पहला फाइनल और टूर्नामेंट का तीसरा फाइनल है। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड्स के अपने हमनसब रॉब जेटन के साथ बाहमी बातचीत करेंगे और शाह विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई और बाहमी तिजारत के शोबों समेत कई अहम समझौतों पर दस्तखत किए जाने की तवक्को है। मगरबी बंगाल की सरकार ने 2011 के बाद से जारी किए गए जात पात के सर्टिफिकेट की फिर से जांच के अहकाम जारी किए हैं। CBSE ने 12वीं क्लास के तलबा के लिए सवालों के जवाब के पर्चों की दो सतह पर मुश्तमिल फिर से जांच का ऐलान किया है। फौज के सरबराह जनरल द्विवेदी ने पाकिस्तान को खबरदार किया है कि वो भारत के खिलाफ दहशतगर्दों को पनाह देना और सरगर्मियां खत्म कर दे। और बैडमिंटन में सात्विक और चिराग की भारत की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी। आई एम साइरा मुज्तबा विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral talks with his Dutch counterpart Rob Jetten and call on King William Alexander and Queen Maxima today. Several important agreements expected to be signed, including in the fields of semiconductor chips, AI and bilateral trade. Army Chief General Upen Dwivedi warns Pakistan against harboring terrorists and operating against India. West Bengal government orders re-verification of caste certificates issued since 2011. CBSE announces a two-stage re-evaluation process of answer sheets for Class 12 students. And in badminton, Indian duo of Sattvik Sairaj and Chirag Shetty enter finals of Thailand Open after a thrilling victory over Malaysian pair in the semi-finals. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Jetten and will call on Their Majesties King William Alexander and Queen Maxima this afternoon. The visit carries significance beyond bilateral ties and is expected to shape broader India-EU relations following the recently concluded India-Europe Free Trade Agreement. Earlier, when the Prime Minister arrived in the Netherlands late last night, he was received by the Dutch Foreign Minister. He was accorded a grand welcome through cultural and musical performances by the diaspora and Dutch troops. Members of the Indian community representing different age groups, regions and faiths gathered to welcome him with traditional dance and musical performances. The venue echoed with chants of Modi Modi and Vande Mataram as he arrived.
2: Modi, Modi, Modi, Modi, Modi.
1: In a social media post, Mr. Modi said the welcome was remarkable as it included a dance performance covering Kathak, Odissi, Bharatanatyam, Kuchipudi and Mohiniyattam and also included a Garba performance. The Prime Minister is addressing the Indian community and will interact with leading business leaders from the Netherlands. The community event is expected to focus on India-Netherlands ties, the role of the diaspora and India's global outreach. We now go live to The Hague in the Netherlands, where the Prime Minister is addressing the Indian community.
3: आज का दिन है, कोटि कोटि भारतवासियों का विश्वास मुझे न रुकने देता है और न थकने देता है। ये नॉन स्टॉप चले ही जा रहा है। साथियों, बहुत छोटी आयु से ही मैं देशभक्ति के रंग में रंग गया। आप ही मेरा परिवार बन गया। स्वर्ग से समष्टि की ओर चल पड़ा, अहम से वयम का रास्ता चुन लिया। और फिर तो

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे हैं, और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप्स थे, आज ये संख्या बढ़कर 2,00,000 से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। ।2025 में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
0: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
0: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा।
3: भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम।
0: सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था, जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थी, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, AI, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
4: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
5: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
4: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
5: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
0: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
6: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार

0: किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय 700 रुपए है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जीयूडीसी और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेड स्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। मुख्य उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए AI के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अली फली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान

0: आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, अब समय है हमारे अगले कार्यक्रम का। तो नमस्कार दोस्तों, मुस्कुराइए क्योंकि अगले 1 घंटे तक आपका साथ देने आ रही हैं वो अदाकारा जिनकी एक मुस्कान पर पूरा हिंदुस्तान फिदा हो जाता है। जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। हम बात करेंगे आज एक ऐसी अदाकारा की जिनके डांस स्टेप्स आज भी हर शादी, हर स्टेज और हर दिल की धड़कन बने हुए हैं और जिनकी अदाकारी ने रोमांस, इमोशन और खूबसूरती को एक नया नाम दिया। जी हाँ, आज की ये शानदार शाम समर्पित है बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के नाम। तो मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सुनिधि और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ का एक कार्यक्रम एक ही कलाकार। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी प्यारी माधुरी दीक्षित जी के एक सबसे फेमस सॉन्ग के साथ।

तो दोस्तों, जब भी बात आती है हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत मुस्कान और मदहोश कर देने वाले डांस की, तो एक ही नाम दिलो दिमाग पर छा जाता है। जी हाँ, हमारी और आपकी प्यारी धक धक गर्ल का, माधुरी दीक्षित का। आज हम इस शो में उन्हीं की सुनहरी यादों और सदाबहार गानों का सफ़र तय करेंगे। क्या अदाएं, क्या एक्सप्रेशंस, जब भी माधुरी पर्दे पर आती हैं तो स्क्रीन पर जैसे रोशनी सी बिखर जाती है। तेजाब के उस आइकॉनिक गाने से लेकर हम आपके हैं कौन की नटखट निशा तक, उन्होंने हर किरदार में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। क्या आप जानते हैं कि फिल्म खलनायक का उनका गाना चोली के पीछे अपने समय में इतना लोकप्रिय हुआ था कि उसने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। तो बात हम करते रहेंगे माधुरी जी की, और साथ साथ सुनते हैं उन्हीं पर फिल्माए हुए कुछ गाने।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार, और जिसमें हम बात कर रहे हैं आज धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की। सन 15 मई 1967 को मुंबई में जन्मी माधुरी दीक्षित बचपन से ही बेहद प्रभावशाली थी। पढ़ाई में अच्छी होने के साथ साथ उन्हें नृत्य का भी विशेष शौक था। उन्होंने कम उम्र में ही कथक सीखना शुरू कर दिया था। माधुरी का सपना डॉक्टर बनने का था, लेकिन किस्मत उन्हें फिल्मों की दुनिया में ले आई। सन 1984 में फिल्म अबोध से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। उन्होंने जब कदम रखा तो ये शुरुआत उनके लिए आसान नहीं थी, लेकिन मेहनत, धैर्य और लगन ने उन्हें धीरे धीरे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। फिर आया वो दौर जिसने माधुरी दीक्षित को स्टार से सुपरस्टार बना दिया। फिल्म तेजाब और उसका एक गीत 1 2 3 लोगों की जुबान पर छा गया, और उसके बाद एक के बाद एक सुपरहिट गीत और सुपरहिट फिल्मों का सिलसिला शुरू हो गया।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार, और जिसमें हम बात कर रहे हैं आज हमारी प्यारी माधुरी दीक्षित की। माधुरी दीक्षित केवल एक शानदार डांसर ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील और प्रभावशाली अभिनेत्री भी हैं। उन्होंने हर तरह के किरदार निभाए, रोमांटिक, भावुक, हास्य और गंभीर। फिल्म दिल, साजन, बेटा, खलनायक, हम आपके हैं कौन और दिल तो पागल है जैसी फिल्मों ने उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे पसंदीदा अभिनेत्री बना दिया। उनकी खासियत थी कि वे हर किरदार में सहजता और सच्चाई लेकर आती थीं। स्क्रीन पर उनकी मुस्कान और आंखों की मासूमियत दर्शकों को तुरंत जोड़ देती थी। तो यही खास बात थी हमारी माधुरी दीक्षित की धक धक गर्ल की। तो हम इनकी बातें करते रहेंगे, तब तक के लिए सुन लेते हैं इनसे जुड़ा एक और गीत।

तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज हम बात कर रहे हैं हमारी कलाकारा माधुरी दीक्षित के बारे में। दोस्तों, माधुरी दीक्षित को उनके उत्कृष्ट अभिनय और नृत्य के लिए अनेक पुरस्कार मिले। उन्होंने कई बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया। लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार जो उन्हें मिला वो है दर्शकों का प्यार। आज भी जब माधुरी स्क्रीन पर आती हैं तो दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।

माधुरी दीक्षित केवल एक अभिनेत्री नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा की एक भावना है। उनकी कला, मेहनत और सादगी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। आशा है आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। तब तक के लिए दीजिए आपकी दोस्त सुनिधि को इजाजत। नमस्कार।

3:05 पर खबरें नशे की जाएंगी और 3:15 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम मेरी पसंद। सपहर 3:30 आप सुनेंगे बुंदेलखंड के लोकगीत। शाम 4:00 आप लुत्फानंदोज होंगे फिल्मी मौसीकी से। फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम जारी रहेगा 4:50 तक। चार बजकर 50 मिनट पर खबरें नशे की जाएंगी और शाम 5:00 उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। सामिन ये था एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशो नले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: मीडियम वेव्स 1071 kHz मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्रीडेश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। सपहर के 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप माजी दिल्ली से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नेदरलैंड्स के अपने हमनसब रॉब जेटन के साथ बाहमी बातचीत करेंगे और शाह विलियम अलेक्जेंडर और मलिका मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स और AI और बाहमी तिजारत के शोबों समेत कई अहम समझौतों पर दस्तखत किए जाने की तवक्को है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी का वादा किया है। दोनों मुल्कों ने कलीदी नौयत के पेट्रोलियम और गैस रिजर्व समेत कई समझौतों पर दस्तखत किए हैं। फौज के सरबराह जनरल द्विवेदी ने पाकिस्तान को खबरदार किया है कि वो भारत के खिलाफ दहशतगर्दों को पनाह देना और सरगर्मियां ख़त्म करे। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारत की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुँच गई है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद नेदरलैंड्स के वज़ीर आज़म रॉब जेटन के साथ बाहमी बातचीत करेंगे और इज़्ज़तमआब शाह विलियम अलेक्जेंडर और मलिका मैक्सिमा से मिलने जाएंगे। ये दौरा बाहमी रिश्तों से आगे बहुत अहमियत का हामिल है और तवक्को है कि इसके ज़रिए हाल ही में मुकम्मल हुए भारत यूरोप आज़ाद तिजारती समझौते के तनाजुर में वसी भारत यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात वजूद में आएंगे। इससे कबल वज़ीर आज़म के नेदरलैंड्स पहुंचने पर नेदरलैंड्स के वज़ीर ख़ारजा ने उनका इस्तकबाल किया। भारतीय बरादरी और नेदरलैंड्स के ग्रुपों ने सकाफती प्रोग्राम और मौसीकी पेश करके उनका खैर मकदम किया। मुख्तलिफ उम्र के ग्रुपों, खित्तों और मज़ाहिब पर मुश्तमिल भारतीय बरादरी के मेंबरान ने रिवायती रक़्स और मौसीकी पेश की। वज़ीर आज़म मोदी के पहुँचने पर मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से फ़ज़ा गूंज उठी। वज़ीर आज़म ने नेदरलैंड्स में भारतीय बरादरी के ज़रिए उनके खैर मकदम की कुछ झलकियां साझा की हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि उनका इस्तकबाल शानदार तरीके से किया गया और जिसमें कथक, उड़ीसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम और गरबा रक्स भी शामिल था। वज़ीर आज़म भारतीय बरादरी से खिताब करेंगे और नेदरलैंड्स के तजारती लीडरों से बातचीत करेंगे। ये तकरीब वज़ीर आज़म के नेदरलैंड्स का दौरे का एक अहम हिस्सा है। इस तकरीब में भारत और नेदरलैंड्स के रिश्तों, भारतीय बरादरी के रोल और भारत की पूरी दुनिया में पहुंच पर खास तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भारतीय बरादरी और नेदरलैंड्स की सरकर्दा कंपनियों के CEO से खिताब करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स और AI जैसे शोबों में कई अहम समझौतों पर दस्तखत किए जाने का इम्कान है, जिसमें नेदरलैंड्स को आलमी रहनुमा की हैसियत हासिल है। तिजारती नुक्ता नज़र से नेदरलैंड्स भारत का एक अहम शराकतदार और बरामदाती और सरमायाकारी के बड़े मरकजों में से एक है। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात UAE ने बहुत से अहम समझौतों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें अहम पेट्रोलियम ज़खायर, तवील मुद्दती LPG सप्लाई और दिफा के मैदान में तआवुन शामिल है। इन माहदों पर दस्तखत मगरबी एशियाई में जारी महाजाराई के दौरान अबूजहबी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दरमियान आला सतह की बातचीत के बाद किए गए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर की मालियत की सरमायाकारी का अज़्म किया है। वज़ीर आज़म मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में कल UAE पहुँचे थे। मुआहदों में अहम शराकतदारी का मुआहदा भी शामिल है, जिस पर इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और अबूजहबी की तेल कंपनियों के दरमियान दस्तखत किए गए, जिसका मकसद भारत की तवानाई की फराहमी को मुस्तहकम बनाना है। इस अमल में पेट्रोलियम के जखायर और रकीक कुदरती गैस नीज रकीक बनाई गई पेट्रोलियम गैस LPG को जखीरा करने की सहूलियतें शामिल हैं। वज़ारत खारजा ने एक बयान में कहा कि इस मुआहदे से भारत के अहम पेट्रोलियम ज़खायर में UAE की शराकत में इजाफे से 3 करोड़ बैरल्स का इजाफा होगा और इससे भारत में गैस के अहम ज़खायर कायम होंगे।

0: मिस्क पेट्रोलियम और गैस रिजर्व समेत कई समझौतों पर दस्तखत किए हैं। फौज के सरबराह जनरल द्विवेदी ने पाकिस्तान को खबरदार किया है कि वो भारत के खिलाफ दहशतगर्दों को पनाह देना और सरगर्मियां खत्म कर दे। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारत की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मेरी पसंद। ये प्रोग्राम लेकर आपका मेज़बान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश आरजू फिल्म से आशा भोसले, मुबारक बेगम और हमनवाओं की आवाज़ों में, मौसीकी शंकर जयकिशन की, फिल्म आरजू।

चांद और सूरज फिल्म का ये नगमा आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, मौसीकी सलील चौधरी की थी। और ये आप सुनिए गाइड फिल्म का नगमा मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ।

ये थी मेरी पसंद प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशा जारी है मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के अलावा DT फ्री डिश पर। और लीजिए सुनिए बुंदेलखंडी लोकगीत। मुख्तलिफ फनकारों के गाए हुए

अभी आप सुन रहे थे मुख्तलिफ फनकारों के गाए हुए बुंदेलखंडी लोकगीत। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशा जारी है। लीजिए।

ये फिल्मी नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। अगली पेशकश हाथ की सफाई फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। नगमा निगार हैं गुलशन बावरा और मौसीकी तरतीब दी है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: ये था सुहाग फिल्म का नगमा आशा भोसले और शशि कपूर की आवाज़ों में, बोलते आनंद बख्शी के, मौसीकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी। और लीजिए अब सुनिए मंचली फिल्म का नगमा किशोर कुमार और लीना चंद्रावरकर की आवाज़ों में।
1: क्या हुआ?
2: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा जी?
2: एक बहाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा?

उर्दू सर्विस से। अगली पेशकश अमीर गरीब फिल्म का नगमा लता मंगेशकर की आवाज में, और दूसरी आवाज है किशोर कुमार की।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे आमिर गरीब फिल्म का नगमा, और यह है जुगनू फिल्म का नगमा जिसमें लता मंगेशकर का साथ दे रहे हैं किशोर कुमार। मौसीकी SD बर्मन की और नगमा निगार आनंद बख्शी।

0: उम्र है,
1: छोड़ो बहाना
0: ना ना ना।
2: यह है प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, बॉबी फिल्म का नगमा, लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह का गाया हुआ। नगमा निगार आनंद बख्शी और तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: मुझे कुछ कहना है,
3: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

दीदी ने आज कहा है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दों को पनाह देना और भारत के खिलाफ कार्रवाइयां बंद करना होगी। नई दिल्ली में सेना संवाद में खिताब करते हुए जनाब द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस तरह की सरगर्मियां जारी रखता है तो उन्हें यह फैसला करना होगा कि क्या पाकिस्तान दुनिया के नक्शे का हिस्सा बनना चाहता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद नीदरलैंड्स के वज़ीर आज़म रॉब जेटन के साथ बाहमी बातचीत करेंगे और इज़्ज़त मआब शाह विलियम अलेक्जेंडर और मलिका मैक्सिमा से मिलने जाएंगे। ये दौरा बाहमी रिश्तों से आगे बहुत अहमियत का हामिल है और तवक्को है कि इसके ज़रिए हाल ही में मुकम्मल हुए भारत यूरोप आज़ाद तजारती समझौते के तनाजुर में वसी भारत यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात वजूद में आएंगे। इससे कबल वज़ीर आज़म के नीदरलैंड्स पहुँचने पर नीदरलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने उनका इस्तकबाल किया। भारतीय बिरादरी और नीदरलैंड्स के ग्रुपों ने सकाफ़ती प्रोग्राम और मौसीकी पेश करके उनका खैर मकदम किया। मुख्तलिफ उम्र के लोगों खित्तों और मज़ाहिब पर मुश्तमिल भारतीय बिरादरी के मेम्बरान ने रवायती रक़्स और मौसीकी पेश की। वज़ीर आज़म मोदी के पहुँचने पर मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से फिजा गूंज उठी। वज़ीर आज़म ने नीदरलैंड्स में भारतीय बिरादरी के ज़रिए उनके खैर मकदम की कुछ झलकियाँ साझा की हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि उनका इस्तकबाल शानदार तरीके से किया गया और जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम और गरबा रक्स भी शामिल था। वज़ीर आज़म भारतीय बिरादरी से ख़िताब करेंगे और नीदरलैंड्स के तजारती लीडरों से बातचीत भी करेंगे। नीदरलैंड्स के अपने दौरे के अख्ताम पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल स्वीडन पहुँचेंगे जो उनके पाँच मुल्कों के दौरे का तीसरा मरहला होगा। वज़ीर आज़म स्वीडन के रहनुमाओं के साथ दोनों मुल्कों के मजबूत इक्तिसादी ताल्लुकात और साझेदारी को और ज़्यादा बढ़ाने पर जोर देंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तजारत रिकॉर्ड सतह तक पहुँच रही है। स्वीडन के सनअती इदारे न सिर्फ भारत की मार्केट का फ़ायदा उठा रहे हैं बल्कि वो फल फूल भी रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जनाब अली फाले कादिम अल ज़ैदी को इराक के वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ तवील अरसे से चले आ रहे अपने दोस्ताना ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है और उसने तमाम शोबों में बाहमी रिश्तों को मज़ीद मुस्तहकम और मजबूत करने का तहिया कर रखा है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि वो दोनों मुल्कों की खुशहाली और तरक्की के लिए मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। भारत के इदारों ने पहली बार 182 करोड़ रुपये मालियत की कैप टैगन मनशियात को कब्ज़े में लिया है। वज़ीर दाखला अमित शाह ने यह जानकारी दी और यह भी कहा कि सरकार ने भारत को मनशियात से पाक मुल्क बनाने का तहिया कर रखा है। जनाब अमित शाह ने कहा कि मगरबी एशिया जाने वाली मनशियात को कब्ज़े में लेने और इस सिलसिले में एक गैर मुल्की शख्स की गिरफ्तारी इस बात की दरख्शां मिसाल है कि हम मुल्क में मनशियात को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार मुल्क में एक ग्राम भी नशावर अशिया न तो आने देगी और न अपने इलाके से गुजरने देगी। मरकजी वज़ीर दाखला अमित शाह ने मनशियात की कंट्रोल से मुतालिक शोबे के जांबाज अहलकारों को मुबारकबाद दी। मगरबी बंगाल की सरकार ने 2011 से जारी किए गए जात पात से मुतालिक तमाम सर्टिफिकेट की फिर से तस्दीक का हुक्म दिया है। हुक्काम का कहना है कि गुज़श्ता 14 बरस के दौरान जारी किए गए इन दस्तावेजात के जवाब और असलियत के बारे में सवालात उठाए जाते रहे हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इस अरसे के दौरान दर्ज फहरिस्त ज़ातों, कबीलों और दीगर पसमांदा तबकों को ज़ातों के बारे में लगभग 1,69,00,000 सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। इनमें से बहुत से सर्टिफिकेट द्वारे सरकार कैंप की तवसुत से तकसीम किए गए। सब डिविज़नल अफसर और ज़िला सतह के अहलकार हर सर्टिफिकेट की जांच करेंगे। अगर ये साबित हुआ कि कोई भी सर्टिफिकेट गलत जानकारी या बेकायदगी से जारी किया गया है तो कानून के मुताबिक उसे मनसूख कर दिया जाएगा। हाल ही में वोटर फहरिस्तों की खसूसी नज़रसानी के दौरान जिन अफराद के नाम हदफ किए गए हैं उन पर भी इस हिदायत का इतलाक़ होगा। उनके और उनके ज़ेर कफालत अफराद के ज़ात से मुतालिक सर्टिफिकेट्स का भी जायज़ा लिया जाएगा और अगर ज़रूरी हुआ तो उन्हें मनसूख कर दिया जाएगा। नीति आयोग के एक वफ़ ने मगरबी बंगाल सरकार के आला अहदेदारों के साथ एक मीटिंग की ताकि मरकज़ और रियासत के दरमियान
تعاون اور اشتراک کو مزید بڑھایا جا سکے۔ میٹنگ میں ایڈیشنل سیکرٹری روہت کمار

0: और सेहत, WCD और SDG के प्रोग्राम डायरेक्टर राजीव कुमार सेन ने शिरकत की। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने 12वीं जमात के तलबा के इम्तहानात के नतायज के ऐलान के बाद एक नोटिस जारी किया है, जिससे इम्तहानात के अमल में मुनसिफाना तौर तरीक़ों और शफाफियत की तस्दीक होती है। नोटिस में कहा गया है कि जो तलबा अपने नतायज से मुतमईन नहीं हैं, वो दो मरहलों वाले नजरसानी निज़ाम से फ़ायदा उठा सकते हैं। पहले मरहले में तलबा ऑनलाइन अपने स्कैंड शुदा नकूल के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं, जिन्हें जायजे के लिए डाउनलोड किया जा सकता है। दूसरे मरहले में तलबा किसी भी फ़र्क या गलती की तस्दीक करा सकते हैं या मार्किंग स्कीम की बुनियाद पर मखसूस जवाबात की दोबारा जांच के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। CBSE के मुताबिक स्कैन शुदा नकूल के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें इस माह की 19 से 22 तारीख तक जमा कराई जा सकती हैं, जिसकी फ़ीस 700 रुपये फ़ी मजमून मुकर्रर की गई है। इसी तरह तस्दीक और दोबारा जांच के लिए दरख्वास्तें इस माह की 26 से 29 तारीख के दरमियान जमा कराई जा सकेंगी। 2027 की मरदमशुमारी के मुताबिक आज से राजस्थान में घर घर जाकर आदादोशुमार जमा करने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस मरहले में पहले पूरी रियासत में मकानों की गिनती और उनकी फहरिस्तबंदी की जाएगी और ये काम जून की 14 तारीख तक जारी रहेगा। इस काम के दौरान मकानों में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल और वहाँ दस्तयाब सहूलियात के बारे में 33 सवाल पूछे जाएंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और चीन ने उनके दौरे के मौके पर अहम तजारती समझौते किए हैं। उन्होंने दौरे के नतायज को अहमियत का हामिल करार दिया। वो चीन से वापस आते हुए फ़िज़ाइए के तैयारे में नामानिगारों से गुफ्तगू कर रहे थे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आज़ादी का ऐलान करने पर ताइवान को खबरदार किया है। ताइवान के सदर लाई चिंग टी ने कहा था कि ताइवान को आज़ादी का ऐलान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले ही अपने आप को एक खुद मुख्तार मुल्क तसव्वुर करता है। भारत की सात्विक साईराज रनकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने आज बैंकॉक में सेमीफाइनल में मलेशिया के गो जी फे और नूर इज़ुद्दीन को हराया। भारत की जोड़ी ने 82 मिनट में मलेशिया की जोड़ी को 19-21, 22-20 और 21-16 से हराया। 2019 और 2024 में कामयाबी के बाद भारत की इस जोड़ी का ये सीज़न का पहला फाइनल और टूर्नामेंट का तीसरा फाइनल है। आखिर में ख़ास ख़ास खबरें एक बार फिर। फ़ौज के सरबराह जनरल द्विवेदी ने पाकिस्तान को खबरदार किया है कि वो भारत के ख़िलाफ़ दहशतगर्दों को पनाह देना और सरगर्मियां ख़त्म करे। मगरबी बंगाल की सरकार ने 2011 के बाद से जारी किए गए ज़ात के सर्टिफिकेट की फिर से जांच के अहकाम जारी किए हैं। CBSE ने 12वीं क्लास के तलबा के लिए सवालों के जवाब के पर्चों की फिर से जाँच के लिए दो मरहलों का ऐलान किया है। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रनकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारत की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 5 बजे जाते हैं। हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शब के 9:15 पर आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।
2: नमस्कार। FM बैंड 103.6 MHz ते आकाशवाणी ता ए अमृतसर केंद्रे तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस दिंदी पंजाबी सेवा। शाम दे 5 बजे ने हुन साडी दूजी सभा शुरू हुंदी है। सभा दी शुरुआत चाओ सब तो पहला सुनते हैं सराय की प्रोग्राम चोक माही दी।

0: मम्मी, ओ मम्मी, किथे रह गई हैं?
1: आई बीबी जी। हां जी, दसो।
0: तेनु किन्नी बारी क्या है कि मैनु बीबी जी ना क्या कर?
1: ना, बीबी जी ना आखा, ते और की बेबे जी आख्या करा?
0: शट अप, अनपढ़ गवार, इलिटरेट, मैनु मैडम कह के बुला कर, मैडम जी।
1: लो जी, साडा की है, असी ता नौकर जो होए, मैडम कह दिया करांगे, खुश?
0: गुड, नाले गल दस, इन्नी बंट

0: 味吧。
1: 嗯
0: 嗯嗯，哇，इतना डिलीशियस खाना तो मैं अपनी पूरी लाइफ च नहीं खाता। आ मिस्टर रमान, तुहाडी वाइफ दे हत्थां च ते जादू है वे जादू।
2: खाना तो साडी नौकरानी भी ठीक ठाक बनाई लैंदी है, पर तुहाडी नौकरानी ने तो 5-star होटल दा खाना भी फेल करता है।
0: मिस्टर अरमान, किथे है तुहाडी नौकरानी? अबे मेरा दिल करता है कि उनु बख्शीश देती जावे।
2: अरमान बेटा।
3: जी जी माँ जी।
2: जे तुहानू इतराज ना होवे तो एक डिमांड करा।
3: दसो, हुकम करो माँ जी।
0: ओ मामा, तुहानू की चाहिए?
2: देख बेटा, अपनी पढ़ाई दे चक्कर च ते फिर जॉब च बिजी होने कारण तू हाले तक मैरिज नहीं करवाई।
0: यस।
2: ते बहू तो सेवा कराउन दा मौका ही नहीं मिलिया मैनू ता। ते उपरो मर जानी अपनी नौकरानी भी पूरे हफ्ते वास्ते चली गई है अपने पिंड। सोच दिया मैं किथे इस उम्र च हाथ साड़दी फिरांगी। इसे करके निकी जिही डिमांड कर रही है अरमान को।
4: तुसी हुकम ता करो जी।
2: और कुछ नहीं जी, बस जदों तक साड़ी नौकरानी वापस नहीं आ जांदी उदों तक तुसी अपनी नौकरानी साड़े नाल भेज दियो।
0: चाचा जी, इस बहाने असी भी 4 दिन वधिया वधिया डिशेस खा लवांगे।
2: हाँ।
0: क्यों अरमान
3: जी, ये कैसे हो सकता भला?
4: तुसी खाना खाओ जी, मैं पूछता उन्हों जे मान गई तो भेज देंगे तुहाडे नाल।
3: चाचा जी।
5: हरगिज नहीं, नॉट एट ऑल। मैं कोई सच्ची मुच्ची दी नौकरानी नहीं हां जिहड़ी किसी दे भी घर जाके झाड़ू पोछा करन लग जा।

0: try to understand, bubbly. समझने की कोशिश कर, please. वो मेरे boss की माँ है. मैं उन्हें कैसे मना कर सकता हूँ यार?
1: देख, आखिर तेरे अरमान दी promotion का सवाल है.
2: चाचा जी मुँह चलते हैं चार.
1: बस एक बार अरमान दी promotion हो गई, फिर बड़ा अफसर, सरकारी बंगला, सरकारी गड्डी, डबल तनखा. वाह जी वाह.
2: अब देख लो अरमान, सिर्फ एक हफ्ता.
0: हाँ.
2: Only one week.
0: Yes.
2: याद रखना मेरे इस एहसान नू.
0: केड़ी मुसीबत चो फसाता तुसी सानू चाचा जी?
1: ओ की होया?
0: पता नहीं बेचारी किस हाल च होएगी. मजबूरी ये आ के ना तो उन्हें फोन करके उदा हाल पूछ सकता, ते ना ही जाके उदी दुर्दशा देख सकता. हुन दसो की करिए चाचा जी, लाओ कोई जुगाड़.
1: ओ जुगाड़ तो अपने हर वेले रेडी हुंदे ने अरमान. ओए आपा हुणे उन्हें जाके मिलाउने आ.
3: की कहांगे जाके? हैं भई मैं अपनी वाइफ नू ते तुसी अपनी नू नू मिलन आए हो.
0: सारी पोल खुल जानी है साडी. ते जे पोल खुल गई ना चाचा जी, ता प्रमोशन दी जगह उन्हें कमबख्त अफसर ने डिमोशन कर देनी है. मेरी डिमोशन?
1: ओ पुत्र जी, ये सारा कुछ ता उदो होगा ना जे आपा पछाणे जावांगे.
0: की मतलब तुहाडा?
1: मतलब ये पुत्र भी आपा भेस बदल के जावांगे.
0: है?
1: भेस बदलन दा मतलब मेकअप दा सारा समान मेरे कोल है. सारे जुगाड़ हुंदे ने तेरे चाचे कोल. तू टेंशन ना ले, बस आजा तैयार होइए ते फिर फटाफट मिल के आइए बबली नू.
0: चल ये भी सही.
4: वाह वाह, क्या बात है, कितना सुचज्जा काम कर दिए तू कुड़िए. मेरा ता घर लिशका दिता है तू.
2: थैंक यू.
4: ते उपरो खाना भी तू इतना स्वाद बनानी है के की दसा. मेरा ता दिल करदा है भई अरमान नु कह के तेनु अपने घर पक्की होई रख लवा.
2: हां अब लो मां जी, पूरा आधा किलो सूजी दा हलवा बना के दित्ता है तुहाडे लई, ड्राई फ्रूट्स पा के.
4: वाह, जिउंदी रह कुड़िए, जिउंदी रह. मैं सोचा भई कीर्तन ते ता जाना ही है, प्रसाद भी घरों ही बना के ले जानी है. वाह, किन्नी खुशबू आ रही है सलवे चो, जेड़ा भी खाएगा निहाल हो जाएगा. अच्छा मैं चल दी हाँ, कीर्तन तो शुरू भी हो गया होना है. हाँ सच, अरमान कहंदा सी कि एसियां दी सर्विस करन वाले भेजेगा घर.
2: हाँ जी.
4: अरमान दी ड्यूटी लाई सी उन्हें एसी मकैनिक भेजन दी.
2: ठीक है.
4: सिर ते खलो के सारे एसियां दी चंगी तरह सर्विस करा लई, सुनिया? अच्छा मैं चल दी हाँ.
2: शुक्र है मगरों लथी, हर वेले तारीफा ही करी जाओगी, कुछ नहीं तो हो चली जाओगी. मैनू मेरे अरमान दी प्रमोशन दी टेंशन ना हुंदी, पता नहीं बेचारा किवें उस फैशना पट्टी पम्मी दे हाथ दीआं बकवकियां सब्जियां खांदे होणे. बेचारा अरमान ते बेचारे चाचा जी. आई कौन है? हां जी दसो.
5: ओ जी एसी सर्विस करनी सी, अरमान साहब ने भेजा गा.
2: पर शक्लों तो तुसी एसी मैकेनिक नहीं लगदे, ड्राइवर लगदे हो, वो भी ट्रकां दे.
1: ओ बेबी, बंदे पामे असी देसी पर सेट कर देने बिगड़े तो बिगड़े एसी.
5: हाँ जी.
1: साडे कोल हरेक एसी नु सेट करन दा जुगाड़ है बीबी.
5: हाँ.
2: जुगाड़? ओ चाचा जुगाड़ी तुसी.
1: बीबी मन मेरा एहसान, मैं लेके आया तेरा अरमान.
2: ओ अरमान, तुसी तो बिल्कुल भी नहीं पहचाने जांदे.
1: भई आखर मेकअप दा जुगाड़ तेरे चाचे ने लगाया भी बबली.
0: बॉस दी माँ किथे है बबली?
2: ओ ता कीर्तन ते गई है, ते तुहाडा बॉस किथे है?
0: ओए ओ दफ्तर बैठा कमबख्त, तू ठीक ता है बबली?
2: पुछो ना कुछ भी, तुहाडे बॉस दी माँ ता हर वेले मेरी तारीफा ही करदी रहंदी है. ते तुहाडा बॉस ओ ता लट्टू होया पिया मेरे ते. गल्ला गल्ला च मैं ना ब्याह करवाउण दे हिंट भी दिंदा रहंदा है, दिल फेक ऑफिसर.
0: देखी किते मेरी दुनिया ना उजड़ जाए बबली.
1: ओ लगदा ओ कोई आया भाई, आ भी जाए ते आपा केड़ा पछाने जाना.
2: पछाने भी गए तो की कर लेंगे साडा, वत वत नौकरी तो कर देंगे ना अरमान नु. मैं ना सबक ले लिया, लोका दे कपड़े सी लूंगी. ਕੁਕਿੰਗ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਲਵਾਂਗੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ, ਕਲਾਊਡ ਕਿਚਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
6: ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ! ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਮਾਨ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਭੋਲਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ।
1: ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਚ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
0: ਹਾਂਜੀ,
1: ਜੇ ਇਹੀ ਚਾਹਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ?
6: ਸੋ ਵਾਟ,
1: ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਬਲੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਰਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ।
0: I am sorry sir.
2: ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ।
0: ਜੀ ਜੀ।
6: ਬਈ, ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਮਾ ਖੁਦ ਗਰਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਬਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰਾਨੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਲੈ ਆਏ।
2: ਇਟਸ ਓਕੇ।
6: ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹੇਗਾ।
1: ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਰਮਾਨ ਦੀ ਕਰੋ
2: ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ।
6: ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਮਝੋ ਫਿਰ, ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ।
1: ਅਰਮਾਨ ਜਗਾੜੀ ਦੇ ਜਗਾੜ।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम लड़ीवार नाटक होया देश पराया। हाँ जी तेजा सिंह जी बच्चों जिदा आप आकाशवाणी जलंधर के स्थापना दिहाड़े की गल कर रहे हैं
1: जी
0: ते 90 साल आकाशवाणी के नाल
1: बिल्कुल
0: इस सिलसिले तहत डॉक्टर लखविंदर जौहल होरां दे नाल कुछ जानकारियां सांझियां हुई आप सांझियां करते हैं
1: जरूर जी।
0: नब्बे साल आकाशवाणी के नाल इस प्रोग्राम च साडे अज दे मेहमान ने डॉक्टर लखविंदर जौहल। और डॉक्टर लखविंदर जौहल का नाम जदों साडे ज़ेहन दे विच आउंदा या असीं उन्हां दा नाम लैंदे आ ते सुते सिद्ध ही प्रसारण की दुनिया का एक वर्का जिहड़ा है खुल जाता है, चाहे वह आपां रेडियो की गल कर लिए, टैलीविजन की गल कर लिए, इतों तक कि आप प्रिंट मीडिया की भी गल कर सकते हैं, अखबारों की भी गल कर सकते हैं और कुछ मैगजीना की भी गल कर सकते हैं, क्योंकि इन्हों का साहित्यिक संचार दोनों ही साधना बड़ा ही निजदा रिश्ता है, बहुत गूढ़ा रिश्ता और बहुत लंबा रिश्ता है। डॉक्टर साहब सब तो पहलू तो प्रोग्राम च जी आया कहने तो जदों गल आप अज क्योंकि प्रोग्राम जिहड़ा है 90 साल रेडियो का जिहड़ा सफर है वो अज चल रहा है जिन्हों आप मना रहे हैं तो जिन्हों दहाकों के रेडियो की शुरुआत हुई तो जिन्हों दहाकों के ताड़ी जिंदगी ने पहली अख खोल के रेडियो वेख्या उदों तो आप गल शुरू करते हैं क्योंकि आप सारे लोग ही जी है एक पेंडू धरातल के लोग हाँ या पेंडू रहतल के लोग हाँ और पिंडा दे विच रेडियो का जिहड़ा थां है जो रेडियो आया तो मेरा ख्याल है कि पिंडा की जो भी नक्श नुहार बदलिया है उन्होंने रहतल बदली है ये कह सकते हैं कि हर खेत्र दे विच रेडियो ने जिहड़ा है एक जागृति लिया खास करके साड़ी पिंड की जिंदगी दे विच तुहाडे पिंड का की माहौल सी उदों किदां दा जिहड़ा है तुसीं जिहड़े अहसास ने तुहाडे रेडियो दे नाल जुड़े हुए।
2: देखो इस 90 सालों की कहानी दे विच जिहड़ी आकाशवाणी की इत्थे तक पहुँची है बहुत ही शानामती कहानी है, यह बहुत ही सुनहरा दौर इस रेडियो का आकाशवाणी का समुचे तौर पर

0: और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्रों तक पूरी पहुंच थी। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के पास गणना प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा करने का विकल्प भी होगा। शिक्षा मंत्रालय ने बीच में ही स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की भी समीक्षा की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आत्मनिर्भरता भारत की अगली पीढ़ी की विकास यात्रा तय करेगी। नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश क्वांटम तकनीक, डीप टेक फाइनेंसिंग और उद्योग आधारित शोध के जरिए नवाचार संचालित विकास के नए दौर की ओर बढ़ रहा है। कार्यक्रम में अनुसंधान विकास नवाचार RDI निधि योजना के तहत 5 परियोजनाओं के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। IPL क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटन्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम। तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने किसान बहन भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम कृषि जगत लेकर के। नीलम बहन, हम अपने किसान बहन भाइयों से बार बार कहते हैं कि आप खेती के साथ साथ पशुपालन करें, कोई भी अन्य जो उद्यम है वो कर सकते हैं या स्वरोजगार कर सकते हैं, ताकि आपकी जो आमदनी है वो बढ़ती रहे और जो खेती में उतार चढ़ाव आता है उससे आप बचे रहे। लेकिन आज हम एक और तकनीक के बारे में अपने किसान बहन भाइयों को बताना चाहेंगे और वो तकनीक है, सिस्टम है कृषि वानिकी। अब हमारे किसान बहन भाई सोच रहे होंगे कि कृषि वानिकी क्या होती है, तो इसका मतलब ये होता है जो भूमि है जहाँ पर आप कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं और साथ साथ अगर आप अपने खेतों पर पेड़ भी लगा देते हैं तो ये सब मिलकर के कृषि वानिकी बन जाता है, जिससे आपको लाभ ही लाभ होता है। और इस प्रणाली से उत्पादकता, लाभप्रदता और पारिस्थितिकी संतुलन अच्छा रहता है, जिससे आप किसान भाइयों को कम लागत में अधिक आय और पर्यावरणीय सुरक्षा मिलती है।
1: बिल्कुल शशि भाई, और अब बात करते हैं कृषि वानिकी की विशेषताएं और लाभ की। तो सबसे पहले बात करते हैं आय में वृद्धि के लाभ की। किसान भाई फसलों के साथ साथ इमारती लकड़ी, फल और ईंधन प्राप्त करके अपनी आय में विविधता लाते हैं और इसके साथ ही पेड़ों की जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकती हैं और जैविक पदार्थ बढ़ाकर मिट्टी की उर्वरा

0: बनाए रखती हैं, जिससे मृदा का संरक्षण होता है और साथ ही ये कार्बन पृथक्करण के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग को कम करने और जल स्तर सुधारने में मदद करती हैं। इसके अलावा सूखे या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने में सहायक हैं और ये प्रणाली लकड़ी की मांग को पूरा करने के साथ साथ चारे की आपूर्ति भी करती है।
1: बिल्कुल नीलम बहन, तो हमारे किसान बहन भाई और अधिक जानना चाहेंगे कृषि वानिकी के बारे में, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण आज का हमारा विषय है कृषि वानिकी का, जिसका उपयोग करके हमारे किसान भाई लाभ ही लाभ ले सकते हैं। तो इसी क्रम में अपने किसान बहन भाइयों को सुनवाते हैं एक बातचीत, जिसका विषय है पर्यावरण संरक्षण में कृषि वानिकी का योगदान। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर SD सिंह और इनसे बात कर रही हैं प्रतिमा शर्मा। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
2: नमस्कार, स्वागत है सभी किसान भाई बहनों का, सभी श्रोताओं का। मैं हूं प्रतिमा शर्मा। साथियों, हमारे किसान भाइयों का, राष्ट्र का समग्र विकास हो, हमारी सरकार पूर्णतः प्रयासरत है। हम जानते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। हमें अपनी भूमि को भी स्वस्थ रखना है और वन संपदा को भी बचा कर रखना है। ऐसे में कृषि वानिकी किसान भाइयों के लिए बेहद लाभप्रद है। कम भूमि हो या ज्यादा, कृषि वानिकी में एक ही भूमि पर आप फसल के साथ साथ पेड़ लगाकर कई गुना मुनाफा भी कमा सकते हैं। कृषि वानिकी यानी एग्रो फॉरेस्ट्री आखिर क्या है और कैसे किसान भाई इसका लाभ उठा सकते हैं, ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं। और आज का जो हमारा विषय है साथियों, वो है पर्यावरण संरक्षण में कृषि वानिकी का महत्व। हमारे साथ हैं डॉक्टर SD सिंह, पूर्व मुख्य अधिकारी दिल्ली पर्यटन विभाग। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद
2: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि कृषि वानिकी क्या है।
3: जी देखिए, एक खेत है, यदि उसमें हम लोग खेती लगातार रहते रहे और यदि उनमें पेड़ों को उस और जोड़ दे तो वो कृषि वानिकी हो जाती है। बस ये कि खेती में हम लोग कई बार ये बोलते हैं कि क्या ये केवल फसलें ही है? नहीं, फसलों के साथ में जो हमारे पालतू पशु हैं वो भी इसमें हो सकते हैं। तो ये है, कृषि के साथ में यदि पालतू पशु लेते हैं और साथ में पेड़ जरूर उसमें जोड़ देते हैं, तो ये किसान का अपना एक रूप है उस खेती को, कृषि की भूमि को उपयोग करने के लिए।
2: डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि जितने हम पेड़ लगाएंगे उतने हमारी भूमि की जो मृदा है वो भी मजबूत बनेगी, उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, तो हमारी भूमि के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए इसका कितना महत्व होता है?
3: देखिए, सही बात यह है कि जब भी आप खेती लगातार एक खेत से लेते रहते हैं, आप थोड़े से पोषक तत्व डाल देते हैं, तो होता क्या है कि सारे पोषक तत्व जो है वो तो नहीं हम ऐड करते, वो मिट्टी में यदि है तो वो ही हम ले सकते हैं फसलों के लिए। अब यदि हम साथ में पेड़ लगा देते हैं और पेड़ ऐसे जो कि जैसे नाइट्रोजन फिक्सर है, कोई बहुत से शीशम वगैरह के पेड़ हैं या इस प्रकार के पेड़ हैं जो कि बहुत ही उपयोगी हैं, जिससे पत्ते जो हैं वो नीचे जाते हैं, तो वो जो पत्ते या इसके जो पेड़ों की जो और चीजें हैं वो जब खेत में जाती हैं तो उससे और माइक्रोन्यूट्रिएंट भी उसमें ऐड होते हैं, जो छोटे छोटे तत्व होते हैं वो भी ऐड होते हैं, तो ओवरऑल इसकी जो उपजाऊपन जो है भूमि का वो बढ़ जाता है। एक तो ये है,
2: एक खाद के रूप में,
3: एक खाद के रूप में हो जाता है दूसरा, और खाद और वो भी पूरे खाद पूरी, मतलब ये नहीं है कि उसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम केवल होगा। दूसरा देखिए, सही बात यह है कि जब हम पेड़ लगा देते हैं तो इसकी जड़ें थोड़ी नीचे चली जाती हैं, तो नीचे जाने से क्या होता है, यदि मिट्टी भुरभुरी है या सख्त है तो वो खुल जाती है और यदि मिट्टी रेतीली है तो वो टाइट हो जाती है। तो जो पानी का जो बहाव है, यदि वो रेतली होगी तो पानी जो है जल्दी जो सूखता है तो वो कम जल्दी सूखेगा, और यदि बिल्कुल गोड़ी मिट्टी या क्लेई मिट्टी होगी या सख्त मिट्टी होगी तो उसमें छेद जब हो जाएंगे तो इनकी जड़ें जो हैं वो नीचे जो ग्राउंड वाटर है उसको भी रिचार्ज करती हैं। और तीसरा, सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिएंट नीचे की लेयर में है या पानी नीचे की लेयर में है उनको रिसाइकल करते हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा एक सस्टेनेबल सिस्टम है इकोलॉजी का, या जिसे पारिस्थिति का बोलते हैं हम लोग, कि उसमें फसल को लाभ हो रहा है और उपजाऊपन भी हो रहा है और पानी जो है वो संरक्षित भी हो रहा है,
2: यानी भूमि कि नमी भी पूरी बनी रहेगी।
3: बिल्कुल, नमी भी पूरी बनी रहेगी।
2: तो डॉक्टर साहब, अगर किसान चाहता है कि फसल भी उगाए और पेड़ भी लगाए तो कौन कौन से पेड़ लगाने चाहिए उसे?
3: देखिए, एक चीज मैं आपको सही बताता हूँ, वैसे तो देखिए कोई भी ऐसा पेड़ नहीं है जो नहीं लगाया जा सकता, परंतु कुछ पेड़ जो हैं वो किसानों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं और कृषि वानिकी में, क्योंकि कृषि जो भूमि है उसके लिए दो पार्ट हैं उसके, एक तो उसको रोजी जो रोटी है वो मिलती रहे और साथ में जो कुछ और लगाए तो उससे उसको इनकम भी हो। हम ऐसे पेड़ लगा दें कभी कई बार कि उनका फल बहुत लेट आए या उनकी लकड़ी है वो बहुत लेट मिले, तो उससे क्या है किसान जो है उसको फायदा नहीं होता है, इसलिए बहुत से ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जो कि थोड़ा जल्दी तैयार हो जाएं और जिसको अपनी जो कमाई है वो 3 से 5 साल या 8 साल या 10 साल

0: अंदर अंदर में उसको मिलना शुरू हो जाए, एक तो ये। दूसरा ये जरूरी है कि लकड़ी से ही नहीं, जो पेड़ हैं उनमें से और भी बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनसे कि उसको आमदनी हो सकती है। जैसे बहुत से पेड़ों के फूल बहुत अच्छे होते हैं, फल बहुत अच्छे होते हैं, या बीज बहुत अच्छे होते हैं, या पत्ते बहुत अच्छे होते हैं, या तने बहुत अच्छे, उससे जो उसको इनकम हो सकती है वो भी उन पेड़ों से मिल सकती है। वैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे सहजन, सहजन जिसे मोरिंगा बोलते हैं, उसको आप देखेंगे कि पेड़ का पेड़ तो है ही है, परंतु पेड़ से पत्ते, उसकी टहनी, उसकी जो पॉड है, उसकी जो फली है, वो कितनी उपयोगी होती है हमारी सेहत के लिए। ऐसे ही नीम, नीम के बारे में ये बोला जाता है कि नीम हकीम खतरा जान, मतलब कभी भी नीम यदि आपके सामने है तो आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती। उसके पत्ते, उसके दातुन, उसके बीज, और नीम के देखिए बीजों से जो तेल निकलता है, एक सरकार ने आजकल यूरिया के लिए बिल्कुल कह दिया गया कि अकेला यूरिया नहीं होगा, नीम कोटेड यूरिया होगा। यदि नीम के बीज से जो तेल निकलता है यदि उससे कोटिंग करेंगे तभी आप बाहर बेच सकते हैं यूरिया को, नहीं तो नहीं बेच सकते और किसान उसको उपयोग भी नहीं करेंगे। तो एक कितना बड़ा फायदा है नीम को लगाने से,
1: बहुत फायदा है। और डॉक्टर साहब ये भी कहा जाता है कि नीम से छन छन कर जो हवा वायु हमें मिलती है वो बिल्कुल शुद्ध होती है,
0: शुद्ध हवा हो जाती है। ऐसे ही चंदन, अगरवुड, चंदन देखिए, चंदन का जो तेल या चंदन का जो रस होता है कितना महत्वपूर्ण होता है, सबसे महंगी चीज है, खासकर नॉर्थ ईस्ट के हमारे इलाके हैं उत्तर पूर्व के, वहां पर सबसे ज्यादा अगरवुड होता है, जो कि कृषि वानिकी के लिए बहुत। और ये देखिए पॉपुलर और यूकलिप्टस, ये तो दो ऐसे पेड़ हैं जिन्होंने लोगों को आमदनी दी है, और आमदनी के साथ साथ में जो हमारे जंगल बचाए हैं। अदरवाइज देखिए ये दो पेड़ नहीं होते तो ये जो हम लोग पल्प और पेपर के लिए जो हम लकड़ी लेते हैं ये हम जंगल काट के लेते, और इनसे हमें जो लकड़ी मिल रही है तो अब हम लोगों की जरूरत जो जंगल से पूरी होनी थी वो यहां से पूरी हो जा रही है। और नेचुरल जो फॉरेस्ट है, जो प्राकृतिक वन है, वो हमारे बचे हुए हैं, जो कि हमारी धरोहर है, जो कि इकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से मैंगो, आम, बहुत सी जगह में बीजू आम जो है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है आप जानते ही हैं।
1: अगर दक्षिण भारत की तरफ जाएं तो वहाँ नारियल की जो लाइनें लगाई जाती हैं,
0: बड़ी बहुत ही उपयोगी होती है। कोकोनट है ये, देखिए एक चीज बताते हैं, कोकोनट से कितना फायदा होता है कोस्टल एरिया में, वो हमें फ्लड से बचाता है, नारियल हमें देता है, तेल जो है उसका हमारे कितना हमारे काम आता है, तो ये कितनी चीजें उससे हमें फायदे में मिलती है।
1: तो डॉक्टर साहब अगर कुटीर एवं लघु उद्योगों की हम बात करते हैं, वो किसान जो कुटीर और लघु उद्योगों को अपना रहे हैं या महिलाएं अपना रही हैं, उनके लिए कितना रोजगार का एक अवसर मिलता है?
0: फसल तो हमारी जो लगाते हैं हम फूड ग्रेन्स या हमारी गेहूं वगैरह या दालें या तिलहन, ये तो अलग हैं, परंतु यदि आप पेड़ ऐड कर देते हो तो पेड़ से हमारे एक तो छोटी लकड़ी आपको मिलना शुरू हो जाएगी, तो आप छोटी लकड़ी के औजार बहुत बना सकते हैं अपने घर के लिए। दूसरा जो इसके पत्ते हैं, जैसे मैं आपको सही बताता हूं, नीम के पत्तों की अभी बात करें, नीम की खली तो एक है ही है, नीम अमृत, बीज अमृत, ये नीम के पत्तों से बनता है। सहजन, ये नीम के पत्तों से जो है ये आपके पाउडर बनता है, कितना फायदा होता है। चंदन, कितना फायदा होता है, इसकी छोटी सी बार कितनी काम आती है हमारी। जो बांस है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, बांस जो है आजकल हम लोग कभी भी ये बोलते हैं कि बांस एक ऐसी चीज है, आप लगाते रहिए काटते रहिए, लगाने नहीं है जो आप दोबारा, एक बार लगा दिया आप काटना इस प्रकार से रखिए कि वो जहां से काटा है चौथे साल में दोबारा फिर तैयार हो जाएगा आपको बांस। आप ऐसे रोटेशन बना सकते हैं कि चार भागों में उस भाग को पूरे को बांट दीजिए, एक आज काटिए, एक अगले साल काटिए, एक अगले साल काटिए, और पांचवें साल में फिर वो जो पहले साल वाला काटा हुआ वहां पर आप दोबारा आ सकते।
1: तो डॉक्टर साहब अगर किसान भाई कोई फसल भी बो रहा है और पेड़ भी लगाना चाहता है तो जलवायु और मिट्टी का स्वास्थ्य भी ध्यान में रखते हुए करना होगा, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम लोग कई बार ये बोलते हैं थोड़ा सा कि भाई आपके पास में लगभग कृषि जो भूमि है वो 140 मिलियन हेक्टेयर है, और 140 मिलियन हेक्टेयर में हम खाद्य पदार्थ उगाएं या पेड़ लगाएं। देखिए कई बहुत सी जगह में हमारी जो मिट्टी है उसको हम लगातार यदि कुछ लेते रहते हैं तो उपज, चाहे जितना मर्जी खाद डालें, उपज उसकी कम होती जाती है।
1: डॉक्टर साहब कई जगह देखा गया है कि मिट्टी अम्लीय होती है,
0: जी जी,
1: तो क्या वहां पर हमारे किसान कर सकते हैं उपयोग?
0: बिल्कुल, क्यों, बहुत से पेड़ ऐसे हैं जो एसिडिक सॉइल में भी लग सकते हैं और बेसिक सॉइल में भी लग सकते हैं। पेड़ ही एक ऐसी चीज है जिनकी की रेंज थोड़ी सी लंबी होती है, वो एसिडिक सॉइल में भी 4-5 pH से लेकर और 9-10 pH तक जो है हम पेड़ों को लगाते हैं, और उससे क्या होता है हमारी जो मिट्टी है उसकी जो एसिडिटी होती है, पीएच होती है, वो लगभग नॉर्मल होने शुरू हो जाती है, तो ये उनको फायदा होता है और पेड़ बिल्कुल लग सकते हैं। और बहुत से पेड़ ऐसे होते हैं जैसे यूकलिप्टस है, कोस्टल एरिया जहां की बेसिक सॉइल वहां भी हो रहे हैं, और पहाड़ जो है वहां पर एसिडिक सॉइल होती है वहां भी हो रहे हैं, तो देखिए कितनी बड़ी रेंज है। आप अपने आप देखिए कि जो ऑर्गेनिक मैटर ऐड होता है उससे एसिडिटी अपने आप बढ़ने लगती है, और इसी प्रकार से जो पहाड़ में हम लगाते हैं उससे जो न्यूट्रिएंट अंदर जाते हैं तो उसकी भी एसिडिटी है वो कम होने लगती है।
1: तो डॉक्टर साहब, अब बात ये आती है कि आपने पेड़ भी लगा दिया और फसल भी बो दी, तो उसका सही तरीके से प्रबंधन कैसे
0: जी,
1: करना है?
0: बहुत जरूरी है। देखिए सही बात है कि फसल को नुकसान नहीं होना चाहिए। फसल तो हमारा देखिए खाद्य पदार्थ है, वो हमें पहले चाहिए, वो बिल्कुल सही बात है। हमें पेड़ ऐसे चुनने हैं जिनका कम से कम यह है कि पतझड़ जो है सर्दियों में हो जाए, ताकि धूप जो है हमारी खेती को मिले। एक तो ये जरूरी है। दूसरा, एवरग्रीन को हम थोड़ा सा इस प्रकार से अवॉइड करते हैं, ऐसे मतलब जो कि परमानेंट हरे रहते हैं, ऐसे पेड़ों को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। वो वहां पर लगाए जा सकते हैं जहां पर हम खेती ना लगाकर वहां पर एनिमल हस्बेंड्री लगा रहे हैं, या पशुओं को पाल रहे हैं, या घास हम लगा रहे हैं। देखिए जो कृषि वानिकी है वो कृषि में सिल्वी कल्चर और सिल्वी पास्चर, सिल्वी पास्चर का मतलब है पेड़ और घास साथ में उगाना। जरूरी नहीं है कि खेती हो केवल, बहुत सी जगह में घास उगाते हैं चारे के रूप में। तो यदि वहां पर परमानेंट ग्रीन कवर का भी हम लोग ये सोचते हैं कि भाई एवरग्रीन हम लगा दें तो कोई मुश्किल नहीं, परंतु ये बहुत जरूरी है कि पतझड़ वाले पेड़ जो है हमेशा पसंद किए जाते हैं। जो आपने दूसरा कहा कि भाई हम पेड़ों को किस प्रकार से उगाएं, हमें थोड़ा सा ये देखना है कि टहनी यदि बाहर जा रही है बहुत ज्यादा और वो फसल को नुकसान करेगी, तो हमें ट्रेनिंग और प्रूनिंग जिसे बोलते हैं ना कि शाख तराशी इस प्रकार से करनी है,
1: कटाई छटाई,
0: वो कटाई छटाई जो इस प्रकार से करनी है कि उसकी जो धूप है, उसका जो फैलाव है, वो हमारी फसल को रोके ना, या फसल की बढ़त को ना रोके।
1: तो डॉक्टर साहब, कृषि वानिकी के जो वृक्ष होते हैं वो तेज हवा को रोकने और सहयोगी फसल को धूप से बचाने के लिए उपयोगी होते हैं, किस तरीके से इन चीजों का भी ध्यान रखना है हमें?
0: पेड़ का हमारे लगाने का तरीका जो होता है, एक तो वो, और पेड़ से जो मुख्य हमें फायदा मिलना चाहिए फसलों को, ये बहुत जरूरी है। हम लोग एक्चुअली क्या है, जो आपने बताया ये इसको बोलते हैं विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेल्ट्स। विंड ब्रेक का मतलब होता है कि जो किनारा है खेत का, या काफी दूरी तक थोड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ लगाने और एक या दो लाइनों में लगाने, जिससे कि तेज हवा आए तो वहां पर उनसे टकराए, उसमें डस्ट है, उसमें और पॉल्यूटेंट्स है, कुछ भी है उसमें प्रदूषण के कारक हैं, तो वो वहां पर टकरा कर तेज हवा में जो बह जाते हैं वो वहां पर रुकेंगे, और जो हवा आगे जाएगी तो जो वेलोसिटी है उसकी, जो हवा की तेजगी है, वो वहां पर कम हो जाएगी, तो जो आगे डेसिकेशन उसका सूखापन है, सूखापन का जो आगे फसल को नुकसान होता है वो कम हो जाएगा, डस्ट जो है वहीं पर रुक जाएगा, जो आगे हवा जाएगी वो शुद्ध हो जाएगी। और दूसरा आपने जो या शेल्टर बेल्ट्स उनको बोलते हैं कि शेड कैसे मिले उन, हम क्या करते हैं कि खेत में इस प्रकार से पेड़ लगाते हैं, 5 से 10 मीटर तक पेड़ लगा देते हैं हर जगह, तो थोड़ी थोड़ी दूरी तक जब पेड़ लगाते हैं तो उनको अपने आप में छाया मिलती है, और वो जो धूप से उनको नुकसान फसल को होगा वो कम हो जाएगा।
1: जी डॉक्टर साहब, अब एक सवाल मेरा और है, जो किसान भाई कृषि वानिकी करना चाहते हैं या पेड़ लगाना चाहते हैं, क्या उनके लिए सरकारी मदद मिल सकती है?
0: बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं हमारी जिसमें कि फायदा मिलता है, और आजकल कृषि वानिकी की भारत सरकार की जो कृषि मंत्रालय में ही स्कीम शुरू हो गई है, वो है हमारी सब मिशन ऑन एग्रोफॉरेस्ट्री, और उसमें हमें बहुत सी नर्सरी लगाने के लिए, जो किसानों के लिए भी, और यदि कोई विभाग किसानों के लिए नर्सरी कोई पौधशाला कोई तैयार करता है उसके लिए बिल्कुल पैसा मिलता है, और जो पैसा मिलता है उससे जो किसानों को पौध चाहिए उसी प्रकार की पौध जो है वो उनके पौधशालाओं में तैयार की जा सकती है, और उसके लिए बड़ा एक अच्छा साधन है कि जिला कृषि अधिकारी के साथ में, जिला वन अधिकारी के साथ में, जिला उद्यान अधिकारी के साथ में, कहीं पर भी यदि कोई कांटेक्ट करता है तो इसका पूरा फायदा उसको जो है मिल सकता है, और वो सरकार के पास में उसका पैसा जो है वो भारत सरकार से राज्य सरकार में जाता है, राज्य सरकार अपना भी सहयोग देती है, और वो बहुत जगह में आधा आधा 50-50% भारत सरकार देती है, 50% जो राज्य सरकार देती है। ये RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंडर में ही सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री है, और एक इसका जो मेन पार्ट है कि यदि सारे यूनियन टेरिटरी हैं तो हमारे जो यूनियन टेरिटरी में 100% भारत सरकार से मिलता है, जो पहाड़ी राज्य हैं या नॉर्थ ईस्ट के हैं वहां पर 90% और 10% का मिलता है सहयोग, और जो बाकी है वहां 60-40% का जो सहयोग मिलता है बाकी राज्य में, तो ये बहुत अच्छा एक हमारे लिए पौध उगाने का साधन है। और खेत घरों के आसपास पौधे, नर्सरी हम पौध तैयार करवा सकते हैं क्लस्टर बेस पर गांव के साथ में या ब्लॉक में, और वो पौधे जो है लोगों को मिल सकते।
1: तो डॉक्टर साहब, अगर जो हमारे युवा साथी हैं, क्या उनके लिए कोई प्रशिक्षण का भी प्रावधान है?
0: बिल्कुल, आजकल बहुत सी कृषि विद्यालय जो हैं वो, या कृषि विकास केंद्र जो है KVK जिनको बोलते हैं, वहां पर रेगुलर इनकी ट्रेनिंग हो रही है, और ट्रेनिंग के लिए भी भारत सरकार से जो है उसमें भी फंड मिलता है, और उसमें बिल्कुल वो सहयोग ले सकते हैं, किसी प्रकार की कोई भी मनाही नहीं है, इवन प्रोत्साहन जरूर है इसमें।
1: तो डॉक्टर साहब, चलते चलते एक प्रश्न ये रहेगा कि जो किसान भाई कृषि वानिकी को अपना रहे हैं, फसल भी उगा रहे हैं, पेड़ भी लगा रहे हैं, तो क्या उनको आप टिप्पणी देना चाहेंगे?
0: देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यदि हम लोगों का सतत विकास यदि शब्द बोलेंगे, और एक जिसे बोलते हैं कि पर्यावरण संतुलन जो इक्विलिब्रियम है पर्यावरण के लिए, जो पर्यावरण संतुलन हम बिठाते, तो पेड़ों को जरूर अपने आसपास में रखें। एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट दिया है किसी ने कि तीन, 30 और 300, अपने नजदीक में 3 पेड़ देखूं और 30% यदि ग्रीनरी हो और मेरे नजदीक में 300 मीटर दूरी पर एक छोटा सा फॉरेस्ट हो, छोटा सा वन हो, तो आप इकोलॉजिकली बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे आप बिल्कुल नेचर के पास
1: संतुलित
0: आपकी जिंदगी लगेगी।
1: बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने आज, पर्यावरण संरक्षण में कृषि वानिकी का महत्व और विस्तार से बताया।

0: और मुझे लगता है कि ये सारी बातचीत को सुनकर हमारे सभी किसान भाई बहनों को लाभ पहुंचेगा। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते
1: जी।
0: हैं।
1: किसान बहन भाइयों, आप सुन रहे थे ये बातचीत, पर्यावरण संरक्षण में कृषि वानिकी का महत्व। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर SD सिंह और इनसे बात कर रही थी प्रतिमा शर्मा।
2: और अब नीलम बहन अपने किसान बहन भाइयों को सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं राजेश कुमार अट्टा।

0: किसान बहन भाइयों, आप सुन रहे थे उपदेश, और कलाकार थे राजेश कुमार अट्टा।
1: नीलम बहन, आज का जो दौर है वो इंटरनेट का दौर है और इंटरनेट ने हर किसी की जो जिंदगी है बड़ी आसान बना दी है, अगर वो इंटरनेट का सदुपयोग करता है तो। हर क्षेत्र में आज हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तरह तरह के ऐप आ गए हैं, चाहे हमें बिजली का बिल भरना हो, पानी का बिल भरना हो, या गैस लानी हो, अपने किसी तरह के अन्य काम हो, बैंक का काम हो, पैसे निकालने हो, जमा करने हो, सारा का सारा काम आज इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। तो हमारे जो किसान बहन भाई हैं, हमारा जो कृषि का क्षेत्र है वो कैसे पीछे रह सकता है? तो इसी क्रम में एक बहुत ही अच्छी योजना हमारे किसान बहन भाइयों के लिए चलाई जा रही है भारत सरकार द्वारा, जिसका नाम है ई नाम, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि फोन के जरिए हम कोई भी चीज खरीद सकते हैं, तो इसी तरह से हमारे किसान बहन भाई भी अपनी जो फसल है उसको इस पोर्टल के माध्यम से कहीं पर भी बेच सकते हैं। अब ये उनके सामने समस्या नहीं रहेगी कि हमारे जो आसपास बाजार है वहां पर भाव कम मिल रहा है तो हमें कम में ही बेचना है। अब आपको ई नाम पोर्टल पर जाना है और देखना है कि कहां पर आपकी फसल का अधिक दाम है, तो वहां पर आप इस पोर्टल के माध्यम से आसानी से बेच सकते हैं और मुनाफा ले सकते हैं।
0: बिल्कुल शशि भाई, ई नाम योजना भारत सरकार की एक प्रमुख डिजिटल योजना है जो 2016 में शुरू की गई थी। ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफार्म है जो किसान भाइयों को उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य दिलाने के

0: उद्देश्य से देश भर की मंडियों को डिजिटल रूप से जोड़कर सीधे खरीदारों से जुड़ने में मदद करता है। और किसान भाई ई नाम पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से फसल की ऑनलाइन बोली देख सकते हैं और मंडियों के भाव की जानकारी ले सकते हैं और अपनी फसल को बेच सकते हैं।
1: तो हमारे जो भी किसान बहन भाई हैं इस पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल को बेचना चाहते हैं तो ई नाम पोर्टल है, वहाँ पर आपने आपको पंजीकृत करना होगा और फिर आप इस पोर्टल के माध्यम से अपने फसल उत्पाद को बड़ी आसानी के साथ जहाँ पर भी आपको भाव अच्छा लगे वहाँ बेच सकते हैं। अब इस पोर्टल पर आपको पंजीकरण कैसे करना है, आपके नजदीक जो भी जनसुविधा केंद्र है वहां जाइए, आप जो भी वहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे वो आपका पंजीकरण ई नाम पोर्टल पर बड़ी आसानी से कर देंगे। तो नीलम बहन, ये तो जानकारी रही ई नाम योजना की, और देखिए अब समय हो चला है कि अपने किसान बहन भाइयों से अनुमति ली जाए, लेकिन अनुमति लेने से पहले अपने किसान बहन भाइयों को बताते चलें कल प्रसारित होने वाले ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम के बारे में।
0: कल ग्राम संसार कार्यक्रम में बहन भाई सुनेंगे पत्रोत्तर पर आधारित लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम। इसके साथ ही बहन भाई चर्चा सुनेंगे विश्व दूर संचार एवं सूचना समाज दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर, और साथ ही खेलो इंडिया योजना पर भी बहन भाइयों को जानकारी दी जाएगी।
1: और कल के कृषि जगत कार्यक्रम में किसान बहन भाइयों के पत्रों के उत्तर और उनकी पसंद के लोकगीत सुनवाए जाएंगे। इसके अलावा हमारे किसान बहन भाई चर्चा सुन सकेंगे जिसका विषय रहेगा किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि सलाह, और इसके अलावा किसान उत्पादक संगठन यानी FPO योजना की जानकारी दी जाएगी। तो किसान बहन भाइयों, ये तो जानकारी रही कल प्रसारित होने वाले ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम की, लेकिन आज का ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश द्वारा केंद्र निदेशक कमरा नंबर 610 नव प्रसारण भवन आकाशवाणी नई दिल्ली। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी किसान बहन भाइयों को राम, राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल।

0: जगजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने ये गज़ल सुनी। इसी के साथ गज़लों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अब से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर वैट दर को 25% से घटाकर 7% किया। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने 101 जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए जल संचय अभियान की शुरुआत की। राजधानी के किशनगंज रेलवे स्टेशन पर लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग प्रणाली का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। दिल्ली पुलिस ने जीएसटी धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और आईपीएल क्रिकेट मैच के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो ने कल सभी लाइनों पर आखिरी मेट्रो के समय को बढ़ाया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर वैट दर को 25% से घटाकर 7% कर दिया है। ये रियायती दर प्रारंभिक दर पर 6 महीने की अवधि के लिए लागू की जाएगी। इस फैसले से एयरलाइन कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी और आम यात्रियों को भी सस्ती हवाई यात्रा का फायदा मिल सकता है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज डिस्ट्रिक्ट पार्क पश्चिम विहार से जल संचय अभियान की शुरुआत की। ये कार्यक्रम दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य 30 अगस्त तक राजधानी में 101 महत्वपूर्ण जल निकायों को पुनर्जीवित करना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: इस पहल के पहले चरण में लगभग 383 एकड़ के क्षेत्र में फैले 101 चिन्हित जल निकायों का पुनरुद्धार किया जाएगा। इनमें द्वारका जोन के 22, दक्षिण जोन के 13, रोहिणी जोन के 17 और नरेला जोन के 6 जल निकाय शामिल हैं। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने शहर में दीर्घकालिक जल सुरक्षा, भूजल पुनर्भरण और पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के पारंपरिक जल निकायों को पुनर्जीवित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ये पहल केवल सौंदर्यीकरण का एक प्रयास मात्र नहीं है, बल्कि पारिस्थितिक बहाली और सतत शहरी विकास की दिशा में केंद्रित प्रयास है। साथ ही उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे निर्धारित समय सीमाओं का कड़ाई से पालन करें और सभी जीर्णोद्धार स्थलों पर कार्य निष्पादन के उच्चतम मानकों को बनाए रखें। श्री संधू ने

0: लोगों से जन भागीदारी के माध्यम से इस अभियान में शामिल होने और अधिक हरित तथा जल सुरक्षित विकसित दिल्ली के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली लगभग 500 मेधावी छात्राओं को साइकिलें वितरित की। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये बेटियां अपने परिवार पूरे राष्ट्र के सपनों और संकल्पों की वाहक है। उन्होंने कहा कि ये पहल छात्राओं को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा प्रदान करेगी तथा अभिभावकों की चिंताओं को भी कम करेगी, जिससे उनकी बेटियां बिना किसी बाधा के अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ सके। मीडिया से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम सभी से ईंधन बचाने की अपील की है।
2: प्रधानमंत्री जी ने हम सबसे अपील की है ईंधन की बचत करें। उसके बहुत सारे तरीके हैं। मुझे खुशी है कि आज के इस कार्यक्रम में जो आज इन बेटियों को साइकिल दी गई है, ये भी उस पूरे परिवार के काम आने वाला साधन है, जिससे ईंधन की बचत भी होगी और एक बहुत ही स्वायत्तता उस बेटी को मिलेगी जो अपने घर से स्कूल तक जाने के लिए अब किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगी, वो अपनी साइकिल के साथ खुद आगे बढ़ेगी।
1: राजधानी के किशनगंज रेलवे स्टेशन पर लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग प्रणाली का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। उत्तर रेलवे ने कहा कि इस आधुनिकीकरण के अंतर्गत नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग आधारित सिग्नलिंग प्रणाली लागू की गई है। एक रिपोर्ट।
3: रेलवे ने बताया है कि इस स्वचालित प्रणाली से ट्रेनों की आवाजाही अधिक सुरक्षित, तेज और सुगम हो गई है, जिससे भविष्य में रूट की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इनमें आधुनिक सिग्नल तकनीक, स्वचालित असफल सुरक्षित सुविधाएं और AI आधारित उन्नत निगरानी व्यवस्था शामिल है, जो दुर्घटनाओं की आशंकाओं को कम करती है। ये पहल दिल्ली मंडल में सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही यात्रियों और मालगाड़ियों दोनों के लिए सुरक्षित तथा अधिक कुशल ट्रेन संचालन सुनिश्चित करने की भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष और रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता ने आज अपनी विधानसभा के सेक्टर 9 स्थित लेक व्यू अपार्टमेंट्स में RMC सड़कों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। साथ ही विश्वा अपार्टमेंट और स्टार अपार्टमेंट में वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन केंद्र का उद्घाटन किया। इसके अलावा श्री गुप्ता ने अपने आवास में जन सुनवाई कर लोगों की समस्याओं को सुना और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज नरेला भवाना मार्ग पर 9.5 किलोमीटर की सड़क पर 55 करोड़ की लागत से बनने वाले प्री कास्ट RCC नाले के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये परियोजना आधुनिक प्री कास्ट तकनीक पर आधारित है, जिससे निर्माण कार्य तेजी से पूरा होगा और गुणवत्ता बेहतर होगी। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग मंत्री ने नांगलोई जाट विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय विधायक मनोज शौकीन और क्षेत्रवासियों द्वारा बताई गई समस्याओं को श्री सिंह ने संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाया। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि वे सभी आवश्यक कार्य जल्द शुरू कर जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने वस्तु और सेवा कर GST धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त आयुक्त रवि कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपी फर्जी कंपनियां चलाकर GST रिटर्न, नकली बिलिंग और गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन फर्जी कंपनियों के जरिए करीब 128 करोड़ रुपए के नकली GST लेनदेन किए गए। जांच के दौरान पुलिस ने लगभग 51 लाख करोड़ रुपए नकद, 15 मोबाइल फोन, 2 कारें, फर्जी बिल और सिम कार्ड बरामद किए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज NEET UG 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे के वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्रों तक पूरी पहुंच थी। इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली का उपयोग किया है। नोटिस में CBSE ने कहा है कि जो छात्र अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है वे दो चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। एक रिपोर्ट।
4: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने इस वर्ष 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज 11 कुलपतियों और लगभग 96 स्कूलों के प्रधानाचार्यों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक संवाद कर मेरा भारत मेरा योगदान अभियान को लेकर चर्चा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि इस संवाद का उद्देश्य केवल नियुक्तियों पर चर्चा नहीं बल्कि विश्वविद्यालयों और युवाओं को इस जन अभियान का सहभागी बनाना है, जिससे छोटे छोटे प्रयास भी देश हित में बड़े बदलाव का माध्यम बन सके। उन्होंने इस दौरान विद्यालयों के बुनियादी ढांचे, आधुनिक कक्षाएं, छात्र सुरक्षा, डिजिटल शिक्षा और बेहतर शिक्षा के वातावरण को लेकर विस्तार से चर्चा की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonear.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सहनी ने सभी विभागों को सरकारी वाहनों का सीमित उपयोग सुनिश्चित करने और ईंधन बचत उपायों को बढ़ावा देने का निर्देश दिया है। ये निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के आह्वान के बाद आया है। राज्य लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग और लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने अपने निजी काफिले से पायलट वाहन को हटा दिया है। लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग से 9 वाहन और लोक निर्माण विभाग भवन और सड़क शाखा से 8 वाहन तत्काल वापस लेने के आदेश जारी किए गए। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मॉनसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है।
5: यह दिवस मच्छरों के प्रजनन को रोकने के उद्देश्य से सरल नियंत्रण रणनीतियों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसमें रुके हुए पानी को हटाना और जल भंडारण टैंकों का उचित रखरखाव शामिल है। डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए मई के महीने को मॉनसून से पहले जागरूकता गतिविधियों का मुख्य महीना घोषित किया गया है। मंत्रालय जुलाई माह को डेंगू विरोधी माह के रूप में मनाता है, जिसके दौरान देशव्यापी स्तर पर निरंतर जागरूकता और रोकथाम अभियान चलाए जाते हैं। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ तथा सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर हमें इस बीमारी को हराने के अपने संकल्प को और अधिक दृढ़ करना होगा। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि घर के आसपास पानी जमा न होने पाए और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने नागरिकों को कहा कि डेंगू के लक्षणों, बचाव और समय पर उपचार के प्रति जागरूक बने और अपने परिवार तथा आसपास के लोगों को भी इसके प्रति सचेत करें। साथ ही अपने घर और आसपास स्वच्छता बनाए रखें, कहीं भी पानी जमा न होने दें और मच्छरों से बचाव के सभी जरूरी उपाय अपनाएं। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: दिल्ली सरकार कल घिटोरनी गांव में नवनिर्मित तरला मोहल्ला चौपाल और वाल्मीकि बस्ती चौपाल का लोकार्पण करेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री परवेश साहिब सिंह ने कहा कि ये आयोजन गांव के विकास और जन सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। दक्षिणी दिल्ली के नेहरू प्लेस डाकघर में सोमवार को 11 बजे से एक दिवसीय डाक चौपाल का आयोजन किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में दक्षिणी दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह भिदोड़ी ने कहा कि इस डाकघर का आधुनिकीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि अब डाकघर में पोस्टल बैंकिंग, बचत खाता और बीमा के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अरुण जेटली स्टेडियम में कल आयोजित होने वाले IPL क्रिकेट मैच के मद्देनजर सभी लाइनों पर आखिरी मेट्रो के समय को बढ़ा दिया है, जिससे

0: मैच के बाद वापसी में यात्रियों को सुगम यातायात मिल सके।
1: मेट्रो में सफर करने वाले यात्री DMRC की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया पर समय बदलाव की जानकारी ले सकते हैं। वहीं दिल्ली यातायात पुलिस ने भी यातायात परामर्श जारी किया है। यातायात पुलिस ने बताया कि बहादुर शाह जफर मार्ग और JLN मार्ग पर शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक यातायात बाधित रहेगा। इसके साथ ही दरियागंज से दिल्ली गेट चौक, दिल्ली गेट चौक से गुरु नानक चौक और ITO से दिल्ली गेट चौक पर किसी भी भारी तथा व्यावसायिक वाहन को आने की अनुमति नहीं होगी। आदित्य की रिपोर्ट के समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के कथित मास्टरमाइंड PV कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। विशेष CBI न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को CBI हिरासत में भेज दिया। राजधानी में आज दिन भर मौसम साफ रहा और धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर VAT दर को 25% से घटाकर 7% किया। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने 101 जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए जल संचय अभियान की शुरुआत की। राजधानी के किशनगंज रेलवे स्टेशन पर लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग प्रणाली का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। दिल्ली पुलिस ने GST धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और IPL क्रिकेट मैच के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो ने कल सभी लाइनों पर आखिरी मेट्रो के समय को बढ़ाया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम मुशायरा।
1: सामईन की खिदमत में मोहम्मद अली कमाल का पुरखलूस आदाब। सामईन, उर्दू शायरी हिंदुस्तानी तहजीब व तमद्दुन की हसीन और दिलनशीन सिंफ है। इसमें हमारे मुल्क की मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू पाई जाती है। यहाँ के तीज त्यौहार, यहाँ के कुदरती मनाजिर, पहाड़, दरिया और खेत खलियानों की मंजरकशी उर्दू शायरी की खूबसूरती और दिलनशीनी में इजाफा करती है। सामईन, शायरी हयात इंसानी के एहसास और जज्बों के बेसाख्ता बयान कर देने का नाम है। शायरी के मौजूआत मुख्तलिफ हो सकते हैं, इसीलिए ये नफ्सियाती और पेचीदा मसाइल को हल करने में भी कारामद साबित होती है। और शेर के दो मिसरों में वो बात कह दी जाती है जो इंसान को वाह कहने पर मजबूर कर देती है। मुशायरों की ये तहजीब रही है कि अगर कोई शेर पसंद आता है तो वाह वाह की सदाएं बुलंद होती हैं और शायर को दादो तहसीन से नवाजा जाता है। इस रिवायत को बरकरार रखते हुए आइए सामईन मुशायरा सुनते हैं। निजामत कर रहे हैं जनाब अमीर अमरोही।
2: आकाशवाणी के मुशायरे में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो शोरा मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपसे करा देता हूँ। जनाब असलम बेताब साहब, जनाब खालिद अखलाक साहब, जनाब हामिद अली अख्तर साहब, सलाहकार उर्दू मैगजीन के एडिटर, और ये खाकसार अमीर अमरोहवी। आइए हम इस मुशायरे का आगाज जनाब असलम बेताब साहब के कलाम से करते हैं। आइए हम उन्हें समाप्त करते हैं। जनाब असलम बेताब साहब,
3: बहुत बहुत शुक्रिया। वो मुझे याद कर रहे होंगे, वो मुझे याद कर रहे होंगे, वक्त बर्बाद कर रहे होंगे।
2: क्या कहने, वाह वाह वाह।
3: वो मुझे याद कर रहे होंगे, वक्त बर्बाद कर रहे होंगे, इश्क के नामुराद पिंजरे से, इश्क के नामुराद पिंजरे से खुद को आजाद कर रहे होंगे।
2: अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह।
3: इश्क के नामुराद पिंजरे से
4: खुद
3: को आजाद कर रहे होंगे, देखकर हाथ की लकीरों को,
2: देखकर
3: हाथ की लकीरों को सिर्फ फरियाद कर रहे हूँ।
2: वाह वाह,
4: अच्छा है, अच्छा है,
2: वाह वाह,
3: बहुत शुक्रिया। देखकर हाथ की लकीरों को सिर्फ फरियाद कर रहे होंगे, सोचकर फिर पुरानी बातों को, सोचकर फिर पुरानी बातों को दिल को नाशाद कर रहे होंगे, सोचकर फिर पुरानी बातों को दिल को नाशाद कर रहे होंगे। ये तेरा वहम ही तो है असलम,
2: ये
3: तेरा वहम ही तो है असलम, वो तुझे याद कर रहे होंगे।
2: क्या कहने,
3: ये तेरा वहम ही तो है असलम, वो तुझे याद कर रहे होंगे।
2: क्या कहने,
3: वक्त बर्बाद कर रहे होंगे, वो मुझे याद कर रहे होंगे।
2: कुछ और सुनाइए असलम साहब।
3: जी एक गजल और हाजिर करता हूँ। दिले नादा की आरजू क्या है,
2: दिले नादा की आरजू क्या है,
3: दिले नादा की आरजू क्या है, क्या बताएं कि जुस्तजू क्या है।
2: वाह वाह वाह,
3: दिले नादा की आरजू क्या है,
2: वाह वाह,
3: क्या बताएं कि जुस्तजू क्या है। शोर बरपा है तेरी यादों का, शोर बरपा है तेरी यादों का, और इस दिल के रूबरू क्या है।
2: वाह वाह वाह वाह,
3: शोर बरपा है तेरी यादों का,
2: वाह वाह,
3: और इस दिल के रूबरू क्या है। है धुआं कुछ बुझे चिरागों का, है धुआं कुछ बुझे चिरागों का, ये ना पूछो कि चार सू क्या है।
2: क्या कहने, वाह वाह।
3: है धुआं कुछ बुझे चिरागों का,
2: वाह वाह वाह,
3: ये ना पूछो कि चार सू क्या है। मेरे चारों तरफ हैं वो शायद, मेरे चारों तरफ हैं वो शायद, वरना ये रोशनी ये बू क्या है।
2: वाह वाह,
3: मेरे चारों तरफ हैं वो शायद, वरना ये रोशनी ये बू क्या है। मात खाई है इश्क में सबने, मात खाई है इश्क में सबने, ए दिले बेकरार तू क्या है।
2: क्या कहने,
3: मात खाई है इश्क में सबने, ए दिले बेकरार तू क्या है। मोल कुछ भी नहीं वफाओं का, मोल कुछ भी नहीं वफाओं का, इश्क वालों की आबरू क्या है।
5: वाह
2: वाह वाह,
3: मोल कुछ भी नहीं वफाओं का, इश्क वालों की आबरू क्या है, कोई हसरत नहीं अगर असलम, कोई हसरत नहीं अगर असलम, फिर बताओ ये हाय हो क्या है।
2: वाह वाह वाह,
3: कोई हसरत नहीं अगर असलम, फिर बताओ ये हाय हो क्या है,
2: क्या कहने
3: दिले नादा की आरजू क्या है, क्या बताएं कि जुस्तजू क्या है।
2: वाह वाह,
3: एक गजल और हाजिर करता हूँ।
5: जी जी, आता
2: शादी ग्रामी,
3: आज नहीं तो कल लिखेंगे,
2: आज नहीं तो कल
5: लिखेंगे,
3: आज नहीं तो कल लिखेंगे, हम भी एक गजल लिखेंगे।
2: क्या क्या,
3: आज नहीं तो कल लिखेंगे, हम भी एक गजल लिखेंगे, गुजरे हैं जो साथ तुम्हारे, कागज पर वो पल लिखेंगे। गुजरे हैं जो साथ तुम्हारे, कागज पर वो पल लिखेंगे, बेचैनी और नींद ना आना, बेचैनी और नींद ना आना, हम दोनों के हल लिखेंगे।
2: क्या कहने,
3: बेचैनी और नींद ना आना, हम दोनों के हल लिखेंगे, सब तुमको जो चाहे लिखें, सब तुमको जो चाहे लिखें, हम तो बस संदर लिखेंगे।
2: क्या बात,
3: सब तुमको जो चाहे लिखें, हम तो बस संदर लिखेंगे, असलम क्या है हम लिखें तो, असलम क्या है हम लिखें तो, आवारा बादल लिखेंगे, आज नहीं तो कल लिखेंगे, हम भी एक गजल लिखेंगे। गजल का मतलब हाजिर करता हूँ दोस्तों। तेरी रहमत से निकल आया हूँ,
2: तेरी रहमत से निकल आया,
3: तेरी रहमत से निकल आया हूँ, मैं मुसीबत से निकल आया हूँ। तेरी रहमत से निकल आया हूँ, मैं मुसीबत से निकल आया हूँ, अब बहुत खुश हूँ मैं जहाँ वालों,
2: अब बहुत खुश,
3: अब बहुत खुश हूँ मैं जहाँ वालों, झूठी शोहरत से निकल आया हूँ। अब बहुत खुश हूँ मैं जहाँ वालों, झूठी शोहरत से निकल आया हूँ, जो रिवायत अजीब थी यारो, जो रिवायत अजीब थी यारो, उस रिवायत से निकल आया हूँ।
2: क्या कहने हैं, क्या कहने,
3: जो रिवायत अजीब थी यारो, उस रिवायत से निकल आया हूँ, नेकियां काम आ गई शायद,
2: नेकियां काम आ गई,
3: नेकियां काम आ गई शायद, नेक नियत से निकल आया हूँ।
2: बहुत अच्छा है, क्या कहने हैं, नेक

0: इससे पहले कि हो
1: इससे पहले कि हो जाए सब कुछ फना, आग दिल में लगी है चले आइए।
0: वाह वाह वाह,
1: आग दिल में लगी है चले आइए,
0: वाह वाह,
1: किससे गैरों के होते रहे हैं बहुत, किससे गैरों के होते रहे हैं बहुत, बात अपनी छिड़ी है चले आइए।
0: वाह वाह,
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: किससे गैरों के होते रहे हैं बहुत,
0: क्या बात है,
1: बात अपनी छिड़ी है चले आइए, गैर अपने हुए हैं जहां में कभी, गैर अपने हुए हैं जहां में कभी, किसको किसकी पड़ी है चले आइए, किसको किसकी पड़ी है चले आइए, हुस्न खुद दे रहा है सदा आज तो, हुस्न खुद दे रहा है सदा आज तो, रात तारों भरी है चले आइए, रात तारों भरी है चले आइए, दूर जाने से कुछ फायदा ही नहीं, दूर जाने से कुछ फायदा ही नहीं, मुख्तसर जिंदगी है चले आइए, मुख्तसर जिंदगी है चले आइए, दूर जाने से कुछ फायदा ही नहीं, दूर जाने से कुछ फायदा ही नहीं, मुख्तसर जिंदगी है चले आइए, जिंदगी यूं ही अख्तर रहेगी रवा, जिंदगी यूं ही अख्तर रहेगी रवा, किसको फुर्सत मिली है चले आइए, किसको फुर्सत मिली है चले आइए।
0: जनाब हामिद अली अख्तर साहब जो अपने कलाम से नवाज रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर अर्ज कर दूं कि आज आकाशवाणी के मुशायरे में जो शोरा तशरीफ लाए हैं उनके इसमें गिरामी अली जनाब असलम बेताब साहब, अली जनाब खालिद अखलाक साहब, जनाब हामिद अली अख्तर साहब और ये खाकसार अमीर अमरोही।
3: सामईन, अभी आप मुशायरे से लुत्फ अंदोज हो रहे थे, निजामत फरमा रहे थे जनाब अमीर अमरोही। अब अपने दोस्त मोहम्मद अली कमाल को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मुशायरा, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम फिल्म संगीत। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, जहां हर धुन में छुपी होती है एक कहानी, हर गीत में बसी होती है किसी के दिल की आवाज। मैं हूं आपकी दोस्त रचना अग्निहोत्री और अगले 15 मिनट तक हम साथ चलेंगे यादों, प्यार और बॉलीवुड संगीत के सफर पर।

कभी कभी कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, वो किसी इंसान की याद बन जाते हैं, एक चेहरा, एक शाम, या शायद कोई अधूरी कहानी।

श्रोताओं, ये जो गीत हमने लिया था फिल्म थी पापा कहते हैं और आवाज उदित नारायण जी की थी। हर प्रेम कहानी पूरी नहीं होती, लेकिन कुछ अधूरी कहानियां ही सबसे खूबसूरत बन जाती हैं, है ना? वो पास होकर भी साथ नहीं, वो अपना होकर भी अपना नहीं, शायद

तो दोस्तों, आज की सुरों की शाम यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गीत और शायरियाँ आपके दिल को छू गई होंगे। मैं रचना अग्निहोत्री आपसे फिर मिलूंगी एक नई शाम, नई धुन और नई कहानियों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, अब समय है समाचार संध्या का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी एएसएमएल के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी एएसएमएल ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है।

0: इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्र पत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्र पत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
2: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
3: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितम्बर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और योग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी

ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा बागमारी को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब के 9:17 हो चुके हैं और अब उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात का आगाज़ होता है। आप हमारी नशरियात समाप्त कर रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के ज़रिए और DD फ्रीडिश पर। पेश है आज की इस तीसरी मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों का खुलासा। रात 9:20 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी गज़लों के प्रोग्राम के तहत जगजीत सिंह की आवाज़ में गज़लें। रात 9:45 पर खबरें नशर होंगी और रात 9:55 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम हेल्टिप्स के तहत सांस की बीमारियों के हवाले से कुछ ज़रूरी बातें। रात 10 आप सुनेंगे ड्रामा जेब कतरा, इसको तहरीर किया है जो है सादत हसन मंटो के अफसाने पर मबनी और इसकी पेशकश है अनवार खान की। रात 10:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामिल इरशाद। रात 11 इसी प्रोग्राम के दौरान रात 11 खबरें बरसग़ीर से नशर होंगी और 11:30 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम सुर्खियों में। रात 11:45 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम बस में मौसीकी के तहत PD सप्तऋषि की आवाज़ में राग पुरिया कल्याण में ख्याल। रात 12 आलमी खबरें नशर होंगी और 12:10 पर आप सुनेंगे इंस्ट्रूमेंटल मौसीकी के प्रोग्राम के तहत उस्ताद अहमद खान ठिरकुआ का तबला पर बजाया हुआ 3 ताल। रात 12:30 पर आप सुनेंगे आखिर नशर प्रोग्राम के तहत फिल्मी नगमे और 12:50 पर खबरें नशर होंगी। रात 1 उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर होंगी।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम एक फनकार। आइए इस प्रोग्राम के तहत सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में मजरू सुल्तानपुरी और बशीर बद्र, सुदर्शन फ़ाखिर और निदा फाजली की लिखी हुई गज़लें।

0: सामीन, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक फ़नकार के तहत जगजीत सिंह की आवाज़ में, ज़फ़र गोरखपुरी, सुदर्शन फ़ाखिर, डॉक्टर बशीर बद्र और निदा फाजली की लिखी हुई गज़लें। इसी के साथ ये प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए अब सुनते हैं खबरें।
1: शगुफ्ता यास्मीन से खबरें सुनिए। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स भरोसेमंद और मुस्तकबिल के लिए तैयार सप्लाई निज़ाम कायम करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वजीर अजम ने 21वीं सदी में भारत को मौकों की सरजमीन करार दिया। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की कंपनी ASML ने भारत में सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर दस्तखत किए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक केस के बड़े मुलजिम पीवी कुलकर्णी और साथी मुलजिम मनीषा वाघमारे को 10 दिन के लिए सीबीआई तहवील में भेज दिया है। भारत ने दरियाए सिंध से मुतालिक काबी मुआहदे पर सालिसी अदालत के फैसले को गैर कानूनी करार देकर इसे मुस्तरद कर दिया है। सीबीएसई ने 9वीं और 10वीं क्लास के लिए 3 जबानों की पढ़ाई को लाजमी बना दिया है और गांधीनगर में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में खवातीन के 77 किलोग्राम जुमरे में भारत की संजना ने कांसे के 3 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स कई तरह के बहरान और कुदरती आफात के तनाजुर में आलमी चैलेंजों से निमटने की खातिर एक भरोसेमंद, शफाफ और मुस्तकबिल के लिए तैयार सप्लाई निज़ाम के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। जनाब मोदी ने 5 मुल्कों के अपने दौरे के तहत नीदरलैंड्स के शहर हेग में एक कम्युनिटी प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया मुख्तलिफ तरह के चैलेंजों का सामना करती रही है, जिसमें COVID-19 आलमी वबा, मौजूदा महाजाराई और तवानाई का बहरान शामिल हैं। वजीर आजम ने खबरदार किया कि इन चैलेंजों से अगर तेजी के साथ ना निपटा गया तो आलमी सतह पर तरक्की के जो फायदे हासिल हुए हैं वो हाथ से निकल जाएंगे और आबादी का बड़ा हिस्सा गुर्बत में चला जाएगा। इक्तिसादी निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए आलमी कोशिशों को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत और नीदरलैंड्स मजबूत सप्लाई निज़ाम कायम करने पर मुश्तरका तौर पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। जना मोदी ने भारत के बढ़ते हुए आलमी रोल पर भी जोर दिया और मुल्क को 21वीं सदी में मौकों की सरजमीन करार दिया, जहां टेक्नोलॉजी और इंसानी अकदार दोनों को अहम मकाम हासिल है। बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के शाह विलियम अलेक्जेंडर और मलका मैक्सिमा से मुलाकात की। जना मोदी नीदरलैंड्स के वजीर आजम रोब चेटन के साथ बाहमी बातचीत करने वाले हैं। उम्मीद है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस दौरे से भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान वसी तर ताल्लुकात उस्तवार होंगे। हाल ही में भारत और यूरोप के दरमियान आजाद तिजारत का समझौता भी हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान तैयार करने वाली कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर साजो सामान तैयार करने वाली अहम कंपनी ASML ने भारत में चिप तैयार करने के सिलसिले में इश्तराक का ऐलान किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड्स के दौरे के दौरान इस मुआहदे का ऐलान किया गया। ASML लिथोग्राफी इक्विपमेंट के जुमरे में इजारादारी रखती है, जो छोटे साइज के जदीद सेमीकंडक्टर की तैयारी में अहमियत का हामिल है। ये इश्तराक भारत और नीदरलैंड्स के दरमियान कलीदी शराकतदारी को मुस्तहकम करने की समत एक अहम कदम है, जिनमें सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी समेत अहम टेक्नोलॉजी शामिल हैं। ASML के सदर और CEO क्रिस्टोफे फुके ने कहा कि भारत के तेजी से वसत पा रहे सेमीकंडक्टर के शोबे से कई अहम मौके नुमाया हो रहे हैं और वह खत्ते में तवील मुद्दती शराकतदारी कायम करने के लिए पुरअज़्म हैं। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह अपने गुजरात

0: किलोग्राम का वजन उठाया और मजमूई तौर पर 220 किलोग्राम का वजन उठाकर कांसे के 3 तमगे हासिल किए। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स भरोसेमंद और मुस्तकबिल के लिए तैयार सप्लाई निज़ाम कायम करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने 21वीं सदी में भारत को मौकों की सरजमीन करार दिया। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की कंपनी ASML ने भारत में सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर दस्तखत किए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक केस के बड़े मुलजिम PV कुलकर्णी और साथी मुलजिम मनीषा वाघमारे को 10 दिन के लिए CBI तहवील में भेज दिया है। भारत ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुहदे पर सालिसी अदालत के फैसले को गैर कानूनी करार देकर मुस्तरद कर दिया है। और गांधीनगर में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में खवातीन के 77 किलोग्राम जुमरे में भारत की संजना ने कांसे के 3 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम हेल्थ टिप्स। आज इस प्रोग्राम के तहत हम सुनेंगे सांसों की बीमारियों के हवाले से कुछ ज़रूरी बातें।
2: सामिन, आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है सांस के मुतालिक बीमारियां, वजूहात, बचाव और इलाज। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में इस्तकबाल है आपका।
3: नमस्कार जी।
2: सांस से मुतालिक क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं?
3: सांस की जब हम बात करते हैं तो हम फेफड़ों की बात कर रहे हैं। अच्छा। और फेफड़े से अगर हम बीमारियां देखें तो हम उनको दो ब्रॉड भागों में डाल सकते हैं। एक तो इन्फेक्शन के कारण, एक जो हम कहते हैं एनवायरनमेंट या अपने लाइफस्टाइल के कारण।
2: जी।
3: तो अगर हम इन्फेक्शन के कारण कहें तो निमोनिया है, सांस की तकलीफ, जैसे बच्चों में निमोनिया हो जाता है, बुजुर्गों में निमोनिया हो जाता है, छाती की इन्फेक्शन है और TB की बीमारी है जो भी फेफड़ों में हो जाती है, जिससे बीमारी फैल भी सकती है। तो इन्फेक्शन एक हिस्सा है जो फेफड़ों में हो सकता है। दूसरा हिस्सा जो हम देखें, जिनको हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें दमे की शिकायत है, ब्रोंकाइटिस है, लंग कैंसर है, आजकल पोल्यूशन के कारण जो सांस में तकलीफ होती है, उसके कारण जो सांस की नाली में सोजिश हो जाती है, वो बीमारियाँ हैं। और कई और अनकॉमन बीमारियाँ जैसे फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं, जिसको हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ कहते हैं। ये सब नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ हैं और ये कुछ हद तक बढ़ रही हैं क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो रहा है और कुछ हमारी आदतें भी हमारी ठीक नहीं हैं, जैसे स्मोक करना, धूम्रपान करना। वो धुआं जब फेफड़े में जाता है तो उससे भी फेफड़े को नुकसान होता है और उससे भी फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं और फेफड़े की बीमारी हो जाती है।
2: अच्छा, आमतौर पर कहते हैं कि मेरा सांस बहुत फूल रहा है, तो क्या ये भी लंग्स की बीमारी के हवाले से या सांस की बीमारी के हवाले से?
3: तो सांस जो फूल रहा है उसके कारण ये हो सकता है कि आपके बॉडी में, आपके मसल में ऑक्सीजन कम मिल रही है। और इसके अगर हम देखें तो हम 3 ब्रॉड कारण कह सकते हैं। ज़्यादातर जो कारण होते हैं वो फेफड़े के कारण, अगर आपके फेफड़े कमज़ोर हैं तो फेफड़े जो हवा से ऑक्सीजन लेके खून में डालते हैं वो नहीं डाल पाते। लेकिन इसके अलावा अगर ऑक्सीजन खून में आ गया तो जो मसल तक पहुँचना है या जिससे सांस चढ़ सकता है वो ब्लड ने करना है, हार्ट ने करना है। अगर आपका हार्ट कमज़ोर है तो भी आपको सांस चढ़ने लगेगा। तो चलने पे लोग कहेंगे सांस चढ़ता है, छाती में दर्द होती है, जिसको हम अंजाइना कहते हैं।
2: जी जी।
3: वो हार्ट के कारण भी सांस चढ़ सकता है। और महिलाएं में कभी ये होता है कि खून की कमी है,
2: एनीमिया, जिसे
3: एनीमिया है, तो खून कम है तो जो खून से ऑक्सीजन जाता है, जो ब्लड सेल ले जाते हैं वो कम है। तो इसीलिए जब महिलाएं जिनमें खून कम है या कई लोगों को हीमोग्लोबिन जो कम होता है, जब वो तेज़ चलते हैं तो उनको भी सांस चढ़ने लगता है, क्योंकि उनके हार्ट ठीक है, फेफड़ा ठीक है, लेकिन जो खून की नालियां जो ऑक्सीजन मसल में लेके जाती हैं उसमें खून इतना है नहीं कि वो इतना ऑक्सीजन ले पाए और फिर उनको सांस चढ़ने लगता
2: है। डॉक्टर साहब, ये कैसे अंदाजा होगा कि ये जो प्रॉब्लम है, जो सांस फूलने वाली, दिल के हवाले से है या फेफड़ों के हवाले से?
3: तो इसका एक ये है कि अगर आपको कोई दिल की बीमारी है, जैसे हाइपरटेंशन है या और कोई है, तो आपका सांस जो है वो दिल के कारण हो सकता है। अगर कुछ और लक्षण है, जैसे मान लो किसी को सांस चढ़ रहा है
2: जी,
3: साथ में खांसी भी होती है या सांस चढ़ते समय छाती से आवाज़ आती है सांस की, वो ऐसे लक्षण है जो कहेंगे कि ये जो सांस चढ़ रहा है ये फेफड़े के कारण है।
2: तो सांस की जो बीमारियां हैं, जैसे आपने बताया कि सांस फूलना या और जो फेफड़ों के हवाले से बीमारी हैं, उनमें सबसे अहम बीमारी यानी कि जिसको आम तौर पर लोग जिसको कहते हैं कि साहब हमें ये प्रॉब्लम है, वो कौन सी है?
3: तो अगर हम इन्फेक्शन में देखें तो दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो TB है और निमोनिया है। और बच्चों में
2: क्यूरेबल तो हैं आजकल,
3: ये दोनों क्यूरेबल हैं और इसलिए इसमें जो हम कहते हैं कि ठीक टाइम पर डायग्नोज हो जाए और दवाई पूरी ली जाए तो पूरा क्यूरेबल है। टीबी के इलाज थोड़ा लंबा चलता है लेकिन पूरा से ठीक हो जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये समझने की कि इलाज जल्दी और ठीक करें।

0: तो फेफड़े खराब नहीं होंगे। कह रहे हो फेफड़े कमजोर हैं, तो अगर इनहेलर ले रहे हैं या कोई नेबुलाइजर ले रहे हैं वो ट्राई कर सकते हैं। दूसरा मैं ये कहूँगा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपके सांस के कारण आपके फेफड़े की कैपेसिटी कम होती है, जो सांस के मसल हैं जो सांस हवा अंदर बाहर लेते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो अगर आप उनको कहें कि एक्सरसाइज करें, योगा भी कर सकते हैं, जिससे फेफड़े फूलें और फेफड़े की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो उससे भी फर्क पड़ेगा।
1: अच्छा डॉक्टर, एक चीज़ ये है कि आमतौर पर जैसे मौसम बदलता है तो बदलते मौसम में जो सांस की बीमारियाँ वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं।
0: बिल्कुल,
1: क्या एहतियात लेनी चाहिए?
0: सांस ठीक रखने के लिए कुछ प्रिवेंशन मेजर जो है बहुत ज़रूरी है
1: जी।
0: थोड़ा एक्सरसाइज करें, गलत आदतों से बचें, धूम्रपान जो है वो ना करें, सिगरेट या बीड़ी पीने से फेफड़े खराब होते हैं और इसलिए इसको रोकना चाहिए। एयर पोल्यूशन हो तो जो बुजुर्ग और बच्चे हैं वो बाहर ना जाएं, क्योंकि उनके फिर फेफड़ों पे असर पड़ने से तकलीफ हो सकती है। जो महिलाएं अंदर खाना बना रही हैं, हम ये कहेंगे कि या तो ऐसा चूल्हा यूज़ करें जिससे धूल धुआं जो है वो बाहर जाए, स्मोकलेस चूल्हा जो कहते हैं। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो खाने बनाने का जो किचन है वो खुला रहे, क्रॉस वेंटिलेशन हो या उसमें एग्जॉस्ट फैन हो जिससे धूल धुआं ना रहे। वो महिलाओं को भी फायदा होगा और जो बच्चे वहाँ पे अंदर खेल रहे हैं उसको भी, उनको भी फायदा होगा। तो एक्सपोजर अवॉइड करें, हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करें, एक्सरसाइज रेगुलरली करें और धूम्रपान बिल्कुल ना करें।
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलेरिया आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे सामीन को बहुत अहम मालूमात दी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: मेरी तरफ से भी शुक्रिया।
2: सामीन अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम हेल्थ टिप्स, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए अब सुनते हैं, रात के 10 बज चुके हैं, प्रोग्राम के तहत उनवान जेब कतरा के हवाले से सादत हसन मंटो का लिखा हुआ अफसाना, इसकी ड्रामाई पेशकश की है अनवार खान ने। आइए सुनते हैं ये ड्रामा जेब कतरा।

0: अरे भाई ऊपर क्यों चढ़े आते हो, सुझाई नहीं देता
1: क्या? कुछ होश की दवा करो।
2: अरे भाई क्यों धक्के देते हो, कुछ इस औरत का तो लिहाज करो, बेचारी पिस गई।
3: थोड़ी जगह दो,
0: मैं उठाई देता हूँ,
1: ये लीजिए।
4: अब ये क्या हो रहा है, रास्ता साफ क्यों नहीं होता?
1: कहते हैं आगे एक छकड़ा उलट गया है।
2: इतने छोटे बाजारों में छकड़े आखिर चलने क्यों दिए जाते हैं?
5: या तो बाजार बड़े और चौड़े किए जाएं, या इन छकड़ों का साइज छोटा किया जाए।

0: बाजार और चकड़े बड़े किए जाएं या छोटे, हमारी गाड़ी तो चलती रहेगी। क्यों गिरधारी?
1: ठीक है, पर दाद इस बात की दो कि किस सफाई से उस लौंडिया का बटवा नीचे गिराया
0: और बंदे ने किस फुर्ती से उसका पेट चाक किया।
1: भाई हा? क्या कहने हैं तुम्हारे। अब जरा इन सब्जों की बहार दिखा दो।
0: बड़े बेसब्रे हो।
1: और अगर सब्जे न हुए
2: तो तुम काशी जेब कतरे नहीं किसी दफ्तर के मुंशी हो।
0: हमें ऐसा कभी हो।

0: बड़े जालिम हो, तुम उसे तलाश नहीं कर सकते, तुम उसे तलाश नहीं कर सकते। जब उसने बटवा खाली पाया होगा तो उसकी क्या हालत होगी? तुमने एक बेकस औरत को बहुत दुख पहुंचाया है। तुम राक्षस हो।
1: लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे क्या मालूम था कि

0: ने तुमने मुझे क्यों बचाया, मुझे डूबने दिया होता।
1: शुक्र है तुम बच गई, मगर मगर तुमने पानी में छलांग क्यों लगाई? तुम वही औरत हो। मैंने तुम्हें पा लिया, मैंने आखिर तुम्हें पा लिया। ये लो अपने रुपए, मैं तो तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा हूं। अगर तुम मुझे ना मिलती तो बहुत मुमकिन है कि मैंने भी तुम्हारी तरह खुदकुशी का इरादा कर लिया होता। तुम अब ठीक हो ना? चलो तुम्हें किसी डॉक्टर के पास ले चलो।
0: तुम कौन हो?
1: मैं जेब कतरा हूं। तुम्हारे बटुए से ये 200 के नोट मैंने ही उड़ा दिए थे।
0: तुमने मेरे बटुए से नोट निकाले थे, पर अब तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझे ढूंढते रहे,

0: सुनते रहे। तुमने ये हाथ आया हुआ माल मुझे क्यों वापस देना चाहा?
1: नोटों के साथ एक खत भी तो था जो तुमने
0: तो वो खत तुमने पढ़ लिया। तुम भी मेरे राज से वाकिफ हो गए। अब एक के बजाय दो हो गए। मैं मर क्यों ना गई?
1: मुझे तुम्हारे राज से कोई वास्ता नहीं। खत पढ़कर मुझे अफसोस हुआ कि मैंने एक ऐसी औरत के रुपए निकाले हैं जो बेहद दुखी है। तुमने ये 200 रुपए किस मुश्किल से जमा किए होंगे? मैं अब तुमसे क्या कहूं कि मुझे कितनी नदामत है। मुझे बहुत दुख हुआ है। मैं शर्मसार हूं। लेकिन अब मेरा बोझ कुछ हल्का हो गया है कि मैंने तुम्हें पा लिया है, बचा लिया।
0: नहीं, मैं समझती हूं कि जो कुछ मैंने किया ठीक था। मुझे मर जाना चाहिए। जी कर भी तो मैं मर ही रहती हूँ, फिर और जीने से क्या फायदा? मैं डरती हूँ कि
1: किससे?
0: मैं डरती हूँ कि तुम भी मेरे जीवन पर काले भूत की तरह छा जाओगे। तुम भी मेरे राज का सौदा करना शुरू कर दोगे। तुम जेब कतरना छोड़ दोगे, मेरा दिल कतरना शुरू कर दोगे। तुम जानते हो खत पढ़ने के बाद तुम क्या कुछ नहीं जानते।
1: देवी, मैं जेब कतरा जरूर हूं, लेकिन इंसान भी हूं। मुझे तुमसे पूरी पूरी हमदर्दी है। मुझे माफ कर दो, तुम बड़ी बहादुर औरत हो।
0: लेकिन इस बात को कितने आदमी जानते हैं? किसे मालूम है कि गर्ल्स स्कूल की एक उस्तानी, एक कमजोर और नहीं औरत 4 बरस से एक राक्षस को अपना खून पिला रही है। इस जुर्म की पादाश में कि उसने मोहब्बत की और मां बन गई। मोहब्बत मिट गई लेकिन उसकी थकावट बाकी है। बच्ची मर गई मगर मानता अभी तक जिंदा है। ये दो लाशें जिनको वो अपने सीने से लगा है, कुछ दिन जीना चाहती थी लेकिन उसकी कीमत तलब की गई, इसलिए कि दुनिया व्यापार पर चलती है, यहां दुख मुफ्त नहीं मिलते। रोग लगाओ और उसके साथ दान दो, ये इस दुनिया का उसूल है। औरत की एक कमजोरी 4 मंजिला मकान के मुकाबले ज्यादा नफा बख्श है। ये अगर किसी व्यापारी मर्द के हाथ में आ जाए तो वो उसे माह बमा किराया वसूल करता रहता है। तुम जानते हो कि
1: मैं जानता हूं, लेकिन मैं पूछता हूं, तुमने अपनी जिंदगी को खामखा ये रोग क्यों लगा रखा है? तुम उससे डरती क्यों हो? तुमने किसी की चोरी नहीं की, तुमने डाका नहीं डाला, तुम्हें किस बात का डर है?
0: मैंने चोरी नहीं की, मैंने डाका नहीं डाला, जब भी तुम्हें डरती हो। तुम दूसरों की जेब काटते हो और नहीं डरते। मैं अपनी जेब कटवाती हूँ इसीलिए डरती हूँ।
1: तुम मुझे कोसे जा रही हो। परमात्मा के लिए अब जाने दो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं सब का सब अच्छा हूँ, एक सिर्फ मेरी उंगलियां बुरी हैं। मैं चाहता हूँ कि ये भी अच्छी बन जाए, मगर
0: तुमने कभी इनको अच्छा बनाने की कोशिश नहीं की। अगर तुम कोशिश करो तो सब कुछ हो सकता है। क्या तुम सचमुच अच्छा बनना चाहते हो?
1: हाँ, बशर्ते कि
0: मैं तुम्हें अच्छा बनाऊंगी। आज ही से मैं तुम्हें सुधारने का काम शुरू कर दूंगी, मगर तुम मुझसे वादा करो कि जो कुछ मैं कहूंगी तुम मान लोगे।
1: मैं वादा करता हूँ।

0: काशी
1: हा? कौन
0: ये तुम क्या कर रहे थे?
1: कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं।
0: मैं सब देख चुकी हूँ, पर मैं पूछती हूँ कि ये हरकत क्या थी?
1: मैंने क्या किया है? मैं सारा दिन इस कमरे में बैठा तुम्हारी दी हुई किताबें पढ़ता रहता हूँ। मैंने तो एक कदम बाहर नहीं निकाला, एक महीने से मैं कहीं बाहर नहीं गया। तुम्हारे सिवा किसी आदमी की शक्ल तक मैंने तो नहीं देखी। ये किताबें जो तुमने मुझे दी थी सब

0: ये तुम क्या ऊटपटांग बातें करते हो?
1: नहीं तो मैं दरअसल कुछ और ही सोच रहा था। मैं सोचता हूँ, मैंने कई मर्तबा सोचा है कि अब दुनिया में मेरी हैसियत एक फालतू आदमी की सी हो गई है। छकड़े में अगर पांचवां पहिया लगा दिया जाए तो मेरी हालत का अंदाजा किया जा सकता है। लेकिन नहीं, मैं अपने आप को कारामत बना सकता हूँ। ऐसा हो सकता है, तुम हो, यानी तुम मुझ पर इतनी मेहरबान हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। मेरा मतलब है कि कुछ नहीं, तुम कितनी अच्छी हो बिमला। मेरा जी चाहता है कि मैं तुम्हारी खिदमत करूं। खिदमत, खिदमत, हाँ। मेरा जी चाहता है कि तुम्हें खुश करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूं।
0: काशी, मुझे ऐसा महसूस होता है कि तुम कोई बात मुझसे छुपा रहे हो।
1: नहीं नहीं नहीं तो
0: देखो काशी, लड़ाई हो जाएगी। तुम झूठ बोल रहे हो। बोलो, सोच क्या रहे हो?
1: मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ, कबूल करोगी?
0: पहले मुझे तोहफा दिखाओ।
1: फाउंटेन पेन है, याद है तुमने उस रोज कहा था, मेरी मजलूमियत की ये इंतहा है कि मैं एक निकम्मा फाउंटेन पेन नहीं खरीद सकती, हालांकि दूसरों के पास अच्छे अच्छे कलम देखकर मेरा जी लल जाता है। मैं कल बाजार गया तो ये कलम तुम्हारे लिए।
0: दिखाओ तो।
1: हाँ, ये लो।
0: बहुत अच्छा है, बढ़िया कलम है।
1: तुम्हें पसंद आ गया?
0: क्यों नहीं, लेकिन लेकिन तुमने ये लिया कहाँ से?
1: लिया कहाँ से?
0: बोलो, कहाँ से लिया?
1: एक राह चलते आदमी की जेब से।
0: काशी, तुम काशी, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? जो चोरी की ये चीज तुमने मुझे तोहफे के तौर पर दी है, मैंने तुमसे क्या पहले ही नहीं कहा था कि तुम कभी दुरुस्त नहीं हो सकते? चोरी चकारी तुम्हारे रगो रेशो में सरायत कर चुकी है। तुम बहुत ही जलील आदमी हो।
1: मगर
0: मैं कुछ सुनने को तैयार नहीं। तुम बड़े ही जलील आदमी हो। क्या तुम ये समझ रहे थे कि चोरी का ये माल लेकर मैं खुश हो जाऊं?
1: मगर बिमला, तुम मेरी बात तो सुन लो, मैं कसूरवार हूँ, लेकिन
0: लेकिन लेकिन क्या?
1: तुम जरा सोचो तो, यानी जो कुछ मेरे दिल में है उसका तो खोज लगा लो। मैं ये कलम इसलिए नहीं उठा कर लाया था कि तुम उसे लेकर खुश हो जाओगी। मैं खुद खुश होना चाहता था। मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारे लिए कुछ करूं। उस रोज जब तुमने कहा मेरी मजलूमियत की इंतहा है कि मैं एक निकम्मा फाउंटेन पेन नहीं खरीद सकती, तो यकीन मानो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं आज तक कभी नहीं रोया था, मगर उस रोज मैं रो दिया। मैं अपने दिल का हाल कैसे बयान करूं? मैं जानता हूं कि मैंने गलती की है, मैंने तुम्हें फिर नाउम्मीद किया है, मगर मैं क्या करूं? राह चलते हुए आदमी की जेब में जब मैंने यह कलम देखा तो अपने आप मेरी उंगलियों में हरकत पैदा हुई और कलम मेरे पास था। मुझे बहुत अफसोस है, मैं सख्त नादिम हूं।
0: तुम कभी दुरुस्त नहीं हो सकते। जेब कतरने की आदत पककर तुम्हारी तबीयत बन गई है।
1: तुम ठीक कहती हो।
0: मुझे अफसोस इस बात का है कि बावजूद पूरी कोशिश के मैं तुम्हें दुरुस्त न कर सकी। तुम बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हो।
1: तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं?
0: जाओ, जो जी में आए करो, लोगों की जेबें काटो, चोरी करो, डाके डालो। तुम्हें इस बात की क्या खबर है कि मैं?
1: नहीं, परमात्मा के लिए तुम रो नहीं। मैं अच्छा हो जाऊंगा, मैं अच्छा बनने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। मैं जाता हूं, अपने आप को दुरुस्त कर लूं, फिर तुम्हें मुंह दिखाऊंगा। अच्छा, तो फिर मिलेंगे अगर।

0: मैं अब इस मामले पर ज्यादा गुफ्तगू करना नहीं चाहता। बड़ी सीधी सी बात है, मैं यकमुश्त तुमसे कुछ रुपया लेकर तुम्हारे खत तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ।
1: मेरा रस आप मेरे ही पास बेच रहे हैं?
0: मुझे ज्यादा छानबीन पसंद नहीं। तुम्हें इन खतों की जरूरत है और मुझे यकमुश्त कुछ रुपयों की। क्या तुम्हें यह सौदा कबूल है? खत हासिल करने के बाद तुम्हें किसी बात का खटका नहीं रहेगा। ये बात खास तौर पर काबिले गौर है।
1: मैं अच्छी तरह गौर कर चुकी हूँ, पर मैं सोचती हूँ कि इसमें भी आपकी कोई अय्यारी छुपी हुई।
0: तुम्हारे शुबहात बिल्कुल गलत हैं। मैं एक सौदा करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, वरना फिर।
1: कितने में आप फैसला करना चाहते हैं?
0: सिर्फ 500 रुपयों में।
1: ये तो बहुत हुए।
0: इससे कम में सौदा नहीं हो सकता।
1: सारे खत आपके पास इस वक्त हैं?
0: नहीं, जब सौदा पक्का हो जाएगा खत मैं ले आऊंगा।
1: तो आप ऐसा कीजिए, क्या आप बोरी बंदर के स्टेशन पर मिल सकते हैं? यानी क्या आप मेरा कल बोरी बंदर के स्टेशन पर 1 और 2 बजे के दरमियान इंतजार कर सकते हैं?
0: ये सब हो जाएगा, मगर सवाल ये है कि
1: आपका सौदा मुझे मंजूर है। मैं कल रुपए ले आऊंगी। आप सारे खत ले आइएगा, देखिए बाकी कोई ना रखिएगा। और मैं 1 और 2 बजे के दरमियान बोरी बंदर के स्टेशन पर पहुंच जाऊंगी। आप खत डालने वाले भक्के के पास खड़े रहिएगा, मैं सीधी वहीं आ जाऊंगी। तो ये तय हो गया ना?
0: हाँ, ये तय है। मैं वहां मुकर्रा वक्त पर पहुंच जाऊंगा। तो अब मैं चलता हूँ, कल शायद हमारी आखिरी मुलाकात होगी।
1: परमात्मा करे कि ऐसा ही हो। तो आप 1 और 2 बजे के दरमियान वहां पहुंच जाएंगे ना?
0: हाँ, जरूर पहुंचूंगा, जरूर।

0: और मुझे काशी को तलाश करना है। वो मिल गया तो सब ठीक हो जाएगा। काशी कहाँ है?
1: काशी 3-4 रोज से मुलाकात नहीं हुई, घर होगा।
0: आपको पता है काशी कहाँ है?
2: जी नहीं।
0: काशी कहाँ है?
2: अस्पताल में है।
0: अस्पताल में

0: काशी।
1: बिमला, तुम यहाँ कैसे चली आई?
0: तुम मुझे ये बताओ कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है?
1: बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। मुझे हुआ क्या था ऐसे?
0: तुम बिल्कुल ठीक हो ना?
1: हाँ हाँ,
0: मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। तुम चल फिर सकते हो ना? तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत मिल जाएगी ना?
1: हाँ, क्यों नहीं, कहो तो अभी तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। अच्छा बताओ क्या काम है?
0: मैं बताती हूँ। देखो, कल 1 और 2 बजे के दरमियान बोरी बंदर स्टेशन पर एक आदमी आएगा। मैं तुम्हें उसका हुलिया बता दूंगी।
1: बहुत अच्छा।
0: उस आदमी की जेब में खतों का एक बुलंदा होगा, तुम उसे उड़ा लेना। वो खत मुझे मिल जाए तो तुम उड़ा लोगे ना ये खत मेरे लिए। तुम चुप क्यों हो गए? बोलो, बोलते क्यों नहीं?
1: बिमला, मैं अच्छा बन चुका हूं। मैं अपने दोनों हाथों की उंगलियां कर पा चुका हूं। ये देखो
0: क्या?

सामीन, अभी आप सुन रहे थे ड्रामा जेब कतरा, जिसे सादत हसन मंटो के अफसाने पर ड्रामाई शक्ल में पेश किया गया था, जिसकी पेशकश थी अनवार खान की। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब के 10:30 हो चुके हैं। पेश है आपका पसंदीदा फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामील इरशाद। सामिन की खिदमत में मेज़बान मोहम्मद शाहरुख का आदाब। आप अपनी फरमाइशें हमें लिखकर भेज सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस के ज़रिए। हमारा ईमेल आईडी है urdu service esd@gmail.com। जल्दी जल्दी अपनी फरमाइशें हम तक आप पहुंचाएं और फिर हम ये सिलसिला जारी करते हुए इस प्रोग्राम की पहली पेशकश आप सबकी नज़र करते हैं। लीजिए सुनिए पहली पेशकश।

सामी ने भी आप सुन रही थी डॉन फिल्म से, नगमा किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में, जिसकी तर्ज बनाई थी शंकर जय किशन ने, बोल थे अनजान के। और सुनना चाहा था हरेण पांड्या, नरेण पांड्या और वीरेण पांड्या ने गुवाहाटी आसाम से, और सुनने के ख्वाहिशमंद थे मोहम्मद यूनिस खत्री, सादिक खत्री, अय्यूब खत्री और यूसुफ खत्री, छिपा कलोनी खंडवा से। और सुनना चाहा था चंदेश जो गौहर, वंदना गौहर और जयपाल यादव ने, सागर मध्य प्रदेश से। और सुनने के ख्वाहिशमंद थे टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा। सुभाष योगी, राजू मिगलानी और बब्बू डब्बू, सुनने के ख्वाहिशमंद थे कलोनी हांसी से। और सुनना चाहा था मोहनदास रविंद्र, अनुराग मोहन और आशा देवी ने, बबलू ठेकेदार, शेख शागीर, शेख वजीर, सुनने के ख्वाहिशमंद थे मोटाला बाजार से। और जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी और समीर मुलानी, सुनने के ख्वाहिशमंद थे पंढरपुर तालुका ने, माफ़ कीजिए, कल्याण जी आनंद जी ने इस नगमे की तर्ज बनाई थी। और सुनना चाहा था संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, संप्रीत पंचोलिया ने, घंटाघर खंडवा से। रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा टैगोर गार्डन नई दिल्ली से सुनने के ख्वाहिशमंद थे। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, जिसको सुनना चाहा है रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर और धनंजय कटनकर ने। और खंडागर चौक घंटा खंडवा से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं विजय मोहबिया और राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश और राशि राजेश, संभाजी नगर से सुनना चाहते हैं। और दिलीप रामेकर, हर्षा रामेकर, अक्षय रामेकर, राधगांव कैम अमरावती से सुनना चाहते हैं। और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। और सुनना चाहते हैं संबल से छोटे अंसारी, वेदमिदा अली का मिद्दा सुनना चाहते हैं। हनुमानगढ़ राजस्थान से दिलीप कुमार सोनी, कमल किशोर शाह बिहार से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। और शब्बीर भनट्टी, आसिफ इकबाल, मोहम्मद रुकनुद्दीन मंठाल, गुलबर्गा कर्नाटक से सुनना चाहते हैं। कल्पना मदन झा, मानव मयंक सुनने के ख्वाहिशमंद हैं गुजरात वापी से। और राधेश्याम शर्मा, इंद्र शर्मा, सार्थक शर्मा सिरसा से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। नरेश मल्होत्रा, नीटू कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, खेल बाजार पानीपत से सुनना चाहते हैं। जफर मौजम शेख, फलक तबस्सुम शेख, बेबी अलिजबा, रघुवीर नगर नई दिल्ली से सुनना चाहते हैं। शास्त्री नगर, बीर सलते, किशन सबकाल, आज सबकाल, विशाल सबकाल सुनना चाहते हैं। और तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, रहीम शेख और राबिया शेख सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। सुनना चाहते हैं प्रभुदास कोड़ेजा, अंसा कोड़ेजा राजकोट से। और नवाज़ शेख, इमरान नाज़, मास्टर खिल्लू परवेज़, गजनवारा उत्तर प्रदेश से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। विजय सुरलकर, उत्मा सुरलकर सुनना चाहते हैं मोटाला महाराष्ट्र से। और राधेश्याम शर्मा सुनने के ख्वाहिशमंद हैं।

तनुजा जोशी और ध्रुवी जोशी मध्य प्रदेश से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं और सुनना चाहते हैं अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश सनी भावसार विराम गाम गुजरात से, नरोत्तम गौड़, हिमांशु गौड़, यश गौड़ सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, जगह का नाम शेख ज़ियाउर्रहमान, शेख अताउर्रहमान, शेख अयूर्रहमान मुरादाबाद से सुनना चाहते हैं और राजनगर कांति निकेतन से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, ठाकुर और रुद्र प्रताप गुप्ता सुनना चाहते हैं, सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हिरामन शिंदे अमरावती से और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं वैष्णवी हर्षल रामभाड़े, जानवी रामभाड़े और भारती प्रकाश रामभाड़े नागपुर से।

सामीन, अभी आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज़ में ये नगमा जाल फिल्म से, जिसकी तर्ज बनाई थी सचिन देव बर्मन ने और बोल थे साहिल लुधियानवी के। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश आशा भोसले की आवाज़ में, जिसको सुना चाय सब्जी मंडी बुल्दाना से शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन और मुज्जू बाबा ने। मंगलवेदा नर्मदा पार्क सुनना चाहते हैं मास्टर नीम पटेल, मुजाहिद पटेल और जालंधर से रोशद जहां, मन्नत जहां, इशरत जहां सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। और सुनना चाहते हैं शालिनी यादव, कामेश यादव और भारती यादव, खंडवा से राधेश्याम यादव के साथ। और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं तारानगर वड़वा से भारती कुशवा और मनीष कुशवा। शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज कालका से सुनना चाहते हैं। और सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध निखिल कांगड़ा रोहतक से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। मोहम्मद सईद अब्बासी, शाहनवाज और राज अब्बासी, निगत परवीन अब्बास।

बुलंदशहर से सुनना चाहते हैं। अभिजीत गोहाणकर, सरिता गोहाणकर और अर्जुन गोहाणकर महाराष्ट्र से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं और सुनना चाहते हैं कर्नाटका से प्रकाश श्यामाला और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं राहुल बंसोड़, सम्यक बंसोड़, शरण बंसोड़, मुकेश बंसोड़ अकोला से। निम्नाबाद हरियाणा से जसप्रीत सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर सुनने के ख्वाहिशमंद हैं और सुनना चाहते हैं नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीउद्दीन सिद्दीकी और शाहनवाज अहमद सिद्दीकी छत्तीसगढ़ से। वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां और मोहम्मद अजहर खान सुनने के ख्वाहिशमंद हैं और सुनना चाहते हैं कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, वेदिका फूलमाली खंडवा से। और गजन येले, नवदीप येले, दीपक येले सिद्धार्थनगर दरियापुर बावली से सुनना चाहते हैं। राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा मलोट पंजाब से।

सामीन अभी आप सुन रहे थे वक्त फिल्म से ये नगमा आशा भोसले की आवाज़ में, जिसकी तर्ज बनाई थी रवि ने और बोल थे साहिर लुधियानवी के। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, जिसको सुना चाहे अस्तुपुरा ज़िला मऊ से मज़र अली अंसारी, रसिया बेगम अंसारी और मोहम्मद सादिक अंसारी ने, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा परवीन बिहार से। सुनना चाहते हैं अहमद भाई फुलवाले, इकबाल अहमद फुलवाले मुंबई से, और बेगूसराय से शमीम अहमद फुलवाले, इमरान अहमद फुलवाले, मनोज जेठवा, अर्षा जेठवा, बेबी आवीरा। सुनना चाहते हैं श्री रामपुर से, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं परमिला सिंह, अंतरा सिंह दिल्ली से, आसफ अली ख़ान, मुस्कान आसिफ और सारिक अली ख़ान बागपत से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर कुंडलवाड़ी से सुनना चाहते हैं, कमला देवी, सरला देवी और कलोनी खंडवा से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और सुनना चाहते हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन्निसा, मोहम्मद नसीब, लुबना और यश मंसूरी, सुनना चाहते हैं मंगीसापुर से, और सुनना चाहते हैं विठल जाधव, अनुसय जाधव, पवन राजे जाधव महाराष्ट्र से, खंडवा मध्य प्रदेश से शबनमा शबाना और रईसा सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और मिलवाकी यूएसए से वर्षा चावड़ा सुनना चाहते हैं, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चेपा, कपिल चेपा, पूजा परिहार सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, महेंद्र सरकटे, विजय सरकटे, मिलिंद सरकटे, वरुण जौलका से सुनना चाहते हैं, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं मनमोहन रजवत, मधुर रजवत, राशि रक्षित, शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश से।

हामिद, अभी आप सुन रहे थे फिल्म हाथी मेरे साथी से, ये नगमा किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में, जिसकी सुनना चाहा था बोधराज खोरवाल, कमला रानी और भानु प्रकाश ने उत्तम नगर नई दिल्ली से, और सुनने के ख्वाहिशमंद थे नरसिंह राजपूत, गौरव सिंह और शत्रु सिंह, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, और सुनना चाहा था मोहम्मद रुमानी, वहीद रुमानी, फसी डॉक्टर फसी, डॉक्टर ज़मीर और मोहम्मद फसी ने निज़ामाबाद तेलंगाना से, और सुनने के ख्वाहिशमंद थे बेगम इशरत अकरम, अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम रुबीना वसीम, नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से, और गिरडी झारखंड से मोहम्मद यासिन अंजन, साइमन आवाज़ सुनने के ख्वाहिशमंद थे, और सुनना चाहा था गोरैया जालंधर, संदीप कौर और राधिका कौर, लाल बाबू दीवाना, उमा राज ने जेल रोड नई दिल्ली से, और सुनने के ख्वाहिशमंद थे सुनील पाठक, कमल पाठक, गव्य मल्होत्रा, अनारकली बाजार जगराव से, के संजीव डाबेराव, सुनीता डाबेराव, कौस्तुभ डाबेराव अकोट से सुनने के ख्वाहिशमंद थे, और सुनना चाह था दबीरुल हसन, शबनम अनवार, भवन प्रकाश गौतम ने गंजोडवारा से, पेदवाई नगर सेठपुरा टाउन से सभी, अंजुमन खान, सबिया खान और सुनने के ख्वाहिशमंद थे जुबैर अली खान, सबिया खान ने, और फई मंसूरी, फातिमा मंसूरी सुनने के ख्वाहिशमंद थे अबादा उत्तर प्रदेश से, और सुनना चाहता बाबू सिंह दीवान, बलजिंदर कौर, रवनीत ने मुक्सर पंजाब से, पी एस नोहानकर, निर्मला नोहानकर, विशाल नोहानकर महाराष्ट्र सुनने के ख्वाहिशमंद थे, और अनिल कावचाले इंदौर से सुनने के ख्वाहिशमंद थे, रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर सुनना चाहते थे हरियाणा से, और मास्टर अलीम रजा सिद्दीकी, मुनव्वर हुसैन रजा अंसारी और मोहम्मद नईम रजा अंसारी सुनने के ख्वाहिशमंद थे गंजनवारा से। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश हेमंत कुमार और संध्या मुखर्जी की आवाज़ में, जिसको सुनना चाहे मोहम्मद करीम जख्मी, नजम गमनाज, बेबी फातिमा शेख ने रेलवे रोड गंजनवारा से, पंजाब राम टेके, शरदराम टेके, श्रव्य राम टेके यवतमाल से सुनना चाहते हैं, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं अनिल उषा बुरांदे, अनुश्री धनुश्री बुरांदे यवतमाल से, अमोल मानकर, शोभता मानकर महाराष्ट्र सुनना चाहते हैं, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं नासिर शेख, नादिर नासिर, साजिशाह, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से, और सुनना चाहते हैं शिवपुरम कॉलोनी खंडवा से कमला देवी, सरला देवी और विमला देवी, तखतपुर छत्तीसगढ़ से मिशलाल विश्वकर्मा, मीरादेव विश्वकर्मा, चेतन विश्वकर्मा सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और सुनना चाहते हैं मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, भिलाई छत्तीसगढ़ से, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा सबीहा, रिहान सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और कल्पना ताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, लक्ष्मण राव लोखंडे महाराष्ट्र से सुनना चाहते हैं, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं महेंद्र मोदी, ठाकुर साहब, रामगढ़ कैंट से, और जगमोहन सिंह प्रजापत, अर्जुन भारती और भुवनेश्वर बागपत सुनने के ख्वाहिश बागपत से सुनना चाहते हैं, अनिल मोहन, उषा मोहन डांडा से सुनना चाहते हैं, और मोहम्मद इंतज़ार, मोहम्मद जावेद सहारनपुर से सुनना चाहते हैं, निसार सलमानी, धनोरी तेलीवाला से सुनना चाहते हैं नौशाद सलमानी के साथ, और

मैंने भी आप सुन रहे थे सज़ा फिल्म से ये नगमा, हेमंत कुमार और संध्या मुखर्जी की आवाज़ में, जिसकी तर्ज बनाई थी सचिन देवबर्मन ने और बोल थे राजेंद्र किशन के। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश महेंद्र कपूर की आवाज़ में, जिसको सुना चाह है राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, वंदना कुमार और विट्टू कुमार ने, और सुनने के ख्वाहिशमंद ने आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी जोशी खंडवा से, और बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, चैतन्य मस्किन और विनता मस्किन। सुनना चाहते हैं मोइन अंसारी और तस्लीम अंसारी, डीजे प्रधान शारुन नूर अंसारी बरेली से सुनना चाहते हैं, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं ज़ुबैर अली खान, अंजुमन खान किदवाई नगर सिरपुरा टाउन से, उत्तम नगर दिल्ली से भानु प्रकाश, कमला रानी, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं परवीन सोनी, कलावती सोनी गांधीग्राम से, और कांजा बंदरकन से जगदीश जोरी सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और सुनना चाहते हैं काजल शर्मा, मीरा शर्मा बिहार से।

आमीन। अभी आप सुन रहे थे ये नगमा हमराज फिल्म से महेंद्र कपूर की आवाज़ में। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज़ में, जिसको सुनना चाहे उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत और किशुताशु ने पाकुर झारखंड से, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, निहारिका वंश बत्ता, और सुनना चाहते हैं बावापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, और फरुखाबाद से सुनना चाहते हैं सुरेश चौरसिया और सरोज चौरसिया, और सुनना चाहते हैं डॉक्टर सोनम, डॉक्टर अदीबा, चमन पारकर नई दिल्ली से, और जालंधर से मदीप जाटव, संजय जाटव सुनना चाहते हैं, अमर चक्रवर्ती, दुर्गा चक्रवर्ती, प्रमोद चक्रवर्ती अहमदाबाद से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और सुनना चाहते हैं ज़िला सच शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबात हुजरे, और सुरेंद्र संधू, सनीता संधू, और सुनना चाहते हैं प्रतीक्षा रितीश संधू, अनीता संधू के साथ कुलम रोड, हरगोविंद नगर, नवाज शहर से, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं राकेश पटेल, परमिला पटेल राजकोट से, जालंधर से हेमा पाल, शैलेश पाल सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। सुनना चाहते हैं निशात बाबी, मंतिक गोट कटरिया कच्छ से, और कबीर राधानी गोट चलाला से, काठिया सुलेमान खैरानी, इकबाल दाल और खलील दाल राजकोट से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं नूर मोहम्मद लखानी, जुबैदा लखानी और विहान लखानी। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं मधुबनी बिहार से मोहम्मद साबिर परवाना, साजिद अली और रुखसाना खातून, पूजा वर्मा, दीप्ति वर्मा, प्रभा वर्मा रायगढ़ से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और चन्नीसर गोट से अमर रमेश कुमार खत्री, मास्टर कृष्ण लाल खत्री सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। सुनना चाहते हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा नई दिल्ली से, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं वलील अंसारी, आसमंद अंसारी, टुमराव बिहार से।

0: अमीन, अभी आप सुन रहे थे ये नगमा आवारा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में, जिसकी तर्ज बनाई थी शंकर जयकिशन ने, और बोल थे हसरत जयपुरी के, और ख्वाहिश थी अकोला महाराष्ट्र से रमेश कामले, गणेश और दिव्यानी कामले की। इसी के साथ ये प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार। आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा, भारत नीदरलैंड संबंधों में नया अध्याय पर चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक सज्जनहार, जो कि पूर्व राजनयिक हैं। डॉक्टर अशोक, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत धन्यवाद निखिल जी।
2: अशोक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नीदरलैंड्स में हैं और बहुत ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड्स में क्या कहा।
4: साथियों, आज का भारत एक अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आपने हाल में देखा होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी और सफल AI समिट भारत ने आयोजित की। उससे पहले G20 की सफल समिट भी भारत ने आयोजित की थी, और ये कोई वन टाइम इवेंट नहीं था। ये आज के भारत का मिजाज बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम भारत ने चलाया। दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम में से एक भारत ने चलाया। जिस स्केल पर भारत डिजिटलाइजेशन कर रहा है वो अभूतपूर्व है। दुनिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भारत चला रहा है। और हाँ, चांद पर भी भारत वहां पहुंचा जहां पहले कोई नहीं पहुंच पाया था।
2: ऐसे समय में जब तमाम हम चीजें देख रहे हैं, वर्ल्ड में कई सारी चीजें नजर आ रही हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है कितना महत्वपूर्ण है और इसके मायने क्या हैं?
3: विश्व में बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा जो ये वाला जो दशक है शायद ये आपदा का दशक माना जाएगा, डेकेड ऑफ क्राइसिस माना जाएगा, क्योंकि इतने ज्यादा यहाँ पर आपदाएं आई हैं। एक तो पहले कोविड आया, उसके बाद युद्ध आया, और अभी हम देख रहे हैं जो एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर क्या पूरे विश्व में बहुत इसमें तंगी आ रही है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री की 5 देशों की ये यात्रा है, 15 मई से 20 मई तक ये हो रही है। कल प्रधानमंत्री यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में थे, अबू धाबी में थे, वहां पर उनके राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। केवल 2.5 घंटे का वहां पर उनका पड़ाव था, परंतु बहुत ही जिसे कहा जाए ठोस बात हुई और अपने संबंधों को बहुत तेजी से आगे लेकर जाया गया। और 4 देश जो है वो यूरोप के देश है। नीदरलैंड्स पहला पड़ाव है जहां पर कि वो आज है, और कल यहां से स्वीडन में जाएंगे, फिर स्वीडन के बाद 2 दिन वहां पर रुककर गोटेनबर्ग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग को एड्रेस करेंगे, और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टसन जो कि मोदरातना पार्टी से हैं उनके साथ उनकी बातचीत होगी। उसके बाद वो नॉर्वे जाएंगे ओस्लो में, जहां पर कि उनकी बातचीत होगी नॉर्वे के प्रधानमंत्री जॉन स्टोर के साथ, और वहां पर भी जैसे नीदरलैंड्स में उनकी मुलाकात हुई है अभी वहां के राजा और रानी के साथ, वहां नॉर्वे में भी वहां भी उनके किंग और क्वीन के साथ उनकी मुलाकात होगी। वहां पर नॉर्डिक समिट भी वहां पर ऑर्गेनाइज करेंगे, और उसके बाद आखिरी पड़ाव होगा उनका इटली में 19 और 20 तारीख को। और सभी जगह जहां जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी अपने द्विपक्षीय संबंधों को तो उसमें और ऊर्जा मिलेगी, परंतु मेरे विचार से एक संदेश पूरे विश्व को भी जाएगा, जो भारत जो बदलता हुआ परिपेक्ष है उसमें बहुत ही एक्टिव है और अपने हितों को आगे ले जाने के लिए बहुत तेजी, बहुत ऊर्जा और बहुत सक्षमता से काम कर रहा है।
2: अशोक जी, आज प्रधानमंत्री ने बोला है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। एक बड़ा स्टेटमेंट है उनका ये। आपको क्या लगता है कि कोविड

0: महामारी और जो जारी संघर्ष है, ऊर्जा संकट जैसी चुनौतियां हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है?
1: देखिए, बहुत ऐसे विषय हैं जिनमें कि हम नीदरलैंड के साथ अपने संबंधों को, सहयोग को बढ़ाते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो। जैसे हमारे सेक्रेटरी वेस्ट ने कल जब उन्होंने इसके ऊपर बातचीत की, जो प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा है उसको फोकस कहाँ पर रहेगा, तो उन्होंने कहा 3 T's पर रहेगा, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टैलेंट, क्योंकि हमारा टैलेंट वहां पर हर यूरोप के देश में जाता है। दूसरी बात जो प्रधानमंत्री मोदी ने यहां से जाते हुए कही, उन्होंने कहा ये जो सारा उनकी यात्रा हो रही है 4 देशों में, यूरोप के देशों में, वो इंडिया ईयू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जो कि बिल्कुल ही एक ऐतिहासिक सहयोग जो अग्रीमेंट है, वो इस साल के पहले 26 जनवरी को उसको पूरा किया गया। आपके सभी सुनने वालों को ये मालूम होगा, बातचीत की शुरुआत, नेगोशिएशंस की शुरुआत 2007 में हुई थी, तो मतलब 19 साल के बाद इसको हम तोड़ तक पहुंचा पाए हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्व में जो बदलाव हो रहा है, सबको चाहिए, और यही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में भी कहा, जो हमको सप्लाई चेन ऐसी चाहिए जो कि रिलायबल हों, जो कि स्टेबल हों, जो कि ट्रांसपेरेंट हों। और दोनों ये बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, भारत की अर्थव्यवस्था $4 trillion से ऊपर है, यूरोपियन यूनियन के सभी देशों को अगर देखा जाए तो उनकी पूरी अर्थव्यवस्था करीब $20 trillion के आसपास है, तीसरी सबसे विश्व में बड़ी अर्थव्यवस्था है। और जो इनका सहयोग होगा तो इन देशों के लिए बेहतर तो होगा, परंतु पूरे विश्व में व्यापार को स्टेबिलाईज करने में इसका बहुत ही बड़ा योगदान होगा।
0: अशोक जी, अभी आपने 3 T's का जिक्र किया, और यूरोप की जब हम बात करते हैं तो लगातार बदलते हुए व्यापार नियम देखने को मिलते हैं, कार्बन टैक्स, सप्लाई चेन की बात होती है, जलवायु परिवर्तन, जल प्रबंधन, और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की जो भू राजनीतिक चुनौतियां हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी भी चर्चा में एक एजेंडा के केंद्र में रहती हैं। तो भारत और नीदरलैंड्स अपने साझेदारी को ऐसे में किन रणनीतिक स्तर तक ले जा सकते हैं?
1: इंडिया ईयू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है, ये उसके ऊपर अभी बातचीत चल रही है, परंतु हमको ये भी देखना है, क्योंकि अगर पर्यावरण की रक्षा करनी है तो हमारे अपने हित में है। और आपने देखा होगा, जो चाहे वो SDG 2030 के हो, या फिर हमने अपना जो एक कमिटमेंट दिया है कार्बन फ्री, कार्बन न्यूट्रल अपनी इकोनॉमी को बनाएंगे बाय 2070, और हमने बहुत सारे ऐसे मापदंड किए हैं जो कैसे हम ग्रीन एनर्जी 2030 तक हम कैसे अपने 45% एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को हम ग्रीन एनर्जी के द्वारा करेंगे। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की थी, आपको याद होगा 2015 में जब कॉप पेरिस में हुआ था, तो वो एक क्षेत्र है जिसमें हम आगे चल रहे हैं। दूसरा, टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है, ग्रीन एनर्जी का क्षेत्र है, और जो इंडो पैसिफिक है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने अपना एक पोजीशन दिया है इंडो पैसिफिक के ऊपर, जिसमें वो कहते हैं जो हमको फ्री, ओपन, स्टेबल, प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक की मांग है उनकी। नीदरलैंड्स तो अपनी गाइडलाइंस उन्होंने दी है, इंडिपेंडेंटली दी है 2020 में, और भारत का जो स्टांस है वो बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, और इसीलिए उसमें हम उनके साथ सहयोग करते हैं। और टेक्नोलॉजी जहां बात है, स्टार्टअप्स की जहां बात है, भारत बहुत इसमें अग्रणी श्रेणी में आ गया है, बहुत तेजी से इसमें काम कर रहा है, और चाहे वो डिजिटलाइजेशन हो, चाहे वो UPI हो, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया, जो करीब विश्व में जितना भी ये डीलिंग होती हो कैशलेस ट्रांजैक्शंस की, तो उसमें विश्व में आधे से ज्यादा भारत में होती है हमारे यहाँ। तो हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, और इन सब में जो यूरोपियन देश हैं, ये सब ही बहुत ही अग्रणी श्रेणी में हैं, और इनके साथ काम करके दोनों देशों के हितों को बहुत फायदा हो सकता
0: है। अशोक जी, भारत और स्वीडन की अब हम बात करते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अगले अपने दौरे में स्वीडन पहुंचेंगे, तो वहां भी साझेदारी को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की बात जरूर होगी, तो इस यात्रा से क्या चीजें निकल करके आने वाली है, अगर मैं तकनीकी निवेश, रणनीतिक सहयोग और यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंधों की बात करूं?
1: जहां तक टेक्नोलॉजी है और इनोवेशन है, उसमें तो बिल्कुल सबसे आगे है, अग्रणी है, रक्षा के क्षेत्र में भी वो बहुत आगे है, और अभी हमने ये 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के उसमें उनकी जो सबसे बड़ी कंपनी है साब, जो कि ग्रिपन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करती है, उनका यहां पर अभी पिछले साल इन्वेस्टमेंट हुआ है भारत में, जो कि हमारे रक्षा के संबंधों को बहुत आगे लेकर जाएगा। ग्रीन ट्रांजिशन में भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं स्वीडन के साथ, और इनको आगे और जोर मिलेगा, क्योंकि यहां पर अभी जब बातचीत होगी, जैसे मैंने कहा, गोटेनबर्ग में एक समिट को एड्रेस करेंगे प्रधानमंत्री।

0: मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टसन, उसके साथ साथ यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेन, वो भी वहां पर होंगी, उनसे भी बातचीत होगी। तो जो हमारा इंडिया ईयू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है
1: जी
0: उसको भी आगे कैसे ले जाया जाए, इस क्षेत्र में कैसे आगे ले जाया जाए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। देखिए ये वाले देश हैं जो नॉर्डिक कंट्रीज जिन्हें कहा जाता है, पांच देश हैं, आइसलैंड है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है और डेनमार्क है। इनके पास ये छोटे देश हो, उनकी छोटी जनसंख्या हो, छोटा इनका क्षेत्रफल हो, परंतु टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये बिल्कुल ही अग्रणी है। और स्वीडन तो और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो पहला इंडिया नॉर्डिक समिट हुआ था वो 2018 में स्वीडन ने ऑर्गेनाइज किया था, दूसरा वाला 2022 में डेनमार्क में हुआ था, और अभी जब नॉर्वे में फिर से तीसरा इंडिया ईयू नॉर्डिक समिट होगा, तो इसमें पांच देश के, जो पांच देश मैंने गिनाए हैं, उन सभी देशों के प्रधानमंत्री वहां पर आएंगे, उनसे बातचीत होगी और अपने संबंधों को इन सभी क्षेत्रों में
1: जी
0: आगे कैसे और ले जाया जाए और कैसे गहरा किया जाए उसके ऊपर बातचीत होगी।
1: अशोक जी, बदलती हुई जो हमारी ब्लू इकोनॉमी जिसमें तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समुद्री संसाधनों के इस्तेमाल की बात हो, सस्टेनेबल फिशरीज की हम बात करते हैं, ऑफशोर विंड और ग्रीन शिपिंग जो कि आज के दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में नॉर्वे के साथ हमारी जो साझेदारी बढ़ रही है उसको और प्रगाढ़ करने में प्रधानमंत्री का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है?
0: देखिए जहां तक आप नॉर्वे की बात करते हैं, और स्वीडन और फिनलैंड भी काफी हद तक उसी क्षेत्र में आते हैं, डेनमार्क भी उसी क्षेत्र में आता है, ये सब देश वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में वो चलते हैं। नॉर्वे में फॉसिल फ्यूल्स, गैस, ऑयल बहुत अधिक मात्रा में है जो कि उनके नॉर्थ सी से, वहां से ऑफ सी जो उनके एक्सप्लोरेशन है उससे लेकर उसका वो प्रयोग करते हैं। आपके सुनने वालों को ये मालूम होगा जो जब रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप ने रूस से तेल लेना, गैस लेना बंद कर दिया था,
1: जी
0: तो तब नॉर्वे और डेनमार्क से बहुत मात्रा में यूरोप के देशों को यह सप्लाई हुआ था। और नॉर्वे में 95% से ज्यादा जो वहां पर वाहन है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, मतलब वहां पर फॉसिल फ्यूल के से नहीं चलते हैं।
1: जी
0: और इसीलिए जब हम भी अपनी एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लू इकोनॉमी की आपने बात की है, और ब्लू इकोनॉमी में भी नॉर्वे बहुत ही अग्रणी है, फिशरीज में वो बहुत ही उसको माहिरता हासिल है। हमारे अपने क्षेत्र में तो हम जिसे कहा जाए पायरेसी है, मरीन डोमेन अवेयरनेस है, साउथ चाइना सी में है जिसमें हम क्वाड के माध्यम से हम सहयोग करते हैं और देशों के साथ, तो ये इन देशों के साथ भी उन्होंने कैसे इस दिशा में उन्होंने कैसे प्रगति की है उसको हम देख सकते हैं, उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। जब हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर रहे थे तो हमारे लिए वाटर सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और वाटर के मामले में चाहे नीदरलैंड्स हो, नॉर्वे हो, फिनलैंड, ये सभी देश, स्वीडन हो, इन्होंने बहुत ही अच्छी प्रगति की है जिनके साथ हम बड़ा अच्छा अपना सहयोग बढ़ा सकते हैं।
1: जी अशोक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के अंतिम चरण में इटली पहुंचेंगे और इटली के साथ हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको नई गति मिली है हाल के वर्षों में, तो ऐसे में शिप बिल्डिंग की बात हो, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे क्षेत्रों में काम करने की बात हो, तो इटली के परिप्रेक्ष्य अगर मैं आपसे पूछूं तो इस दौरे का प्रधानमंत्री का क्या महत्व है?
0: जी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अगर हम 2023 में, क्योंकि जॉर्जिया मलोनी वहां की प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ बड़े अच्छे संबंध हैं प्रधानमंत्री मोदी के, अगर देखा जाए 2023 से लेकर अभी तक 2026 तक 3 सालों में दोनों प्रधानमंत्री करीब 7 बारी एक दूसरे से मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकाल में 3 बारी वहां पर गए हैं, परंतु ये पहली बार उनका द्विपक्षीय वहां पर दौरा है, तो इसीलिए इसके ऊपर भारत और इटली के सहयोग को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि इटली सबसे एक बड़ी अर्थव्यवस्था है यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी इससे बड़े होंगे, परंतु इटली भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था है, उससे हमारा सहयोग बड़ा अच्छा होता जा रहा है। अगर आप देखें यूरोपियन पार्लियामेंट के जो इलेक्शन हुए 2024 में, तो वहां पर जर्मनी की पार्टीज हैं, फ्रांस की पार्टीज हैं, वो इतना अच्छा नहीं कर पाई, परंतु जॉर्जिया मेलोनी की जो पार्टी है उन्होंने बड़ा अच्छा किया है, तो उनकी शक्ति जो है यूरोप में वो काफी बड़ी है। और भारत और इटली के बीच में, चाहे वो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात, तो उसमें भी प्रधानमंत्री मेलोनी बहुत ही एक्टिवली एंगेज्ड हैं, क्योंकि जो इटली के यहाँ पर मैरिटाइम एरियाज हैं, वेनिस है, जेनोवा है, फ्लोर

यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम बज़्म-ए- मौसिकी। आइए इस प्रोग्राम के तहत सुनते हैं पंडित सप्तऋषि की आवाज़ में रागपुरिया कल्याण में ख्याल।

0: रोल था, जिसके बाद गाज़ा में जंग शुरू हो गई थी। इसराइली फ़ौज ने बताया कि अल हद्दाद गाज़ा शहर में एक फजाई हमले में मारा गया। फ़ौज ने बताया कि वह हमास की मिलिट्री क़्यादत में आखिरी सीनियर कमांडर था, जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास की जानिब से किए जाने वाले हमलों में कलीदी रोल अदा किया था। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन अगले हफ्ते पीचिंग के अपने 2 दिन के दौरे में चीन के रहनुमा शी चिनपिंग से मुलाकात करेंगे। एक बयान में क्रेमलिन ने कहा है कि सदर पुतिन इस महीने की 19 और 20 तारीख को ये दौरा करेंगे और ये चीन और रूस के दरमियान सन 2001 के दोस्ती के माहदे के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर हो रहा है। दोनों लीडर बाहमी ताल्लुकात के साथ साथ इक्तिसादी इश्तराक, आम बैन अक्वामी इलाकई उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। रूस की तरफ से ऐलान अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप के चीन के सरकारी दौरे के बाद सामने आया है, जहां उन्होंने जनाब शी चिनपिंग से मुलाकात की, तिजारत नीज ईरान में अमरीका इसराइल जंग पर बातचीत की। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि जुमे की एक मुश्तरका कार्रवाई में अमरीका और नाइजीरिया की अफवाज ने इस्लामिक स्टेट ग्रुप के एक लीडर अबू बिलाल अल मेनकी को हलाक कर दिया है। सोशल मीडिया की पोस्ट पर देर रात गए सदर ट्रंप ने अफ्रीका में एक मुश्तरका कार्रवाई का ऐलान किया था। नाइजीरिया के सदर बोला तिनुबु ने भी इस कार्रवाई की तस्दीक की है और कहा है कि उसके कंपाउंड पर हमले के दौरान अल मेनुकी अपने मुख्तलिफ लेफ्टिनेंट के साथ हलाक हो गया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आज़ादी का ऐलान करने पर ताइवान को खबरदार किया है। ताइवान के सदर लाई चिंगटी ने कहा है कि ताइवान को आज़ादी का ऐलान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले ही अपने आप को एक खुद मुख्तार मुल्क तसव्वुर करता है। अमेरिका कवानीन के तहत दिफाई साजो सामान के जरिए ताइवान की हिमायत करता रहा है और उसने चीन के साथ सिफारती ताल्लुकात भी बरकरार रखे हैं। ट्रंप ने इससे कबल कहा था कि उन्होंने इस खुद मुख्तार जजीरनुमा मुल्क से मुल्क ताल्लुक कोई वादा नहीं किया था। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है। अमेरिका ने कहा कि वो ताइवान की आज़ादी की हिमायत नहीं करता और एक चीन पॉलिसी के तहत चीन के साथ सिफारती ताल्लुकात बरकरार रहेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अली फिलिया खादमी अल जैदी को इराक के वज़ीर आज़म का अहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ तवील अरसे से चले आ रहे अपने दोस्ताना ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है और उसने तमाम शुबों में बाहमी रिश्तों को मज़ीद मुस्तहकम और मजबूत करने का तहिया कर रखा है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि वो दोनों मुल्कों की खुशहाली और तरक्की के लिए मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में सत्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी कल बैंकॉक में मलेशिया के गोसीफी और नूर अजीजुद्दीन को सेमीफाइनल में 19-21, 22-20 और 21-16 से हराकर मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गए। फाइनल मुकाबले में आज भारतीय जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोलो कार्नाडो और डैनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। गांधीनगर में एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की संजना ने खवातीन के 77 किलोग्राम के जुमरे में कांसे के 3 तमगे जीते। संजना ने स्नैच जुमरे में 96 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क जुमरे में 124 किलोग्राम का वज़न उठाया और मजमूई तौर पर 220 किलोग्राम का वज़न उठाकर कांसे के 3 तमगे जीते। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड्स भरोसेमंद और मुस्तकबिल के तैयार सप्लाई निज़ाम कायम करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने 21वीं सदी में भारत को मौक़ों की सरजमीन करार दिया। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की कंपनी ASML ने भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर दस्तखत किए हैं। भारत ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी माहदे पर सालिसी अदालत के फैसले को गैरकानूनी करार देकर इसे मुस्तरद कर दिया है। इसराइल ने दावा किया है कि उसकी फ़ौज ने हमास की मिलिट्री विंग के लीडर अजीजुद्दीन अल हद्दाद को हलाक कर दिया है और गांधीनगर में एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में खवातीन के 77 किलोग्राम जुमरे में भारत की संजना ने कांसे के 3 तमगे जीते हैं। आकाशवाणी से खबरों का बुलेटिन अब ख़त्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। پیش ہے انسٹرومنٹل موسیقی کا پروگرام۔

0: अजीजुद्दीन अलहद्दाद को हलाक कर दिया है और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी कल बैंकॉक में मलेशिया के गोसीफी और नूर इज़ुद्दीन को सेमीफाइनल में 19-21, 22-21 और 21-16 से हराकर मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स कई तरह के बहरान और कुदरती आफात के तनाजुर में आलमी चैलेंजों से निपटने की खातिर एक भरोसेमंद, शफाफ और मुस्तकबिल के तैयार सप्लाई निज़ाम के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। जनाब मोदी ने 5 मुल्कों के अपने दौरे के तहत नीदरलैंड्स के शहर हेग में एक कम्युनिटी प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया मुख्तलिफ तरह के चैलेंजों का सामना करती रही है, जिसमें कोविड-19 आलमी वबा, मौजूदा महाजारा या तवानाई का बहरान शामिल है। वज़ीर आज़म ने खबरदार किया कि इन चैलेंजों से अगर तेज़ी के साथ ना निपटा गया तो आलमी सतह पर तरक्की के जो फ़ायदे हासिल हो रहे हैं वो हाथ से निकल जाएंगे और आबादी का बड़ा हिस्सा गुरबत में चला जाएगा। इक्तिसादी निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए आलमी कोशिशों को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत और नीदरलैंड्स मजबूत सप्लाई निज़ाम कायम करने पर मुश्तरका तौर पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। जनाब मोदी ने भारत के बढ़ते हुए आलमी रोल पर भी जोर दिया और मुल्क को 21वीं सदी में मौक़ों की सरजमीन करार दिया, जहाँ टेक्नोलॉजी और इंसानी इक़दार दोनों को अहम मकाम हासिल है। बाद में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के शाह विलियम अलेक्जेंडर और मलिका मैक्सिमा से मुलाकात की। तवक्को है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस दौरे से भारत और यूरोप यूनियन के दरमियान वसी तर ताल्लुक इस्तवार होंगे। हाल ही में भारत और यूरोप के दरमियान आज़ाद तजारत का समझौता भी हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान तैयार करने वाली कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक और नीदरलैंड की सेमीकंडक्टर साजो सामान तैयार करने वाली कंपनी ASML ने भारत में चिप तैयार करने के सिलसिले में इश्तराक का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड्स के दौरे के दौरान इस माहदे का ऐलान किया गया। लिथोग्राफी ASML इक्विपमेंट के ज़ुमरे में इजारादार रखती है, जो छोटे साइज़ के जदीद सेमीकंडक्टर की तैयारी में अहमियत का हामिल है। ये इश्तराक भारत और नीदरलैंड्स के दरमियान कलीदी शराकतदारी को मुस्तकम करने की सम्त एक अहम कदम है, जिनमें सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी समेत अहम टेक्नोलॉजी शामिल हैं। ASML के सदर और CEO क्रिस्टोफर फुकेट ने कहा है कि भारत के तेज़ी से वसत पा रहे सेमीकंडक्टर के शोबे से कई अहम मौके नुमाया हो रहे हैं और वह खित्ते में तवील मुद्दती शराकत दारी कायम करने के लिए पुरअज़्म है। भारत ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी माहदे के तहत गैर कानूनी तौर पर तश्कील दी गई सालिसी की अदालत की जानिब से दिए गए ताज़ा फैसले को मुस्तरद कर दिया और इसे बिला जवाज़ करार दिया है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वज़ीरत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि नाम नहाद सालिसी अदालत ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी माहदे की अमूमी तशरी के मामला पर फैसला सुनाया था और साथ ही उन्होंने ये बात दोहराई थी कि भारत मस्कूरा सालिसी इदारत को गैर कानूनी एतबार से दुरुस्त तस्लीम नहीं करता। वज़ीरत खारजा का तर्जुमान ने कहा कि दरियाए सिंध से मुतालिक आबी माहदे को मुअत्तली की हालत में रखने के भारत के फैसले में कोई तब्दीली नहीं आई है। भारत और पाकिस्तान ने सितंबर 1960 में दरियाए सिंध से मुतालिक आबी माहदे पर दस्तखत किए थे, जो दरियाए सिंध के पानी में हिस्सेदारी और इसके इस्तेमाल से मुतालिक था। पिछले साल पहलगाम में दहशतगर्दों के हमले के बाद भारत ने मस्कूरा माहदे को मुअत्तली की हालत में रखने का फैसला किया था और ये कहा था कि यह कदम बैन अलाक़वामी कानून के तहत उसके इक़्तदार आला के हुक़ूक़ के ऐन मुताबिक है और ऐसा उस वक्त तक नाफिज रहेगा जब तक कि पाकिस्तान सरहद पार से फैलाई जाने वाली दहशतगर्दी की मदद और एनत बंद नहीं करता। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इसराइल का कहना है कि उसने हमास के मिलिट्री विंग के लीडर अजीजुद्दीन अलहद्दाद को हलाक कर दिया है, जिसका 7 अक्टूबर सन 2023 के हमलों में अहम रोल था, जिसके बाद गाजा में जंग शुरू हो गई थी। इसराइली फौज ने बताया कि अलहद्दाद गाजा शहर में एक फजाई हमले में मारा गया। फौज ने बताया कि वह हमास के मिलिट्री क़्यादत में आखिरी सीनियर कमांडर था, जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास की जानिब से किए जाने वाले हमलों में कलीदी रोल अदा किया था। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन अगले हफ्ते पीचिंग के अपने दो दिन के दौरे में चीन के रहनुमा शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। एक बयान में क्रेमलिन ने कहा है कि सदर पुतिन इस महीने की 19 और 20 तारीख को ये दौरा करेंगे और ये चीन और रूस के दरमियान सन 2001 के दोस्ती के माहदे के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर हो रहा है। दोनों लीडर बाहमी ताल्लुकात के साथ साथ इक्तिसादी इश्तराक अहम बैन अल-अक़वामी इलाकई उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। रूस की तरफ से ऐलान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के चीन के सरकारी दौरे के बाद सामने आया है, जहां उन्होंने शी जिनपिंग से मुलाकात की और तिजारत नीज ईरान में अमरीका इसराइल जंग पर बातचीत की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि जुमे को एक मुश्तरका कार्रवाई में अमरीका और नाइजीरिया की अफवाज ने इस्लामिक स्टेट ग्रुप के एक लीडर अबू बिलाल अल मिनुकी को हलाक कर दिया। सोशल मीडिया की पोस्ट पर देर रात गए ट्रंप ने अफ्रीका में एक मुश्तरका कार्रवाई का ऐलान किया था। नाइजीरिया के सदर बोला टिनुबू ने भी इस कार्रवाई की तस्दीक की है और कहा है कि उसके कंपाउंड पर हमले के दौरान अल मिनुकी अपने मुख्तलिफ लेफ्टिनेंट के साथ हलाक हो गया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आज़ादी का ऐलान करने पर ताइवान को खबरदार किया है। ताइवान के सदर लाई चिंगटी ने कहा था कि ताइवान को आज़ादी का ऐलान करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले ही अपने आप को एक खुद मुख्तार मुल्क तसव्वुर करता है। अमेरिका कानून के तहत दिफाई साजो सामान के जरिए ताइवान की हिमायत करता रहा है और उसने चीन के साथ सिपाही ताल्लुकात भी बरकरार रखे हैं। ट्रंप ने इस्तकबाल कहा था कि उन्होंने इस खुद मुख्तार जजीरे नुमा मुल्क से मुतालिक कोई वायदा नहीं किया था। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है। अमेरिका ने कहा है कि ताइवान की आज़ादी की हिमायत नहीं करता और एक चीन पॉलिसी के तहत चीन के साथ सिफारती ताल्लुकात बरकरार रहेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जनाब अली फलीहा खादिम अल जैदी को इराक़ के वज़ीर आज़म का अहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि भारत इराक़ के साथ तवील अरसे से चले आ रहे अपने दोस्ताना ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है और उसने तमाम शुबों में बाहमी रिश्तों को मज़ीद मुस्तहकम मजबूत करने का तहिया कर रखा है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में सत्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी कल बैंकॉक में मलेशिया के गू शिफी और नूर इजुद्दीन को सेमीफाइनल में 19-21, 22-20 और 21-16 से हराकर मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई। आज फाइनल मुकाबले भारतीय जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नाडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। आखिर में इस बुलेटिन की ख़ास ख़ास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड्स भरोसेमंद और मुस्तकबिल के लिए तैयार सप्लाई निज़ाम कायम करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने 21वीं सदी में भारत को मौक़ों की सरजमीन करार दिया। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की कंपनी ASML ने भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर दस्तखत किए हैं। भारत ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी माहदे पर सालिसी अदालत के फैसले को गैर कानूनी करार देकर इसे मुस्तरद कर दिया है। इसराइल ने दावा किया है कि उसकी फ़ौज ने हमास की मिलिट्री विंग के लीडर अजीज़ुद्दीन अल हद्दाद को हलाक कर दिया है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में सत्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी बैंकॉक में मलेशिया के शू जी और नूर इजुद्दीन को सेमीफाइनल में हराकर डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। आकाशवाणी से खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब का एक बजे चाहता है उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। सुबह 9:30 पर पहली मजलिस की नशरियात लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। जय हिंद।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो

0: वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। विशेष CBI न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को CBI हिरासत में भेजा। कार्यवाही के दौरान CBI ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। CBI ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा हमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वकीलों और नागरिक समाज के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। समिति के अध्यक्ष PP चौधरी ने मीडिया को बताया कि समिति विभिन्न राज्यों से आपत्तियां और सिफारिशें एकत्र कर रही हैं। श्री चौधरी ने कहा कि बार बार चुनाव कराना राष्ट्रीय हित में नहीं है, क्योंकि इससे आर्थिक गतिविधियां बाधित होती हैं और शिक्षा विभाग, बैंकों तथा सरकार के संबंधित विभागों पर असर पड़ता है। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएँ होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथा कथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात की टीम 4 विकेट खोकर 218 रन ही बना सकी। कोलकाता के लिए फिन एलन ने सर्वाधिक 93 रन की पारी खेली। सुनील नारायण को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his 5-nation tour, PM Modi said, the world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts, and an emergency energy crisis. He cautioned

बदलते दौर के साथ बहुत सारी चीज़ें बदली और उनमें से हमारा मन भी एक बहुत बदलती हुई चीज़ में शामिल रहा। जो पहले ज़माने में कभी कोरा हुआ करता था, आज व्हाट्सएप और वीडियो और मोबाइल आ जाने की वजह से उसके बाद अब मन कोरा तो नहीं रहा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें भर जाती है ना, लेकिन यादों में तो हम उस कोरे मन को याद कर ही सकते हैं गानों के ज़रिए।

दोस्तों प्यार एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है, ये तो हम सभी जानते हैं। और अगर आपको कभी किसी से प्यार नहीं हुआ है तो आपने फिल्मों में तो इस एहसास को ज़रूर महसूस किया होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फिल्में देख के हमारे आंसू निकल आते हैं, हम हंसने लगते हैं और फिल्मों के साथ ही एक ज़िंदगी जीने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं हम फिल्मों से जुड़कर फिल्मों को जी लेते हैं, उस एहसास को। तो इससे समझा जा सकता है कि जब प्यार हो जाता है ना, तो उसके साथ चाहे हम घंटों बैठ जाएं, लेकिन वो लगता है बस यूं ही निकल गए पल, और वो जो हमारे साथ है वो हमें

वैसे तो ऊपर वाले ने हमें बहुत सारे खूबसूरत तोहफे दिए हैं, और उन्हीं खूबसूरत तोहफों में एक बहुत ही खूबसूरत, नहायत ही प्यारा खूबसूरत तोहफा है हमारी आंखें। और उन आंखों में अगर कोई बस जाए तो वो आंखें कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती हैं, उसका एहसास आप इस खूबसूरत नगमे को सुनकर, इस खूबसूरत प्यार से गाने को सुनकर महसूस कर सकते हैं।

और दोस्तों, जब दो दिल एक दूसरे से मिल जाते हैं और एक दूसरे के लिए धड़कने लगते हैं, ऐसे में पुराने ज़माने का ये गाना जो मुकेश साहब की आवाज़ में है, यकीनन दिल को बहुत बहुत छू जाता है। फिल्म है धरती कहे पुकार के।

दोस्तों, इसके साथ ही पेश है रफ़ी साहब की ही आवाज़ में एक और बेहद खूबसूरत नगमा। फिल्म का नाम है पगला कहीं का।

दोस्तों रफ़ी साहब की आवाज़ में गाए हुए उनके नगमे, ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ गाने ना हो, वो सांस ले रहे हों, वो हमारे साथ साथ चल रहे हों, वो हमें महसूस कर रहे हों, गाने भी हमें महसूस कर रहे हों। क्योंकि रफ़ी साहब और लता जी की ऐसी ही खूबसूरत आवाज़ का अगला नगमा हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। रात के 1:47 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे।

रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में एक चुलबुला सा गाना आपने सुना, लेकिन ये दोनों ही जो गायक हैं ये हमेशा से मशहूर थे संजीदा गाना गाने के लिए। और अगला नगमा जो आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर वो है किशोर कुमार साहब का, जो चुलबुले गाने गाने के लिए मशहूर हुए, लेकिन ये गाना उनके अंदाज़ का एक अलग सा रूप है जिसे आप भी सुनिए और महसूस कीजिए।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे, और अब कुछ ही पलों में समाचार होंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है, और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। भारत और स्वीडन के बीच व्यापार और लोगों के आपसी संबंधों का इतिहास एक सदी से भी अधिक पुराना है। ये संबंध आपसी सम्मान, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित रहे हैं। इस संबंध की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कड़ी नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 में स्वीडन यात्रा की शताब्दी से जुड़ी है। अब यह साझेदारी सांस्कृतिक आधार से आगे बढ़कर मजबूत औद्योगिक और आर्थिक सहयोग में बदल रही है। आकाशवाणी से बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के आमंत्रण पर आज और कल स्वीडन के गोथेनबर्ग के दौरे पर रहेंगे। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने कल डोमिनिका की विदेश मंत्री के साथ फार्माकोपिया और त्वरित प्रभाव परियोजना QIP पर समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया। श्री मार्गेरिटा ने डोमिनिका के विदेश, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यापार तथा ऊर्जा मंत्री विंस एंडरसन से मुलाकात की और विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में एविएशन टर्बाइन फ्यूल FTA पर लगने वाले VAT को 25% से घटाकर 7% करने का फैसला लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के विजन के अनुरूप लिया गया है, और इसका उद्देश्य विमानन क्षेत्र को राहत देना, पर्यटन को बढ़ावा देना और लॉजिस्टिक गतिविधियों को गति प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि रियायती VAT दर फिलहाल 6 महीने की अवधि के लिए लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र और दिल्ली के हित में लिया गया यह फैसला सरकार के लिए लगभग 985 करोड़ रुपए के संभावित राजस्व नुकसान का कारण बन सकता है। दिल्ली की अदालत ने नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। विशेष CBI न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को CBI हिरासत में भेजा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई अब न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था। मामले के एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। मामले की जाँच केंद्रीय जाँच ब्यूरो कर रही है, जिसने दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग की थी, जबकि संजय रॉय ने अपनी रिहाई की अपील की थी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षा बलों ने संदिग्ध आतंकियों की तलाश के लिए बहुक्षेत्रीय तलाशी अभियान शुरू किया है। ये कार्रवाई मेंढर तहसील के मनकोट क्षेत्र में 12 मई को ही उस घुसपैठ की कोशिश के बाद शुरू की गई है जिसमें एक घुसपैठिया मारा गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said the world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts, and an emerging energy crisis. He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role and describing the country as a land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values. Prime Minister Modi said the warmth and enthusiasm of the gathering made him feel he's attending a festival in India. He described The Hague as a living symbol of the India-Netherlands friendship and noted that Dutch leaders consistently praise the contribution

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार। कुछ ही पलों में समाचार होंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के तहत नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। भारत और स्वीडन के बीच व्यापार और लोगों के आपसी संबंधों का इतिहास 1 सदी से भी अधिक पुराना है। ये संबंध आपसी सम्मान, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित रहे हैं। आकाशवाणी से बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के आमंत्रण पर आज और कल स्वीडन के गोथेनबर्ग के दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और हरित परिवर्तन, AI प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जन संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे, जिसमें यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन भी मौजूद रहेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात दौरे के दौरान विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। अहमदाबाद और गांधीनगर में उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों में नागरिक सुविधाओं और आधारभूत ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। दक्षिण पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय में श्री शाह ने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और वृक्षारोपण अभियान की समीक्षा की। उन्होंने सरखेज गांधीनगर कॉरिडोर के आधुनिकीकरण और घाट लोडिया, गोटा, चांद लोडिया तथा थलतेज क्षेत्रों में जिलों को जोड़ने की परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई अब न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर दिया था। मामले के एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो कर रही है, जिसने दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग की थी, जबकि संजय रॉय ने अपनी रिहाई की अपील की थी। दिल्ली की अदालत ने नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। विशेष CBI न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को CBI हिरासत में भेजा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और CRPF ने ऑपरेशन अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 माओवादियों को गिरफ्तार किया है और 5 अन्य माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। गिरफ्तार किए गए 8 माओवादियों में 2 संभागीय समिति सदस्य और 2 प्लाटून पार्टी समिति सदस्य शामिल हैं। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटन्स को 29 रन से हरा दिया। सुनील नारायण को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सुनील नारायण ने 2 ओवर में 29 रन बनाए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, माफ कीजिएगा, AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। 3:11 होने को हैं। सुनते हैं कार्यक्रम गीत गजल। सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं जगजीत सिंह द्वारा गाई एक बेहतरीन गजल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। आप सुन रहे हैं गीत गज़ल कार्यक्रम अपने दोस्त मोहन के साथ। सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए अब सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज़ और कुमार सानू की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला गीत।

अभी आपने जो गीत सुना भूपेंद्र की आवाज़ में फिल्म बाजार से, आइए आप सुनते हैं फिल्म माचिस से लता मंगेशकर के स्वर में अगला गीत।

गीत गजल कार्यक्रम में ये कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। फिर छिड़ी रात बात फूलों की लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म बाजार से। इसी गीत के साथ अपने दोस्त मोहन को दीजिए इजाज़त, फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर आपसे बात होगी। अपना अपनों का ख्याल रखिए और ज़िंदगी में प्यार बनाए रखिए। अपने दोस्त मोहन को याद रखिए, सुनते रहिए आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार। आइए सुनते हैं अब अगला कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आइए कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम में अब सुनते हैं नाद ब्रह्म। वायलिन पर स्वर जी उमा का है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 मई सन 2026। सुबह के 4:51 और ठीक 50 सेकंड हुए हैं इस मीटर पर हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

श्रोताओं, आपको प्रातःकालीन सेवा के कार्यक्रम बता दें जो आप सुनेंगे। हमारी प्रातःकालीन सेवा आरंभ होगी सुबह 6 बजे हिंदी समाचारों के साथ। हिंदी समाचारों के उपरांत 6:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार।

6:10 का समय वंदना कार्यक्रम का रहेगा। 6:40 पर आप सुनेंगे चिंतन राहुल संस्कृतायन के जीवन से प्रेरणा।

रामचरित मानस बालकांड भाग 52। इसे आप सुन सकते हैं 6:45 पर, 6:55 पर संस्कृत समाचार प्रसारित होंगे।

0: प्रातः 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 7:10 का समय संगीतिका कार्यक्रम का रहेगा। सात बजकर 30 मिनट पर कार्यक्रम गीतों भरी होगा। श्रोताओं, प्रातः के 5 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। पंजा प्यारियां तो साहिब जादियां

वाहेगुरु बोलो जे पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहेगुरु बोलो जे प्रथमा